मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, जिस तिरंगे ने हमें सम्मान दिया, उस भारत माँ के चरणों में हमारा शत शत नमन। देश प्रेम की इसी भावना को स्वर देता ये सुने ये देश वंदना।

समूह स्वर में ये थी देश वंदना। जब मन व्याकुल हो और जीवन की राह कठिन लगे, तब प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। भक्ति की इसी मधुर धारा में डूबते हुए सुनिए हरिओम शरण का गाया ये भक्ति गीत।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुने चिंतन।
1: हमारा सारा जीवन विरोधों से भरा है, किंतु ये विरोध निरर्थक नहीं है। वास्तव में ये विरोध ही जीवन को गति देते हैं। आपने देखा होगा, शेर हमला करने के पूर्व अपने शरीर को पीछे खींचता है, तीर छोड़ने के पूर्व कमान को पीछे खींचा जाता है, लंबी छलांग लगाने वाला पहले विरुद्ध दिशा की ओर 10-20 कदम पीछे जाता है, तब उसकी गति बढ़ती है और वो लंबी छलांग लगाने में समर्थ होता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि हम दो विरोधी ध्रुवों के बीच जी रहे हैं। विरोधों के बीच ही तो जीवन के सारे खेल होते हैं। विरोध ही जीवन में आनंद की सृष्टि करते हैं। अंधेरा प्रकाश, धूप छांव, स्त्री पुरुष, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब एक दूसरे के विलोम हैं। हम सब धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परिचित हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तब धरती का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। इसके कारण ही हमारा चलना संभव हो पाता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारा हर कदम एक लंबी छलांग में परिणित हो जाएगा। विरोध की अंतिम पराकाष्ठा है जीवन और मृत्यु। सच पूछो तो मृत्यु के कारण ही जीवन में रस है। यदि ये निश्चित हो जाए कि किसी की मृत्यु नहीं होगी तो मालूम क्या होगा? पहले तो आदमी को अच्छा लगेगा। उसकी ये धारणा बनेगी कि वो जीवन के सुखों को मन चाहे ढंग से भोग कर सकता है, किंतु वो भौतिक सुखों में ऐसा उलझेगा कि आत्मिक सुख की परवाह ही नहीं करेगा। ये जान लेना भी जरूरी है कि इन भौतिक सुखों सांसारिक सुखों की भी एक सीमा है। अपने आप एक ऐसा समय आएगा कि इन सुखों से अरुचि हो जाएगी, तब जीवन से आनंद तिरोहित हो जाएगा। ये भी विचारणीय है कि मृत्यु के अभाव में समाज की क्या दशा होगी। समाज में रुग्ण, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि बचपन और युवा जीवन भी दूभर हो जाएगा। जीवन में एक सड़ांद भर जाएगी और जीवन नरक हो जाएगा। यद्यपि मृत्यु जीवन के प्रबलतम विरोध के रूप में खड़ी है, किंतु मृत्यु का भी बड़ा महत्व है। इसका ये मतलब नहीं कि हम विरोधों को आमंत्रण दें और जीवन की सहज सरल प्रक्रिया को जानबूझकर विरोध निर्मित करें। तात्पर्य केवल इतना ही है कि यदि हमारे विकास की गति के समक्ष अड़चने आती हैं, तो हमें अपने आप में साहस पैदा करना चाहिए। हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए। विरोधों का सामना करने का यह भी मतलब नहीं है कि विरोधों से लड़कर हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, वरन हमें विरोधों के साथ एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। उनके साथ हम एक संगति बिठाएं, विरोधों को हम अपना मित्र और सहयोगी बनाएं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि हम न तो सभी प्रकार के विरोधों को समाप्त कर सकते हैं और न ही उनसे निरंतर लड़ते रह सकते हैं। यदि हम ऐसा कर भी सकें तो ये शक्ति का अपव्यय होगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण सिद्धांत तो होगा कि न्यूनतम विरोध की नीति का पालन किया जाए। यदि हमें ऐसा महसूस हो कि विरोध को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही इसके साथ संगति बिठाई जा सकती है, तब हमें वो रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य ये कि जीवन को गति देने के लिए विरोध आवश्यक और लाभदायक तो हैं, किंतु तब जब हम बुद्धिमता पूर्वक उनका चुनाव करें और सतर्कता पूर्वक उनके साथ संगति बिठाएं। यदि हम विरोधों के साथ संगति और लयबद्धता बिठा सकें तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वीणा के सब तारों से अलग अलग स्वर निकलते हैं, इन्हें हम विरोधी स्वर भी कह सकते हैं, किंतु वीणा वादक इन विरोधी स्वर के तारों को इस ढंग से छेड़ता है कि उनमें एक लयबद्धता स्थापित होती है, एक संगति बैठती है और मधुर संगीत झरने लगता है। बस जीवन के विरोधों के साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए।
0: ये था आज का चिंतन। आलेख था जमुना प्रसाद कसर का और स्वर था दीपक हटवार का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह की 6:25 हुए हैं। अप्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर है भूपिंदर सिंह का और संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस का गायन सुना। स्वर था भूपिंदर सिंह का और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, जसन जसन जनसंख्या बाढ़े से हुसने हुसने बेड़ा कमानी कम हो से। बेड़ा खड़ा कमानी कम हो तो के देखुन पशुपालन के किसान मन आमदनी चो प्रमुख काम बनौक लाए सकोत। मानतरे चो नगद वाट मन नी जानतो के किसान मन के चो खूबे फायदा नी मिरुक सके से। यही काजे गोरस व्यापारी के लाभकारी बना तो काजे पशु पोस्तो लोग मन के एगोट मन के लेख करुक।

0: पड़े से। सबले पहिल तो पोस्तर गाय हो नहाले भैंस पालन पोषण काजे ज्ञान और मन चो इच्छा शक्ति होतर खूबे जरूरी हो से। दूसर गोट हो से गोरस बीती पशु मन के गाय भैंस जो घेंतोर पूरे छाट तो काजे पशु के घेंतो बेरा उम्र नस्ल और हुंचो स्वास्थ्य कसना से एक ध्यान देतर खूबे जरूरी हो से। घेंतो काजे बले गोरस बीती गाय नहाले भैंस के लाफी ठान ले नी घेंतो राय कसन बल्ले लाफी ठान ले घेनलो ने ये जलवायु हुनके हुंचो काजे अच्छा हो दे कि नहीं हुंचो देह पाए अच्छा रह दे कि नहीं ये गोट काजे लेख करतो राय। और पशु मन उन्नत नस्ल चो रहो ये गोट के बल्ले दखतो राय। पशु चो उम्र कसन रहो कासकर भाई बहन मन गाय और भैंस के दखुन भाती घेनतो राय हुन एक नहाले दुई हार पीला पकाऊ रहो। संकर नसल चो गाय चो पहिल हार पीला पका तो उमर 28 ले 32 महीना और भैंस चो उमर 45 ले 48 महीना ले आगर नी होतो राय। और लेक करतो राय कि हुन चो देह पाए नगत और बरसक रहो। ढेटी मन बले नगत और बीमार नहालो रहो एके बले दखुन भाती घेनतो राय। गोरस कितलो दय से एके सांगा सुना हिसाब ने नाई पारले घेंतोर पूरे आपलो हाथ ने तीन ले चार हार दुहन भाती कितरो गोरस दय से एके जांच करुन दखतो राय। गाय भैंस के छाटतो बेरा होंचो पीला बाछी रलो ने और नगत आए काय काजे की बाछी ले ए तो समय आने गोटो गाय नहाले भैंस बने दे। संगे संगे लेख करतो राय कि होंचो सिंह और खुर जसन चो हुसन रहो बल्लो ने बिकतो काजे व्यापारी मन होंचो सिंह के घसुन भाती लुका हुआ तो मर के ऐ काजे ये गोट के बले लेख करतो राय। पशु के पूरे ले पाठे हिंडाउन बले दखतो राय। पशु चो जनेन्द्री बल्ले जन्मा तो आंग ने काई अलग ले काई पानी महा घसरे से तो नहीं ये गोट के बले लेख करतो राय। लेंगड़ी के बले हाथ ले हलाउन भाती दखतो राय। ऐचे संगे पशु जानवर चो टक्कर के बले लेख करतो राय ये चो काजे लगे जाऊन दखतो राय। काय काजे की कोनी कोनी पशु दूसर लोग के सिंह ने मारुआत और कोनी कोनी पशु मन सिंह ने खुटा के मारसोत असन पशु के बले लेख करतो राय और नी घेनतो राय। आगर गोरस काजे हालिस्टीन फ्रीजियन जर्सी संड ले जन्मालोर संकर गाय मन ये थाने 62.5% विदेशी नस्ल चो रहू रहो और एक घेनतो राय। देसी नसल काजे साहिवाल नहाले हरियाणा चो शुद्ध नसल चो गाय मन के घेनु सकास। भैंस चो नसल काजे मुर्रा और उन्नत मुर्रा भैंस पोस्तर नगत आए कासकर भाई बहन मन सांगलोर असनुवाट के धरुन गोरस चो उत्पादन कर ले जुगे लाभ कमावा से और आप लोग डेयरी व्यवसाय के आगे बढ़ावा से।
1: आप सुन रहे थे बेड़ा खाड़ा चुगोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुर है, सुबह के 6:40 हुए हैं। कार्यक्रम हुलहुली में आज सुनिए गौ पतिया पाड़। वादक कलाकार हैं श्रीधर और साथी।

कार्यक्रम हुलहुली में अभी आपने सुना गौपतिया पाड़। वादक कलाकार थे श्रीधर और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइया और सुबह 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे कथालोक में कहानी मनशा, पेश करेंगे डॉक्टर राजेश थनथराटे। साथ ही सुनिएगा फसलों में अनुवांशिक सुधार विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी संकल्प चंद्रा और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे रूपक डंडारी नृत्य। लेखक हैं नीलू राम ध्रुव। प्रस्तुतकर्ता होंगे बलबीर सिंह कच्छ और जी श्याम। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 9:30। आज सुनिएगा हाथी मेरे साथी फिल्म के गीत और फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। सुबह 10:30 लोक गीतों के कार्यक्रम गुरुदुम में सुनिएगा भत्री गीत। गायक कलाकार होंगे नंदूराम भारती और साथी। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 11:00 जो आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़ होगा सुबह 11:30। वादक कलाकार होंगे मधुराम बघेल और साथी। कला और कलाकार ये कार्यक्रम होगा 12:00। ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार होगा 12:30। बेड़ाखाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण सुना जा सकेगा दिन में 1:05 पर। श्रोता सुमन फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर पेश किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। हमारी सांधिकालीन सभा में शाम 5:05 पर गोंडी बोली में होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:35 पर। कार्यक्रम बस्तर के स्वर होगा शाम 7:00 और शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शिक्षकों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:00। इसमें आप सुनेंगे वार्ता शिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन का महत्व। वार्ताकार होंगी हेमलता त्रिपाठी। साथ ही सुनिएगा कुछ देशभक्ति गीत। पीला मन का जेगोट ये कार्यक्रम पेश करेंगे रात 8:30। प्रस्तुति होगी राम सिंह कश्यप की। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। रात 9:30 हम लेकर आएंगे पत्रों पर आधारित लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बोचो मंचोगे। रात 10:00 होगा लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाठ। इसमें आप सुनेंगे विवाह पाठ और माता पाठ। वादक कलाकार होंगे मंगलू और साथी। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: VW और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, प्रकृति हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। कभी सुबह की सुनहरी धूप मन को उत्साह से भर देती है, तो कभी बादलों की ठंडी छांव सुकून का एहसास कराती है। ऋतुएं बदलती रहती हैं। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद शरद और फिर सर्दी का मौसम। प्रकृति का ये चक्र हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हर मौसम हमें जीना सिखाता है। जैसे पतझड़ बताता है कि पुराना छोड़ना भी जरूरी है, और बसंत ये विश्वास दिलाता है कि नई शुरुआत हमेशा संभव है। प्रकृति की तरह ही हमारे जीवन में भी कई तरह के मौसम आते हैं। कभी खुशियों की बहार होती है, तो कभी चुनौतियों के बादल घेर आते हैं। लेकिन जिस तरह प्रकृति हर कठिन मौसम के बाद नई हरियाली लेकर आती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर मुश्किलों के बाद नई उम्मीद जन्म लेती है। प्रकृति हमें ये भी सिखाती है कि जो स्थायी है वो है प्रेम, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट। श्रोताओं, मौसम बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन सच्चे प्रेम और स्नेह की महक हमेशा बनी रहती है। यही भाव हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए श्रोताओं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, आप उम्मीद और प्रेम का दीपक हमेशा जलाए रखें, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और उम्मीद की खुशबू हमेशा बनी रहती है।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत था शायद फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और मन्ना डे की।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ,
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कथालोक में सुनते हैं कहानी मनशा। कहानी सुना रहे हैं डॉक्टर राजेश थंधराटे।
7: पंखों की फड़फड़ाहट से उसका ध्यान भंग हो गया। कोई पंछी ऊपर से उड़ान भरता हुआ निकल गया था। सहसा सामने पेड़ पर बैठे सारे पंछी चीख उठे। उनकी चीख चिल्लाहट ने जंगल के शांत वातावरण में हलचल मचा दी। उसने अपनी रेडियम युक्त घड़ी में समय देखा। रात के 2 बजे थे। चारों ओर फैला घना अंधकार और उसमें फैला एक अजीब सा सन्नाटा। आंखें अंधकार की अभ्यस्त हो चुकी थी। प्यास से गला सूख रहा था पर पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो शहर से दूर इस बियाबान जंगल में देवी माँ के मंदिर के सामने बैठा था। लोगों को विश्वास था कि यहाँ शक्ति अपने साकार रूप में विराजमान है। घने जंगल में होने के बाद भी यहाँ पर दिन में लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर शाम के बाद यहाँ कोई ना आता। पुजारी शाम को ही मंदिर के दरवाजे बंद करके चला जाता। आज शाम को जब वो यहाँ आया, पुजारी मंदिर बंद कर जाने की तैयारी में था। उसके कहने पर वो थोड़ी देर रुका, फिर दर्शन करते ही मंदिर बंद करके चला गया। तब से शाम मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा निरंतर माँ से अपने दोस्त के प्राणों पर आए संकट को दूर करने की प्रार्थना कर रहा था। दूर जंगल में किसी हिंसक पशु के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जाते वक्त पुजारी ने उसे कहा था, बाबू रात को यहाँ मत रुको, जंगली जानवरों का कोई ठिकाना नहीं, वे दिन में भी यहाँ पर आते रहते हैं। पर माँ के प्रभाव से आज तक कोई भी जानवर मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा है, फिर भी आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। श्याम ने नम्रतापूर्वक पुजारी का आग्रह अस्वीकार करते हुए कहा, आज की रात बहुत भारी है, अगर आज माँ की कृपा न हुई तो सब निरर्थक हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, ऐसा कहकर पुजारी चला गया। पर जाते जाते कह गया कि रात में किसी भी हालत में जंगल पार करके लौटने की कोशिश मत करना और ना ही मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उतरना। प्राचीन समय में किसी राजा द्वारा बनाया गया यह मंदिर एक बड़े काफी ऊंचे चबूतरे पर स्थित था, जिसके सामने की ओर से चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई पर कहीं कुछ ना दिखा। सहसा उसे याद आया कि यहाँ पर उसने एक कोने में प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम रखा देखा था, जिसमें मुंह धोने के लिए पानी रखा था। वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। प्यास बुझते ही उसे आराम मिला और उसकी स्मृति में बीते पल एक एक करके उभरने लगे। रमेश उसके बचपन का मित्र था, साथ खेले और बड़े हुए। कॉलेज के बाद फिर रमेश से उसकी एक लंबे तक अरसे तक मुलाकात नहीं हुई। कारण था रमेश का शहर छोड़कर चला जाना। क्योंकि रमेश की नियुक्ति एक अधिकारी के पद पर हो चुकी थी, इसलिए रमेश का अपने शहर में स्थानांतरण होने के बाद शाम की मुलाकातें उससे अक्सर होने लगी। और रमेश में एक अधिकारी होने के बाद भी दोस्ती निभाने के, अपने दोस्त से मिलने के सारे गुण मौजूद थे। एक दिन रमेश के घर पर चाय पीते वक्त रमेश ने शाम की मुलाकात अपनी पत्नी हेमा से करवाई। शाम हेमा की सुंदरता को देखकर आवक रह गया। कितनी अतुलनीय सुंदरता दी थी ईश्वर ने उसे। सांचे में ढला शरीर, गोरा रंग, सुंदर आँखें। वो एक बार हंसती तो हंसती ही रहती। उसकी आंखों में हमेशा शरारत झांका करती थी। पहले कई दिनों तक हेमा ने शाम से बात नहीं की, पर धीरे धीरे उससे खुलने लगी। शाम जब भी उसे देखता बस देखता ही रहता। ऐसा लगता जैसे हेमा के रूप में शाम पर कोई जादू कर दिया हो। वह सोचता रमेश कितना भाग्यशाली है कि उसे ऐसी सुंदर पत्नी मिली। धीरे धीरे शाम का मन हेमा की ओर आकर्षित होने लगा। ईश्वर ने शाम को भी सुंदर पत्नी और बच्चे दिए थे। वह अपने परिवार में संतुष्ट था, पर ना जाने हेमा को देखकर वह सब कुछ भूल जाता। याद रहती तो केवल उसकी हंसी और शरारत भरी नजरें। धीरे धीरे समय गुजरता गया और शाम के मन में पाप का जहर घुलने लगा। शाम की कल्पनाओं में अक्सर हेमा ही छाई रहने लगी। शाम सोचने लगा कि वो हेमा को कैसे पा सकता है, पर रमेश के रहते यह संभव नहीं था। शाम सोचता अगर रमेश की मृत्यु हो जाए तब शायद वो हेमा को पा सकता है। और हुआ भी यही। दौरे से लौटते समय रमेश की सरकारी जीप को ट्रक ने टक्कर मार दी और जीप उछलकर सड़क के किनारे 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। ड्राइवर और रमेश का सहयोगी अधिकारी की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। उस ओर जाने वाली एक कार में घायल रमेश को शहर पहुंचाया। खबर मिलते ही जब शाम रमेश से मिलने पहुंचा तो वहाँ अनेक अधिकारियों का मजमा लगा था। सरकारी अमला रमेश की हिफाजत में जुटा था। बड़ी मुश्किल से शाम को रमेश से मिलने का मौका मिला। शाम ने देखा रमेश का सारा शरीर पट्टियों से ढका था। चोट अधिक लग जाने की वजह से स्थानीय इलाज अस्पताल में उसका इलाज संभव नहीं था। अतः डॉक्टरों ने उसे बड़े शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी। एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी और रमेश को बाहर ले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। डॉक्टरों का एक दल भी उसके साथ एम्बुलेंस में जा रहा था। शाम को देखते ही रमेश ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, श्याम मेरा बचना अब संभव नहीं। प्रशासन अपना कर्तव्य निभा रहा है और डॉक्टर मुझे बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 9-10 घंटे का सफ़र करके मैं बड़े शहर के उस नामी अस्पताल तक पहुंच सकूंगा। देखो मेरे बाद हेमा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जायदाद के झगड़े को लेकर परिवार वाले सब हमसे नाराज़ हैं। तुम हेमा का ख्याल रखना। मुझे कुछ हो गया तो उसे उसके पापा के पास पहुँचा देना और उसके हक की लड़ाई में उसका साथ देना। उसने टूटने मत देना। अगर उसकी हिम्मत टूट गई और वह हार गई तो यह हार मेरी ही होगी। फिर शायद मुझे मरकर भी चैन नहीं मिले। उसके साथ ही रमेश की उम्मीद भरी नज़रें शाम के चेहरे पर टिक गई, जैसे शायद उसे और बहुत कुछ कहना था पर जुबान साथ नहीं दे पा रही थी, इसलिए यह काम आँखों को करना पड़ रहा था। डॉक्टर ने शाम की तरफ बात न करने का इशारा किया। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को उठाकर एम्बुलेंस में रखने लगे। शाम बस रमेश से इतना ही कह पाया, यार फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक होकर वापस आओगे। रमेश ने कहा, मुझे नहीं लगता, और उसके साथ ही एम्बुलेंस धूल उड़ाती हुई शहर की ओर चल पड़े। अस्पताल के बाहर शाम एक और खड़े होकर सारी कार्यवाही देख रहा था। जब गाड़ी चली गई तब आंसुओं से भीगा चेहरा लेकर हेमा उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने आंचल को हाथ में लेकर श्याम के चरण स्पर्श किए और कहा, भाई साहब, इस वक्त मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, पर आप एक साधक हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करना। मुझे लगता है आपकी प्रार्थना से रमेश को जीवन दान जरूर मिलेगा। एम्बुलेंस अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ती हुई अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही थी और छोड़ गई थी शाम के सामने एक यक्ष प्रश्न। वह जो चाहता था वह होने जा रहा था, पर यह क्या? उसके मन में पश्चाताप के बादल उमड़ पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने सोते से उसे जगा दिया है। बचपन से लेकर अब तक के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। कितना प्यार था उन दोनों में बचपन से ही, पर अचानक ये क्या हो गया? शाम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अपने ही प्रति घृणा और ग्लानि से उसका मन भर गया। वह सोचने लगा, रमेश का उस पर कितना प्यार है, कितना विश्वास है, और हेमा वह तो उसे बड़े भाई की तरह मानती है, और उसके मन में अपने ही मित्र और उसकी पत्नी के संबंध में इतने ही घृणित विचार। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी, उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। शाम को उसके कर्तव्य बोध का एहसास होने लगा और वह अस्पताल से सीधा यहाँ शक्तिपीठ में अपनी गलती का प्रायश्चित करने माँ जगदम्बा के शरण में आ चुका था। सहसा हाथियों के चिंघाड़ने से उसका ध्यान भंग हो गया। कहीं पास से ही हाथियों के चिंघाड़ने और पेड़ों की डालियां तोड़ने की आवाज आ रही थी। लगता था हाथियों का कोई दल उस ओर निकल आया था। आने वाले संकट की कल्पना कर वह सिहर उठा। तभी उसे पुजारी के ये शब्द याद आए, माँ के प्रभाव से कोई भी जानवर मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। शाम पुनः दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करने लगा, माँ मुझे क्षमा करो, मैं गलती पर था, रमेश के प्राणों की रक्षा करो माँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी नज़रों में दोषी हो जाऊँगा, रमेश को बचा लो माँ, रमेश को बचा लो। यह बात वह जाने कितनी बार दोहरा

0: चुका था। तभी उसे ऐसा लगा मंदिर के भीतर से कोई बाहर आ रहा हो। एक प्रकाश पुंज उसके सामने था और उसके बीच देवी माँ अपनी मनमोहक आकृति में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अमृतमयी वाणी में उसने कहा, अब क्यों परेशान होते हो वत्स, तुम्हारी तो मंशा यही थी ना। शाम की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने कहा, माँ मैं गलती पर था, मुझे क्षमा करो, रमेश के प्राणों की रक्षा करो। माँ ने कहा, तुम मेरे उपासक हो, एक साधक हो, तुम्हारा काम जन कल्याण करना और भटके हुए लोगों को राह दिखाना है, फिर तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार कैसे आए। अपने विचारों के शुद्धिकरण के लिए तुम्हें तप करना होगा, रमेश का जीवन सुरक्षित रहेगा। इतना कह माँ अंतर ध्यान हो गई। शाम के मन से एक भारी बोझ उतर चुका था, रमेश को जीवन दान मिल चुका था। शाम की पलकें भारी होने लगी और न जाने कब उसे नींद लग गई। शाम स्वप्न में देखने लगा कि एम्बुलेंस तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। दूर से शहर की बत्तियां और उसके बीच टेकरी पर बने बड़े अस्पताल की लाइटें नजर आ रही थी। जीवन और मौत के बीच का फासला बढ़ चुका था, मौत खाली हाथ वापस लौट चुकी थी। शाम की प्रार्थना ने उसे खाली हाथ वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था और इस प्रकार शाम ने अनजाने में ही हेमा के प्रति किए गए अपने व्यवहार का प्रायश्चित कर लिया था।
1: वंशा, कथालोक में अभी आपने ये कहानी सुनी। कहानी सुना रहे थे डॉक्टर राजेश थंथराटे। जारी है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: श्रोताओं, खेती केवल परिश्रम का ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी क्षेत्र है। फसलों को अधिक उत्पादक, रोग प्रतिरोधी और बेहतर बनाने की दिशा में आनुवांशिक सुधार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर प्रस्तुत है वार्ता, फसलों में आनुवांशिक सुधार। वार्ताकार है संकल्पा चंद्रा। तो आइए सुने ये वार्ता।
3: जीव विज्ञान, खासकर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिनों दिन नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन अनुसंधानों के परिणाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े कई चीजों को नया आयाम दे रहे हैं, जैसे सामान्य फसलों को उच्च गुणवत्ता वाले फसलों में परिवर्तित करने हेतु नित

जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। जीन स्थानांतरण द्वारा किसी भी जीव से विलग किए गए उपयोगी जीन्स या पूरी तरह से आर्टिफिशियली सिंथेटिक जीन्स को किसी वांछित पादप जिसकी गुणवत्ता में सुधार करना हो उसमें वाहक की सहायता से या सीधे ही स्थानांतरित कर देते हैं। इससे फसल सुधार की असीम संभावनाएं बन जाती हैं। अब तक किए गए प्रयोगों से कई संभावनाओं को मूर्त रूप मिला है और फसलों की कई ट्रांसजेनिक वैरायटी जैसे लंबी अवधि तक न गलने वाले टमाटर, कीटरोधी कपास और अत्यधिक उत्पादक क्षमता वाले मक्का आदि का व्यापारिक उत्पादन भी होने लगा है। अन्य उद्देश्यों में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस अर्थात कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का पौधों में विकास। दूसरा है वायरस रेजिस्टेंस, विभिन्न हानिकारक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का पौधों में विकास। सीड्स की प्रोटीन क्वालिटी में सुधार, फैटी एसिड कंपोजिशन का पौधों के खाने योग्य भागों में इम्प्रूवमेंट करना। इसके अतिरिक्त रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थ जो कि पौधों में निर्मित होते हैं उनके उत्पादन को प्रेरित करना। पौधों में नेचुरल रूप से प्रेजेंट ऐसे एंडोजिनस जीन जो स्वयं उनके लिए हानिकारक होते हैं उनका दमन या लाभदायक जीन्स के द्वारा उत्पादन क्षमता का विकास करना। इसके अतिरिक्त खाद्य टीकों का निर्माण, कीटरोधिता वह गुण है जिसमें एक ही प्लांट स्पीशीज के कुछ स्ट्रेन में इंसेक्ट पेस्ट के आक्रमण के कारण नुकसान अन्य स्ट्रेन की अपेक्षा कम होता है। कीटरोधी प्लांट के उत्पादन हेतु दो ट्रांसजीन्स का अनेक प्लांट्स में स्थानांतरण किया गया है। पहला है मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस थ्रंगेंसिस के क्राई जीन जो कि क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है उसका स्थानांतरण। यह प्रोटीन कीटों के मध्य आंत में पाए जाने वाले प्रोटीन को विदलित कर देता है जिससे वे मर जाते हैं। अन्य है सेरीन प्रोटीएज इनहिबिटर जीन्स का स्थानांतरण। इसके अतिरिक्त पौधों में ट्रांसजीन्स का उपयोग उन्हें वायरस रेजिस्टेंस बनाने में भी होता है जिसकी निम्न युक्तियां हैं। पहला है कोट प्रोटीन जीन के द्वारा, दूसरा है सैटेलाइट आरएनए की सीडीएनए कॉपी, तीसरा है डिटेक्टिव वायरस जीनोम द्वारा और चौथा है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा। अन्य उपयोग है सीड की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। धान्य बीजों में लाइसिन की कमी होती है जबकि दलहनों के प्रोटीन में सल्फर युक्त अमीनो एसिड जैसे मेथियोनिन की कमी होती है। अतः धान्य एवं दलहनों के प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस हेतु ऐसे ट्रांसजीन्स की सीड्स में अभिव्यक्ति की जाती है जिनके द्वारा कोडित प्रोटीन में वांछित अमीनो एसिड की उच्च मात्रा हो। इससे बीज प्रोटीन की संबंधित मात्रा में सुधार हो जाता है। जैसे बटर के बीज प्रोटीनों में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जैसे मेथियोनिन एवं सिस्टीन काफ़ी कम होता है क्योंकि इसके प्रमुख घटक विलिसिन में ये अमीनो एसिड्स अनुपस्थित होते हैं। इसके विपरीत सूरजमुखी के बीजों में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इसके सनफ्लावर एल्ब्यूमिन 8 में 23% होते हैं। SFA8 को कोट करने वाले जीन्स को विलिसिन प्रमोटर के साथ जोड़कर मटर में स्थानांतरण की योजना है। ऐसा अनुमान है कि यदि मटर के बीजों में उपस्थित निष्कर्षणीय प्रोटीन का 4% भी SFA8 हुआ तो बीज प्रोटीन की सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एवरेज 40% की वृद्धि होगी। अन्य उपयोग ट्रांसजेनिक प्लांट का के इस प्रकार हैं। कई प्लांट्स के लिए स्वयं उन्हीं के कुछ एंडोजिनस जीन हानिकारक होते हैं जिनकी क्रिया को घटाना या समाप्त करना आवश्यक होता है। इस हेतु एंटीसेंस एमआरएनए या एंटीसेंस डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एंटीसेंस एमआरएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर टमाटरों के जल्दी पकने हेतु जिम्मेदार जीन्स को कंट्रोल व सप्रेस किया गया है जिससे वे काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं।
इसके अतिरिक्त वनस्पति

0: तेलों के वसी अम्ल संगठन को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे वे और भी अधिक उपयोगी हो जाते हैं। अन्य उपयोग ट्रांसजेनिक प्लांट का है बायोकेमिकल प्रोडक्शन। मानव की कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व प्रोटीन तथा अन्य कई अद्वितीय यौगिकों की जरूरतें पौधों से ही पूरी होती हैं। पौधों का उत्पादन एवं इनके उत्पादों का भंडारण अपेक्षाकृत सरल, सस्ता एवं सुविधाजनक है, अतः ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट का विकास करने के प्रयास जारी हैं जो नए तथा अप्रोटीनी यौगिकों का उत्पादन कर सकें अथवा जिनसे ट्रांसजीन द्वारा उत्पादित बहुमूल्य प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। नवीन अप्रोटीन उत्पाद के लिए एक या दो ट्रांसजीन्स का पौधों में स्थानांतरण करते हैं जो पौधों के कुछ अंतर्जात जैव संश्लेषण पथों में नई शाखाएं उत्पन्न करके नए मूल्यवान एवं उपयोगी यौगिकों का उत्पादन करते हैं। इस युक्ति से दो यौगिक उत्पादित किए जा रहे हैं, पहला है साइक्लोडेक्सट्रीन व दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट। पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट का उत्पादन एसिटाइल को ए से होता है। इससे जैव अपघटनीय प्लास्टिक का निर्माण होता है जो कि इको फ्रेंडली है। एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया एक्लेजिनस यूट्रोफस से दो जीनों PHBB व PHBC का स्थानांतरण अरबडोप्सिस थैलियाना नामक पौधे में किया जाता है, जिससे इस पौधे के प्लास्टिड में PHB का निर्माण होने लगता है, जिसे बाद में पौधे से निकाल लिया जाता है। दूसरा है ट्रांसजीन्स को प्लांट में अभिव्यक्त कराकर बहुमूल्य प्रोटीनों का भी उत्पादन किया जा सकता है। हिरुडीन प्रोटीन, जो कि रक्त वाहिकाओं में थक्के के निर्माण को रोकता है, इसे कोडित करने वाले जीन को संश्लेषित किया गया है व इस जीन को एक अन्य प्रोटीन ओलिसिन को कोड करने वाले जीन के साथ संगलित कर ब्रैसिका नेपस नामक पौधे में अभिव्यक्त कराया गया है, जिससे यह पौधा ओलिसिन प्रोटीन के साथ हिरुडीन प्रोटीन का भी निर्माण करने लगा है, जिसका निष्कर्षण करके इसे प्राप्त कर लिया जाता है। अन्य उपयोग है प्लांट्स में ट्रांसजीन्स के द्वारा महत्वपूर्ण वैक्सीन का उत्पादन। रोगजनकों के एंटीजेनिक प्रोटीन या उनके अवयवों को टीके के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पौधे द्वारा उत्पादित टीके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला है खाद्य टीके व अन्य है शोधित एंटीजेनिक प्रोटीन का टीकों के रूप में उपयोग। ट्रांसजेनिक प्लांट के फल, कंद या अन्य खाए जा सकने वाले भाग में किसी रोगजनक का कोई एंटीजेनिक प्रोटीन इस प्रोटीन को कोड करने वाले ट्रांसजीन के माध्यम से उत्पादित किया जा सके व जिससे मानव या पशुओं को खिलाने से उनमें संबंधित रोगजनक के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो, उन्हें खाद्य टीके कहते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेनिक प्लांट में उत्पन्न एंटीजेनिक प्रोटीन का निष्कर्षण करके उसे सीधे ही टीकों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिससे उस रोग के प्रति हमारा प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांसजीन्स के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फसलों व अन्य पौधों में अत्यंत उपयोगी सुधार किए जा रहे हैं, जो हमारे मानव समाज के लिए भविष्य में और भी लाभदायक सिद्ध होंगे।
1: फसलों में आनुवांशिक सुधार, अभी आपने संकल्पा चंद्रा से ये वार्ता सुनी और अब नमस्कार जगदलपुर में अंतिम क्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के

0: लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: नमस्कार, जगदलपुर में अब समय है मधुर गीतों की मधुरिमा का, तो लीजिए पेश है मधुरिमा।

जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया की हर दौलत हर खुशी से बढ़कर लगते हैं। जब किसी का साथ दिल को सुकून दे, हर पल को खूबसूरत बना दे, तब वही साथ पूरी दुनिया से प्यारा लगने लगता है।

रिश्तों की भीड़ में एक रिश्ता खास होता है जो हर खुशी और हर गम में साथ होता है। जिसे पाकर दिल को सुकून मिल जाए वही तो मोहब्बत का सबसे हसीन एहसास होता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ निभाए, बल्कि वो है जो हर मोड़ पर हाथ थामे रहे। जब किसी का साथ दुनिया की हर खुशी से बढ़कर लगने लगे तब ऐसे ही जज्बात जन्म लेते हैं।

हर धड़कन में जिसकी मौजूदगी रहती है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बंधते, बस सांसों में घुलकर जिंदगी बन जाते हैं।

तो श्रोताओं, ये थी आज की मधुरिमा। जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वे फिल्में थी ख्वाब, वापस और बदलते रिश्ते। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की। मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से अब जसवीर कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिवस।

नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम अभी पेश किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाए और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
2: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the

0: संस्कृति बन के अउ हमर आघू में आते अउ संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते अउ वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमर छत्तीसगढ़ के भुइयां मा बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जेन मन इहां के भुइयां के प्रताप लगाइन लिखिन अउ जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुंचाए के उद्यम ल करिन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार मोर भुइयां के एक ऐसे मंच जहां ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला या ये कह जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत मन ला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन आमंत्रित करथन और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जिला एक कवि के रूप में जानता हो एक साहित्यकार के रूप में जानता हो तो आज हम उनखर मन ले गोट बात करबो। सुरजीत जी आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कार्यक्रम।
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुरजीत जी वैसे तो आप मन ला हमर संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते।
1: मैं पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुला आज आमंत्रित करे हो आप जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करते हैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ श्री द्वारका प्रसाद विप्र कबीरनाथ जी कश्यप सुंदरनाथ जी शर्मा आजादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखिन देश की आजादी पर तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास सातवां दशक में आता कैसे परिवर्तन आ गए लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार ला मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर की माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम अपन महतारी के मुंह से हम ओकर बोली ला ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसा थे और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल नहीं कहा अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठिया थे दाई या गोठिया थे और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते।
0: संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन मा यहाँ के सेवा करा थे लेकिन नान्हे लैका के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन मा जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहिस और आगु के जीवन
1: ये,
0: कैसे
1: ये बात बढ़िया पूछे आप मन। मोर जन्म पंजाब के पंजाब पाकिस्तान में हवे अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावलदीन लाहौर से छठवा स्टेशन पर थे वहाँ मोर जन्म हुईस और जब ये देश के बंटवारा हुईस तब मोर उम्र 8-9 साल की रहीस तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए मोर अच्छे तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही नवा घर बना रहे हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी।
0: सुरजीत जी हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस ओखर हृदय स्थल में स्थित हमर छत्तीसगढ़ पंजाब ले चल के वो नान्हे लैका 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस।
1: हम जब ये बंटवारा हो हम वहां से रवाना हो गए अमृतसर होत लुधियाना पटियाला जालंधर मेरठ होत हो हमन जबलपुर आ गए जबलपुर से घूमत घामत हम इंदौर चले गए इंदौर से फिर चले आए हमन रायपुर अचानक काबर की हमार पिताजी बताइस कि हमार जो बाबा है वो है कंडेल में रहते हमार बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करें कि हम नीचे चलबो और हम सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावे बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ीस वो गाँव तब हमला लोग बताई मोर पिताजी यहाँ एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाइस और एक तरफ थोड़ बहुत जो सामान है से तेरा रख के हम मन ओकर पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दीस। एक बात जरूर मोला आज याद आते कि साहू परिवार हा तन मन और धन से हमार परिवार के सेवा करीन अलग से किराया में घर ले दिन जहाँ हमार पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करिस। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहाँ आ तो गया हमार परिवार घर

0: हमन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे। तो हमारे बाबा मल बताई ये मल्ला तुम छत्तीसगढ़ी बोले बार धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले बोल पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले। हम मैं बाजू में बैठ के सुनो पिताजी लभी ऊ लाई। तब वो मन जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान को खरीदे पर आए तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो। और वही मेरे एक ठन गाँव हवे झरिया। मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करें कि ये बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए। हम झरिया चल दे पढ़े बर जान 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव में। और वहां जब रास्ता में मैं जाऊं और जब स्कूल पहुंच जाऊं तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया। तो महू कर मन साथ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया।
1: सुरजीत जी विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का घूमत फिरत यहाँ ले होत वहां जात धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में। कंडेल में पढ़े ला स्कूल पहुंचिस ये पूरा ओखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समोत जात है। और जब वो लड़का बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाई।
0: जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने उमर पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करे मैं भी सुनो कर मैं जाऊं। जब वो मन यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका और सुअवसर मिले कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग ली और हमारे बड़े नेता हो गए। और ऐसे बड़े नेता कि उकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई। उकर पूछे कि आखिर यह आंदोलन चलिस कैसे कैसे करते हो आप कैसे आदमी मन जुड़ते। तो सब कारण लो बताए जोड़े के तरीका ला बताई और आजादी की लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी।
1: हमर देश आजाद हो गए उखर बाद सुरजीत जी और आप मन नान्हे लड़का पढ़त पढ़त पढ़त अब और आगू बढ़िस जब तो ये पूरा उखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रहिस अब ओला कहीं ना कहीं तो उतारना रहिस
0: जी।
1: और सबले अच्छे माध्यम रहिस साहित्य
0: जी।
1: तो ओ में आप मन के पदार्पण होइस लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन।
0: मैं जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही से झरिया में 4थी तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से तो बोले पढ़े पर धमतरी भेजी। और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे छत्तीसगढ़ी में थोड़ थोड़ सीख गए बोलो स्कूल भी जाओ स्कूल में बोलो बातचीत करो। और प्राय लगभग लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ने वाला जतका रहते मन वे एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओमे आ जाए। तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो तो मोर पर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन। तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हाँ खा वत हो ना तुम मल्ला का कहना है तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सूरत गिस। अब मन मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं है कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम हो नाचा गम्मत हो में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता मन आए वो मन छत्तीसगढ़ की मांग करे मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करे से जिला में गांधी चौक में बैठ के सामने बैठ कर बच्चा रहो तो सुनो वो अपने मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते ऐसे लिखे जा सकते।
1: वो बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आप मन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ
0: यानी बोला सुरता आते कई ठन छोट छोट कविता लिखो काबर के जोड़ जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहाँ कार्यक्रम तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला तहू तो छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ ते बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल
1: कहा बात है कहा।
0: ऐसे जब मैं लिख दियो एक ठन कार्यक्रम में हमार स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण वासन दिन भाषण छत्तीसगढ़ में ऊपर जब

0: वो गीत सुनाई, छत्तीसगढ़ बन जाही तेरा गाना। ऐसे जब मैं सुनो तो मैं क्यों ऐसा, तो मऊ लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत, मैं हिंदी में भी लिखो छत्तीसगढ़ी में लिखो। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राजीव गया एक गांव में एक कार्यक्रम में, अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गया है, तो वहां जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मऊ छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकता हूँ का बोल सकते, ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते, तो वो हंसे ठाकर लगा। तो मैं कुछ जानत नहीं रहो, सब मेरे छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रहे हो, तो मेरा लौटा दी पर मोर मन में रही से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगाते उससे मऊ गाऊ। धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी,
1: नारायण लाल जी परमार,
0: नारायण परमार जी से जब इकल मन से हुई, तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर इस एक जने शिक्षक इस, तब वो मुलाकात हुई तो गर्भ से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं यहाँ, तो मुकिम साहब बोला गा के बताए परमार जी बोल के बताए। हमारे एक गुरुदेव से शिव प्रसाद जी पांडे हमला आठवीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ाए, मगर हिंदी पढ़ा पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले, और मैं छत्तीसगढ़ी बोले बोला ऐसे लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे, बोला ऐसे लगे, तो बोला कि मैं मीठ बानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ, ऐसे मन में मोर विचार है। बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू कर
1: एक आठ कविता लिखा जिन वो बखत के रहा है कुछ।
0: हाँ वो समय जो कविता एक था लिखे रहो तेल बता दो, मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहो, जन बादल गरजत है भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, कार गाँव में रहे तो क्या करते, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, चेत लगा के खेत जोतबो अब पानी के दिन आगे। ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही, हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रही रही के मुझपाही, बादल है वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, खेत बताबो बीजा बोवो खेत बताबो और बीजा बोवो, नागर बैला ला धोबो नागर बैला ला फिर धोबो, मेहनत के आगे दुनिया झुकते मेहनत के आगे दुनिया झुकते, आलसी मन जिंदगी भर रुकते, जुन्ना धान नंदागे भैया, बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया
1: किसाने के दिन आगे। क्या बात है, एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है में इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस चालू होइस तो ये लेखन कार्य औ आगू कैसे बढ़िस बोला बताते हो।
0: मैं अब फिर कहा हुईस कि कवि सम्मेलन होने लगी धीरे धीरे, और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते, तो ये मन अपन कवि स्वर में मोला ले जाना शुरू करे। अब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो हिंदी कविता पढ़ो, और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो सब मन सुने तो मन नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ छत्तीसगढ़ी बोलो। और कारण मैं धीरे धीरे समझ गए का भर की मैं जब बोलो तो वे पंजाबी ट्यून आए तो आदमी मेरे को आनंद ले है ना, बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले मोर बात तो पहुंचा थी। जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन अंग मऊ बन गयो, जाने अनजाने में काबर की उस समय मोला याद है कोदूराम दलित जी श्री दानेश्वर शर्मा जी हमर बसंत दीवान जी रामेश्वर वैष्णो जी ये सब मंच में आ चुके रही है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी ये सब मंच में आ चुके रही। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल मंच में आ चुके रही है, ऐसे आई तब ये मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े साथ में हिंदी पढ़े कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोक तक पहुंचाए पर लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है, इससे चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर मगर आप अपन बात पहुंचाना है उकरे मन के भाषा में, जब आप गुठिया हो तो दिल में वो भाषा उतर जाते।
1: तो सुरजीत जी कवि मन के आप मन बात करे हो बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना होत रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही की हम छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एकाध औ कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला।

0: भी लिखो हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी, तो मैं कहा छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, मैं एक थन अपने ऊपर लिखियो सियान होगे, तो मैं एक थन बात लिखियो का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, नवा जमाना के लयिका मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे,
1: क्या बात,
0: पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, चढ़ गए आंखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस वो हा हम जवान होगे,
1: क्या बात,
0: हम जवान हो गए, दो चार दिन के हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आयस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए,
1: क्या बात,
0: देखत देखत मतलब इंसान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, दो चार दिन के ये हम मेहमान हो गए,
1: क्या बात है, इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गुड़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते, आप मन एक साहित्यकार हो जेन हिंदी में भी लिखते, जेन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते, और बहुत चीज गुणत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जेन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए?
0: एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जात, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े, काबर के ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी, काबर के अभी जो परिवर्तन होते टीवी देखा था, मैं कई प्रकार घटना ला देखथन, हम अखबार पढ़थन, कई जन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए पूर्णता ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी कविता लेख निबंध रिपोर्टाज लिख सकते हो, तब लिखना चाहिए, काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते, लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा का प्रयोग करत हैं वो भाषा ऐसे हो जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए, अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो, काबर की तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाए, तब अगर गांव वालों मन पढ़ी तो गांव वालों मन लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमारे दिल के बात करे, हम पढ़त हैं, हम लोग पढ़े में अच्छा लगा थे, बोला कठिन नहीं लगना चाहिए, अखबार मन के भाषा जो हवे जो अखबार में छपत है कहानी कविता लेख निबंध, और जो गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़ते वो मन भाषा घलो सिखाते, अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ में बोलते, हाँ एक बात है हम कोई चीज ला ग्रहण करे पर इनकार नहीं करन, कारण हम बाजार जाते तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए,
1: बिल्कुल,
0: उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देश पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते, मगर अपन भाषा अपन भाषा है, और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए परखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।
1: सुरजीत जी इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते, जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर बर ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता आऊ हमर संगवारी मन ला सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती हमारे कार्यक्रम में।
0: मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अभी एक तरीका कैसे पहुँचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुँचे, का समझ को पहुँचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो।
1: स्वागत।
0: दिया चारों खुट अंजोर बकरा थे दिया है, ये बहुत सरल हमर बात कही देता है, अंधेरा हट गया जी दिया जला दे, मगर अगर पीछे कारण रख में बता तो दिया चारों खुट अंजोर बकरा थे, दिया के बाती रस जल के देख।
1: क्या बात है,
0: दिया के बाती असर जल के देख, अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख, अरे जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हो, जोर बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करते, तब मैं कहो जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हवे, चिखला पानी में थोरकुन चल के देख।
1: क्या बात, क्या बात,
0: चिखला पानी में थोरकुन चल के देख, अरे फोकट में सेखी झन मार, फोकट में सेखी झन मार, तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख।
1: क्या बात, क्या बात,
0: घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख, और गरीबी गरीबी केहले का होही,
1: का होही
0: गरीबी केहले का होही, समय के संग ते खुदला बदल के देख।
1: क्या बात, समय के संग ते खुदला
0: बदल के देख, और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती कस जल के देख,
1: दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन, सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे, ऐसे जैसे दिया बरत है ओखर अंजोर बगरत है। सुरजीत जी, चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लइका हमन ला प्रिय होते, मयारुक लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष होए हो ही।
0: हाँ।
1: तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश सुनाओ।
0: आजकल जो चलत है बाजार में, मैं दो चार जगह मतलब जाए के मौका लगी, गुरु परम्परा देखियो में है, गुरु शिष्य के परम्परा देखियो, तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से। आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने के जो चलत रही से अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए, तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए। वो बात तो लिखियो में है, माँ के ऊपर फिर कविता लिखियो, बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गयो तो लोग मन माँ के ऊपर कविता सुनाते, मैं कभी पिता पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो, तो मैं जो माँ के कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखे हूँ वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत।
0: दाई ते मोला जन्म दे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ, पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूं, और मैं सच बताऊं दाई मैं अब देख लेवे बड़े अफसर बनूं, और जब बनूं और जब वापस आऊं दाई तो तोला पहले प्रणाम करूं, और एक बात बताऊं दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊं ना तो उंगली पकड़ के मैं चला।
1: क्या बात है,
0: तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊं दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूं दाई मोला भी मुर्दाई दादा की सेवा करे के मौका दे भी, मैं बताता हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ, मैं बताता हूँ मुर्दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ, मोला दिन याद आई वो रात याद आई जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मोला सुखा सुलात रहे, दाई वो दिन मोला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुनाऊं और मैं तोर पाँव ला दबाऊं दाई तोर पाँव ला दबाऊं।
1: क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है, का करना चाहता हूँ एक साहित्यकार के रूप में, आप मन के का संकल्प है?
0: मैं चाहता हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, आठवीं सूची में ओकर नाम आ जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले परीक्षा होए और ओकर मल्ला वही मन में नौकरी भी मिले, अपन राज हो गए अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रहा था मन में, विश्वास भी है, एक दिन ऐसी आई जब

0: अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी राज ले जाही, सरकार मानी, हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई। भले मैं रहूं चाहे मत रहूं, मगर मैं होकर बर दुआ करत।
1: सुरजीत जी जब प्रसन्नता होते, मन प्रफुल्लित होते, तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत चार लाइन और कुछ सुना देते हो।
0: मैं दाई लगे हो दाई, मैं तो बात ला निभाए हूँ, दाई मैं तो बात ला निभाए हूँ, लड़ाई के मैदान में दाई मैं तो बात ला निभाए हूँ, जो वचन दे रहा हूँ अपन बात ला निभाए हूँ। देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, सब मतलब दिखाए हूँ। दाई मोला याद है तोर वचन तोर बात, अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई तोर बात है, बात नो है वचन है, कोई कोई लड़का बन निभाते वही ला मैं निभाए हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच मा, जेखा नाम है हमार संस्कृति हमार साहित्यकार। हमार शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहा है, चलते रहा है, और हमार ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा अच्छा कविता, अच्छा अच्छा बोली, अच्छा अच्छा भाखा। सुरजीत जी आज आप मन हमार पहुनाई ला स्वीकारो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमार संस्कृति हमार साहित्यकार, ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए ये गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है रूपक डंडारी नृत्य, लेखक है नीलू राम ध्रुव और प्रस्तुत करता है बलबीर सिंह कच और जी श्याम।

0: फाल्गुन मास बस्तर में डंडारी नृत्य को होली के रंग के साथ पलाश फूल के रूप में सजा संवार कर लाता है। फागुन आने का आभास पाते ही सारे के सारे पलाश वृक्ष खुशी से झूम उठते हैं और पलाश की कलियां देखते ही देखते फाग रूपी लाल फूलों में खिल जाती है। ऐसा लगता है मानो बस्तर में होली के अंगारे पलाश के वृक्षों में फूल बनकर इकट्ठे हो गए हों।
1: बस्तर में फरसा रुख या पलाश वृक्ष का होली के अवसर पर किए जाने वाले डंडारी नृत्य से गहरा संबंध है, क्योंकि सर्वप्रथम पुजारी द्वारा फरसा रुख की पूजा अर्चना की जाती है, फिर फरसा की एक छोटी सी डगाल पुजारी तोड़कर डंडारी नर्तक को देता है। वही डगाल डंडों का रूप लेकर डंडारी नृत्य का सूत्रपात करता है। यह रस्म होली के 15 दिन पूर्व होती है।
0: सर्वप्रथम फागुन उदिया अर्थात चंद्र दर्शन के दिन गांव का मावली पुजारी अपने सहयोगियों के साथ फरसा रुख में पूजा अर्चना के लिए जाता है और फरसा की डगाल डंडे के रूप में नर्तक दल को भेंट कर विधिवत डंडारी नृत्य का शुभारंभ करता है। उस दिन से डंडारी नृत्य लगभग एक माह तक के लिए शुरू हो जाता है और आसपास के गांव के लोग डंडारी भाटा में एकत्र हो एक माह तक हर्षोल्लास के साथ नृत्य करते हैं।
1: फरसा पूजन की रात्रि पुजारी डांड पूजा भी करता है ताकि इस दौरान

0: किसी प्रकार की अनहोनी न हो। जैसे ही पुजारी डंडारी भाटा में कुकड़ीगार यानी अंडा रखकर सिंदूर टीका करता है, डंडारी नर्तक डंडारी नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही कड़री यानी चाकू से अंडे को फोड़ता है, डंडारी भाटा में ठुड़का और मांदर गरज उठते हैं और कूद पड़ते हैं नर्तक दल डंडारी भाटा में नृत्य करने।
1: सर्वप्रथम नर्तक दल द्वारा गांव के सभी छोटे बड़े देवी देवताओं की गीत के द्वारा स्तुति की जाती है। इसमें पुजारी ही मुख्य गायक के रूप में पूजा अर्चना करता है। पुजारी इस प्रकार गाता है,
2: एते जुआर के तेजुआर माउली के जुआर हो, एते जुआर के तेजुआर माउली के जुआर, एदे मने भाई हो, कोकटी कडरी पाट पुजारी लेड़ी पाए के जुआर हो, कोकटी कडरी पाट पुजारी लेड़ी पाए के जुआर, एते जुआर के तेजुआर माउली के जुआर हो।
0: अर्थात गांव की मुखिया माँ मावली को कोटि कोटि जुहार, साथ ही गांव का कडरी धारी पुजारी का नर्तक दलों को आशीर्वाद।

0: इस प्रकार लगभग एक माह के लिए विधिवत डंडारी नृत्य के शुभारंभ होने के पश्चात गांव के अलावा आसपास के गांवों से झुंडों में युवक युवतियां आकर डंडारी नृत्य करते हैं। ये नृत्य लगभग रात 8 बजे से शुरू होकर लगभग 1 या 2 बजे रात्रि तक चलता रहता है। फिर अपने अपने समूहों के साथ नर्तक दल अपने घर लौटते हैं। यही क्रम होली के एक दिन पूर्व तक चलता रहता है। होली के दिन तो नृत्य अपने पूर्ण यौवन में होता है। उस दिन रात भर नृत्य किया जाता है।
1: डंडारी नृत्य डंडा बजाकर किया जाने वाला बस्तर का होली नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में मांदर मुख्य है। वैसे बस्तर में मांदर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हुल्की मांदर, टेंडा मांदर और बिया मांदर।
0: डंडारी नृत्य में जिस मांदर का प्रयोग होता है उसे डंडारी मांदर कहते हैं। इसका आकार थाप की ओर चौड़ा और ताल की ओर सकरा होता है, जिसे बैल या भैंस के चमड़े से छाया जाता है। थाप की ओर विशेष ध्वनि हेतु भात, पका हुआ चावल और मंडिया के आटा को मिलाकर भाप से पकाकर एक विशेष प्रकार का गोंद तैयार किया जाता है, जिसे करन या खैर कहते हैं। करन से लेप करने पर मांदर की गूंज में एक विशेष प्रकार की गमक पैदा होती है, जो सुनने में अन्य वाद्य यंत्रों से अलग होती है।
1: इसके अलावा डंडारी नृत्य में मांदर के सहायक वाद्य यंत्रों में ठुड़का मुख्य है। ठुड़का सिवना या केकड़ लकड़ी को अंदर से खोलकर पोला कर लिया जाता है, जिससे उसे डंडे से ठोकने पर ठक ठक की ध्वनि निकल सके। ठुड़का को और आकर्षक बनाने हेतु कई आकृतियों में गोदा जाता है। कहीं ठुड़का जानवरों के सिंह के आकार का होता है तो कहीं बर्तनों के आकारों में भी होता है।
0: ठुड़का की मांदर के साथ अनुपातिक समानता होती है। वैसे सामान्यतः 4 मांदरों के बीच एक ठुड़का रखा जाता है। मांदर बजाने वाले को मांदरची और ठुड़का बजाने वाले को ठुड़किया कहा जाता है। डंडारी नृत्य में ठुड़का मांदर के ताल से ताल मिलाते हुए नृत्य को गति देता रहता है। डंडारी नृत्य में बस्तर का एक मुख्य वाद्य यंत्र तुड़बुड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए तुड़बुड़ी के स्थान पर ठुड़का का प्रयोग किया जाता है।
1: ठुड़का मांदर का साथ नृत्य करते नर्तक दल अपने डंडों को आपस में टकरा कर देते रहते हैं और नृत्य को गति देते रहते हैं। इस प्रकार बस्तर के डंडारी नृत्य में वाद्य यंत्रों में मांदर और ठुड़का मुख्य हैं और नर्तक अपने अपने डंडों को टकरा कर मांदर ठुड़का की गमक को और कर्णप्रिय बनाते हैं।
0: बस्तर में डंडारी नृत्य मुख्य नृत्यों में से एक है। फागुन माह में डंडारी नृत्य शुरू होने से होली के एक दिन पूर्व तक नर्तक अपनी सामान्य वेशभूषा में नृत्य करते हैं, लेकिन होली के दिन नर्तक दलों की एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होती है।
1: नर्तक दल इस दिन लाल या काले कपड़ों से बना गोल घेरा वाला लहंगा पहनते हैं, जिसके कमर के चारों ओर दर्पण और दर्पण के चारों ओर कौड़ियां लगी होती हैं। बदन पर बंडी और सिर पर टोपी नुमा पगड़ी जो बांस से तैयार की जाती है। टोपी में भी दर्पण के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, जिसके चारों ओर कौड़ी की लड़ी लगी होती है। इसके अलावा गले में मोती या गुड़िया की माला भी पहनते हैं। इस नृत्य में महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता, फिर भी अपने पुरुष साथियों का सहयोग देने वो भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होती हैं।
0: महिलाएं खरवा या पाटा पहनती हैं, जो विशेष रूप से मृगान जाति द्वारा तैयार किया हुआ होता है। कानों में खिलवा, नाक में डंडी, गले में चिपमाला, धानमाला, गुरिया माला या कारी माला पहनती हैं। हाथों को चांदी या गिलट की खाड़ू या बांटा से सजाती हैं और पैरों में पैनी जो चांदी या कांसे का बना होता है।
1: अपने शरीर में विभिन्न प्रकार का गोदना बस्तर की महिलाओं का पारंपरिक श्रृंगार है। इसके अलावा महिलाएं अपने केशों को विशेष प्रकार से संवार कर एक आकार देती हैं, जिसे खोसा बांधना कहते हैं। खोसा एक प्रकार का जूड़ा होता है।
0: खोसा में महिलाएं चिपना क्लिप लगाकर बालों को बिखरने से बचाती हैं। चिपना के साथ खोसा में कतारबद्ध काटा बस्तर की महिलाओं के मुख्य श्रृंगार में से एक है। इसके अलावा महिलाएं कभी कभी अपने बालों में ककवा, बांस से बनी कंघी भी खोसती हैं, ताकि समय समय पर बालों को संवारा जा सके। इन श्रृंगारों के साथ टेकरा पाटा या खरवा पहनकर बस्तरीन धांगड़ी युवती अपने पुरुष डंडारी नर्तक के साथ जब होती है, तब वातावरण में मादकता छा जाती है।
1: इस प्रकार डंडारी नृत्य में महिला पुरुष आवश्यकतानुसार अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। इस पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक बड़े ही आकर्षक लगते हैं। डंडारी नृत्य में पुरुष हाथों में खाड़ू, कानों में खंजा और गले में कौड़ी या मूंगा माला पहनते हैं। डंडारी पुरुष प्रधान नृत्य है, फिर भी महिला बाहर से उनका साथ देती है। जब पुरुष हाथों में डंडा लेकर नृत्य कर रहे होते हैं, तब महिलाएं उनसे अलग अपनी श्रृंखला बनाकर नृत्य करती हैं।
0: इस प्रकार होली के दिन डंडारी नर्तक अपनी पारंपरिक वेशभूषा और विभिन्न प्रकार के श्रृंगारों से सुसज्जित होकर फागुन के फाग और बस्तर के होली गीतों के राग के साथ डंडे से डंडे मिलाकर, मांदर और ठुड़का की ताल से ताल मिलाकर अपनी मस्ती में मस्त होकर नृत्य करते हैं। इस दिन ऐसा लगता है मानो डंडारी नर्तकों की बाढ़ आ गई हो। वातावरण ठुड़का और मांदरमय हो जाता है। चारों ओर होली के गीत गूंजने लगते हैं।

0: बस्तर में डंडारी नृत्य फागुन माह में किया जाता है, क्योंकि डंडारी नृत्य होली नृत्य है और बस्तर में होली और माटी तिहार का गहरा संबंध होता है। होली के तुरंत बाद बस्तर के किसान अपने अपने खेतों में बीज डालकर बीज बोनी की शुरुआत करते हैं, इसलिए डंडारी नृत्य को फागुन माह में मात्र 15 से 20 दिनों तक ही किया जाता है।
1: इस अवधि में इस नृत्य को रात्रि 8 बजे के आसपास शुरू कर 1-2 बजे तक किया जाता है। होली के दिन रात भर और होली दहन के दूसरे दिन घर घर घूमते हुए दिन भर किया जाता है। इसके पश्चात मात्र 1 दिन के लिए और इस नृत्य को किया जाता है और वो दिन है रंगपंचमी का, जिसे बस्तर में धुरला उठानी कहते हैं। धुरला उठानी के दिन ही डंडारी नृत्य का विधिवत समापन भी किया जाता है। इसके बाद वर्ष भर के लिए नर्तक दल अपने साजो सामान को संभाल कर उचित स्थान पर सावधानी पूर्वक रखकर अपने अपने कामकाजों में व्यस्त हो जाते हैं।

0: डंडे और पाद संचालन के आधार पर डंडारी नृत्य को मुख्य रूप से छह प्रकार से नाचा जाता है। इसमें नर्तक दलों को ठुड़का की ठोक को विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ठुड़का की ठोक सुनकर ही पाद परिवर्तन एक साथ किया जा सकता है, अन्यथा डंडे और पैर का संतुलन बिगड़ जाता है। डंडारी के पाद इस प्रकार होते हैं:
1: जोहारनी पाद,
0: पाए साधनी पाद,
1: चार काटिया पाद,
0: किंदरी पाड,
1: सोलिया पाड
0: और सारनी पाड।
1: जोहारनी पाड, इस पाड में गांव के सभी छोटे बड़े देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। नर्तक दोनों हाथों में डंडा लेकर एक कतार में दोनों ओर झुकते हुए दाएं बाएं डंडा टकराते हुए गीत गा गा कर नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हुए नर्तक दल एक गोलाकार में परिवर्तित हो जाते हैं और गीत इस प्रकार से गाया जाता है।

0: इस प्रकार गीत के क्रम के साथ साथ नृत्य भी चलता रहता है। मांदर की थाप और ठुड़का की ठोक नर्तकों के शरीर में स्फूर्ति देते रहते हैं और सिंहधारी नर्तक विभिन्न जानवरों का अभिनय करते हुए नृत्य करता है।
1: जोहारनी के दूसरे क्रम में नर्तक अपने डंडों और पैरों में बदलाव लाकर पाड़ परिवर्तन करते हैं। दूसरे पाड़ को पाएं सांधनी कहा जाता है। पाएं सांधनी का तात्पर्य पैरों का कसाव होता है।
0: इस पाड़ में नर्तक दो समानांतर कतारों में होकर दो दो की जोड़ी बनाते हैं और आगे बढ़कर गोलाकार हो जाते हैं। गोलाकार होने के पश्चात एक दूसरे के पैरों को फंसाने के अंदाज में विपरीत दिशा में आगे बढ़कर डंडों को टकराते हैं। डंडों के टकराव के साथ ही नर्तकों की कमर में एक हल्का झटका सा लगता है और इसी झटके के साथ ही नर्तक आगे बढ़कर दूसरे नर्तक को अपना जोड़ी बनाता है। इस प्रकार नर्तक एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए जोड़ी जोड़ी में पैरों को फंसाते डंडों को टकराते नृत्य करते हैं। सिंहधारी नर्तक भी उनका अनुकरण करता हुआ नृत्य करता रहता है। गीत का क्रम इस प्रकार चलता है।

चार काटिया इस पाड़ में नर्तक नृत्य करते हुए चार खंडों में विभाजित हो जाते हैं और पहला नर्तक आगे बढ़ते हुए चौथे नर्तक के डंडों से टकराकर दूसरे क्रम में एक कदम आगे बढ़कर झुकते हुए अपने दोनों डंडों को जमीन से टकराता है। इस प्रकार नर्तक डंडों और अपने पैरों का तालमेल बनाए रखते हुए ठुड़का मांदर की थाप में नृत्य करता रहता है। इस पाड़ के गीत इस प्रकार हैं।

0: इस प्रकार गीत और गीत के साथ मांदर और ठुड़का की मदहोश कर देने वाली धुन के साथ साथ नर्तक बीच बीच में किरली एक प्रकार की सीटी नुमा आवाज पाड़ते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: किंदरी पाड़ में डंडारी नर्तक गोलाकार होकर दो दो की जोड़ी में बट जाते हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए अपने आजू बाजू डंडा टकराकर कदम आगे बढ़ाते हैं। ठुड़का की ठोक पड़ते ही कुछ उछलकर विपरीत दिशा में मुड़कर पूर्व प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं। गीत इस प्रकार चलता है।

0: प्रकार गीत आगे बढ़ता है और गीत का पीछा करते हुए ठुड़का मांदर नर्तकों का उत्साह बढ़ाते हैं और डंडारी नर्तक झूम झूम कर अपनी मस्ती में मस्त नृत्य करते जाते हैं।
1: सोलिया पहाड़ मस्ती से भरा हुआ होता है। इस पहाड़ में सभी नर्तक दौड़ते हुए नृत्य करते हैं और दोनों हाथों में डंडा ऊपर उठा हुआ किसी जंगली भैंस के सींग के आकार का होता है। नर्तक दल लगभग 2 या 3 चक्कर लगाने के बाद जमीन की ओर झुककर जमीन से डंडा टकराते हैं और 2 कदम आगे बढ़कर एक दूसरे के डंडों से झुकते हुए टकराते हैं। फिर सामूहिक किरली पाड़कर उल्टी दिशा में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

0: इस प्रकार फुड़का और मांदर के साथ साथ नृत्य अपने पूरे यौवन में होता है।
1: सारनी पाड़ डंडारी नृत्य का विसर्जन पाड़ है। इस पाड़ को धुरला उठानी रंग पंचमी के दिन ही अंत में गाया और नाचा जाता है। इसके पूर्व कभी भी इस गीत को नहीं गाया जाता। धुरला उठानी के दिन सभी नर्तक दल गांव में घूम घूम कर नृत्य करते हैं। सभी घरों में डंडारी नर्तकों का भव्य स्वागत होता है। अंत में सभी डंडारी नर्तक होले भाटा में पहुंचते हैं। इसी दिन पुजारी द्वारा नए महुआ से बनी मंद होली राख को भेंट कर नया महुआ मंद को लोकार्पित करता है। फिर सभी नर्तक और उपस्थित जन समुदाय होली राख का टीका लगाकर एक दूसरे को विदाई देते हैं। होली राख का टीका लगाने के पीछे ये मान्यता है कि जो भी होली राख का टीका लगाएगा उसे वर्ष भर कोई बीमारी नहीं होगी।
0: और अंत में पुजारी द्वारा आवश्यक पूजा अर्चना के बाद डंडारी विसर्जन गीत गाया जाता है, जिसमें सभी नर्तक समूह होली राख की परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं डंडा टकराकर नृत्य करते हैं। और अंत में जिस प्रकार फरसा पूजन के दिन सभी गांव के देवी देवताओं का आह्वान किया गया था, उसी प्रकार उन सभी छोटे बड़े देवी देवताओं का आभार व्यक्त करते हुए गीत गाया जाता है। इस दिन भी पुजारी स्वयं गाता है और शेष उनका अनुकरण करते रहते हैं। ठुड़का और मांदर केंद्र बिंदु पर होते हैं। अंतिम पद के साथ ही सामूहिक किरली पाड़ा जाता है और सभी अपने अपने डंडे होली राख को समर्पित कर देते हैं। फिर वर्ष भर डंडारी नृत्य नहीं किया जाता।
2: माउली के लागली मया, माउली के लागली मया, माउली के ठाकुर सेवा उठा मंगल पान गोपा, सखी रे सरसरा, सखी रे सरसरा, सरगी बदरा। माता माय के लागली मया, माता लाय के लागली मया, माता माय के ठाकुर सेवा उठा मंगल पान गोपा।

इन्हीं बोलों के साथ ही आगामी फागुन मास तक के लिए डंडाली नृत्य का विसर्जन होता है और लोग लगभग एक माह के बाद पुनः अपने अपने काम में लग जाते हैं और आने वाले फागुन का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

0: डंडारी नृत्य। अभी आपने नीलूराम ध्रुव का लिखा ये रूपक सुना। वाचक स्वर था नारायण सिंह बघेल और जी श्याम का। गायन पक्ष के कलाकार थे लखेश्वर खुदराम, लखपुराम और साथी। परिकल्पना थी नारायण सिंह बघेल की। इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे बलबीर सिंह गज और जी श्याम। आपकी सेवा में ये रूपक आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

आज हम लेकर आए हैं 1971 में प्रदर्शित एक बेहद भावुक और सफल फिल्म हाथी मेरे साथी। इसमें आप सुनेंगे इस फिल्म के गीत और फिल्म से जुड़ी कुछ बातें।

हाथी मेरे साथी फिल्म के निर्माता हैं एम एम ए चिनप्पा देवन और निर्देशक हैं एम ए तिरुमुगम। पटकथा लिखी सलीम जावेद ने, जो उनकी पहली सहभागिता रही। फिल्म का गीत संगीत इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी रीढ़ था। गीतों की रचना की आनंद बख्शी ने और मधुर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इन गीतों को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

हाथी बेरे साथी फिल्म के कलाकारों की बात करें तो राजू की भूमिका निभाई अभिनेता राजेश खन्ना ने और तनु के रूप में अभिनेत्री तनुजा ने फिल्म में अभिनय किया है। अन्य कलाकारों में डेविड अब्राहम ने यानी राजू के पिता बने अभि भट्टाचार्य, सुजीत कुमार गंगू के रूप में दिखाई दिए। मदन पुरी ने इस फिल्म में रतन लाल के रूप में तनु के पिता की भूमिका निभाई तो वही झमूरे बने जूनियर महमूद। आइए अब इसी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में सुनते हैं एक चुलबुला सा गाना जिसमें गाड़ी और दिल की धड़कन की तुलना बड़े ही अनोखे अंदाज में की गई है।

राजू यानी राजेश खन्ना और उनके चार हाथियों रामू, रहीम, प्यारू और गोपी की अटूट दोस्ती और वफादारी पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म है हाथी मेरे साथी। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू के बचपन से। राजू जब छोटा होता है तो एक तेंदुए के हमले से हाथियों का एक झुंड उसकी जान बचाता है। तभी से राजू को उनसे गहरा लगाव हो जाता है और वो उन हाथियों को अपने दोस्त यानी परिवार की तरह मानता है। बड़ा होकर राजू राजेश खन्ना के रूप में नजर आता है, जो सड़कों पर हाथियों के करतब दिखाकर पैसे कमाने लगता है। सुनिए किशोर कुमार के स्वर में इस फिल्म का वो गीत जो करतब दिखाते वक्त राजू यानी राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है।

अब राजू एक अमीर आदमी बन चुका है और एक चिड़ियाघर का मालिक है। उस चिड़ियाघर में उन चार हाथियों के साथ शेर, बाघ, भालू आदि जानवरों को वो दोस्तों की तरह रखता है। उसकी मुलाकात तनु यानी तनुजा से होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बाद में दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर उनके घर जब एक बच्चे का जन्म होता है तो तनु को जानवरों का डर सताने लगता है। उसे लगता है कहीं हाथियों से उनके बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। यही बात राजू और तनु के बीच दूरी का कारण बनती है और वो बच्चे को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। राजू उदास और अकेला हो जाता है, पर हाथियों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि तनु को राजू का हाथियों के साथ प्यार का मतलब समझ आ जाता है और वो वापस घर लौट आती है। सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में इसी फिल्म का ये गीत।

हाथी मेरे साथी केवल एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, प्रेम, त्याग और इंसानियत का ऐसा भावनात्मक दस्तावेज है जिसने दर्शकों की आंखों को नम भी किया और दिलों को भी छू लिया। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब राजू का प्रिय हाथी रामू अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है, तब मोहम्मद रफी का गाया बेहद भावुक गीत पृष्ठभूमि में बजता है जो वहां उपस्थित दर्शकों की आंखें नम कर देता है। अंत में राजू का प्रिय हाथी रामू को अपने मालिक के लिए त्याग और वफादारी की मिसाल पेश करते दिखाया गया है। लीजिए अंत में सुनिए मोहम्मद रफी का गाया वही गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म के गीत और फिल्म से जुड़ी बातें। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य स्तरीय पुलिस अकादमी में 33 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नैतिकता, संवेदनशीलता और जनता का विश्वास पुलिस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कानून व्यवस्था के साथ समाज की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रूपये रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुल के निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुकमा जिले में रेत खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से किया जाएगा। शबरी नदी स्थित 4 हेक्टेयर क्षेत्र की खदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया एमएसटीसी पोर्टल पर होगी। आवेदन 17 से शुरू होकर 23 जून तक लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 30 बसों की जांच कर दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि अनुपस्थित 45 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित तीन लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

रोटी कपड़ा और मकान जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। 2 जून की रोटी के बाद दूसरी चीजें भी अहम हो जाती हैं। मेहनत से ही इन तीनों को हासिल किया जाता है। पेट में रोटी और तन पे लंगोटी के बाद सिर पर एक छत की जरूरत होती है। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर कहीं पूरा होता है अपने घर का सपना। इस कल्पना को साकार करने के लिए अब सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उन्हीं में से एक है स्मार्ट रजिस्ट्री।

छत्तीसगढ़ में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम से समय की बचत भी होती है और ये जन सुविधाओं का भी पूरा पूरा ध्यान रखने में सहायक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री

0: पर स्टैम्प ड्यूटी यानी पंजीयन शुल्क में 50% की विशेष छूट दी जाती है। इस स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली की और भी कई विशेषताएं हैं। आप हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।
1: पहले घपला उपला होतरी से काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारतरी रजिस्ट्री भी हो जातरी। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमर पंजन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगे, रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगी, एक भी व्यवस्था हमन करे हैं।

0: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने ये माना है कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं देने में छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम बेहद प्रभावी है। अब राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की पहल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा बन रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है,
1: नवा रायपुर में पहले परिषद का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का, और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा।

0: देश का पहला आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय 4 से 6 घंटे होता था, जो अब घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। और ये संभव हुआ है आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से। नए स्मार्ट कार्यालयों में आरामदायक लाउंज, एसी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, हेल्प डेस्क और स्वच्छ डिजिटल वातावरण की सुविधाएं हैं। यहां टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले के कारण बिना किसी परेशानी के तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से काम होता है। इस सिस्टम में ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और रजिस्ट्री के बाद सीधे मोबाइल पर अपडेट और खसरे में ऑटोमेटेशन की सुविधा है।
1: मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं उपपंजीयक कार्यालय नवा रायपुर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ। यह कार्यालय स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। इस कार्यालय में लोगों के लिए पंजीयन की तीव्र एवं पारदर्शी सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ लोग सामान्य कार्यालय में जहाँ वेटिंग हॉल और शौचालय अन्य सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों के लिए इंतजार करने के लिए वेटिंग हॉल रहते हैं, अलग से फीमेल मेल टॉयलेट अलग अलग उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है, जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का NGDRS के द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारे इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर के अतिरिक्त रायपुर के विविलन टावर में, सड्डू में, अभनपुर, तिल्दा और रायगढ़ जिला में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही और भी नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का बनाया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट पंजीयन से क्योंकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, इसलिए यह पूर्णतः पारदर्शी है और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होता है और EKYC के माध्यम से पक्षकारों की जांच होती है। साथ ही त्वरित तुरंत नामांतरण हो जाता है। जैसे ही पक्षकार क्रय विक्रय के दस्तावेज का प्रस्तुत करते हैं, पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वैसे ही वह नामांतरण उस दस्तावेज का नामांतरण भी हो जाता है, पक्षकार के नाम से वह संपत्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया जो है बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और साथ ही पक्षकारों को उनके संपत्ति में नाम भी है उस सेम डे में आ जाते हैं, तो की संभावना तो लगभग नगण्य है, क्योंकि जो दस्तावेज जो भी चीजें हैं पहले पक्षकार के नाम से रहेगी, उन पक्षकार वो ऑनलाइन में पहले सत्यापन होता है कि उनके नाम से है जमीन या नहीं है, और उनके नाम से जमीन है वही जमीन को वह बेच पाता है। और जैसे ही पंजीयन होता है तो विक्रय होने के पश्चात में वह जमीन दूसरे पक्षकार क्रेता के नाम पर नामांतरण हो जाता है तो तुरंत ही, तो उससे संभावना तो लगभग नगण्य है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, खासकर रायपुर में अभनपुर, तिल्दा, नवा रायपुर, बेबीलोन टावर और सड्डू में है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ हो चुका है।

0: अंबेडकर के स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक अनुकूल वातावरण अत्यंत सराहनीय है। स्मार्ट रजिस्ट्री की सुविधाओं के कारण नागरिक खुश हैं। जटिल प्रक्रियाएं अब आसान जो हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब यदि कोई चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली अब हर नागरिक की साथी बन गई है।
1: मैं प्रवीण शुक्ला बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मैंने 3 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट के अंदर ही नामांतरण हो गया। जिस प्रक्रिया में 5-6 महीना लग जाता था, समय, ऊर्जा और पैसा भी लगता था, वो मात्र 10 मिनट में हो गई। मैं इससे अचंभित हूँ और सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। ये एक नई क्रांति है। आई एम ए हैप्पी कस्टमर ऑफ विष्णुदेव सरकार। और मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर से मिलता है, कंज्यूमर को फायदा ही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

0: स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी तर्ज पर प्रदेश भर में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बन गया है नेशनल रोल मॉडल। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का सपना पूरा होते ही रजिस्ट्री के अनुभवों में एक बड़ी क्रांति आई है। जमीन के क्रय विक्रय की जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है। इस बारे में भारती शर्मा बताती हैं।
1: सबसे पहले जरूर ऑनलाइन भुइया में जाकर उनकी वेबसाइट रेवेन्यू CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहाँ पे मतलब प्रोफार्मा में एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से और निर्धारित शुल्क ₹100 जमा कर प्रति वर्ष ₹100 जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं। भुइया पोर्टल में जाकर ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC इन, उस पर जाकर ऑनलाइन खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान में कौन है उसका स्वामी ये पता चल जाएगा। भुइया पोर्टल ये बहुत उपयोगी चीज है। ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवेन्यू CGNIC वाला, इसको तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा ये वेबसाइट पर जाके यदि देखेंगे ना सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है जिससे ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि जो नंबर डालेंगे वो भुइया उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है। यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशिष्ट प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है। उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें, यह है। जैसे तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा। सबसे जरूरी बात यह कि सबसे पहले B1 यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें, और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में, लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पट रहा है कि नहीं। और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, ये मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से, और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते उपपंजक कार्यालय से कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है। जब भी जमीन खरीदे तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जांच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।

0: नवा रायपुर में स्थापित आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस PPP यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को द्रुतगामी, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नागरिक अनुकूल माहौल में रजिस्ट्री की राह सुगम हो गई है। नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों का सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नमस्ते, मैं अंजलि तिवारी, उप पंजीयक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सद्दू रायपुर। स्मार्ट पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा NGDRS की साइट में जाकर संपत्ति और पक्षकार का पूर्ण जानकारी भरा जाता है। वह अपने सुविधा अनुसार समय स्लॉट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पक्षकार अपने टाइम स्लॉट में उपस्थित होते हैं, जहां उनका फोटो, EKYC और साइन लिया जाता है। 15 से 20 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और सुबह में आपके माध्यम से संपत्ति का एग्जैक्ट लोकेशन फोटो के साथ लिया जाता है। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में AC की सुविधा, वेटिंग लाउंज, शुद्ध पेयजल, फ्री वाईफाई, हेल्प डेस्क तथा प्री प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट पंजीयन प्रक्रिया में पेपरलेस और डिजिटल है। यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है, कैशलेस पेमेंट होता है, डिजी लॉकर की सुविधा दी जाती है। स्मार्ट पंजीयन में B1, खंड 1, नक्शा, पक्षकार की ID की जरूरत पड़ती है तथा सुगम ऐप के माध्यम से लोकेशन की फोटो अपलोड की जाती है। उसके उपरांत 15 से 20 मिनट के अंदर उपस्थिति के पश्चात प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्मार्ट पंजीयन में ई के वाई सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। EKYC के माध्यम से जो फर्जीवाड़े हो जाते थे, जिसमें किसी और पार्टी द्वारा उपस्थित होके गलत फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जाती थी, वो बच जाता है, क्योंकि EKYC से उनकी पहचान कर ली जाती है। सुगम ऐप के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन पक्षकारों को पता चल जाता है। तो ये सब सुविधाएं उनसे मिली है। साथ में समय की बचत होती है। पहले कम से 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते थे, अब सेम डे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक दिन में अपने पास 50 से 60 रजिस्ट्री कर सकते हैं। रायपुर में अभी सद्दू ऑफिस है, जो श्रीराम बिजनेस पार्क में है, नया रायपुर में है CBD में, और तिलदा नेवरा में एक ऑफिस है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10 रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन बनाया गया है और साल भर में पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जीवाड़ा नया KYC इंट्रोड्यूस किया गया, KYC पहले नहीं होता था, और डिजी लॉकर की सुविधा देते हैं, जिसमें दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाता है डिजी लॉकर में।

0: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से कल्याणकारी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ और भी सशक्त बन गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता तो आई ही है, साथ साथ उनका सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने सुशासन की एक नई पहचान को स्थापित किया है।
1: पहले हमें रजिस्ट्री के बाद पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर नामांतरण की प्रक्रिया होती थी। अब क्या हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है, यहाँ रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण हो जाता है और नामांतरण के बाद B1 में दिखाने लगता है, आपका जो नाम रहेगा वो B1 में तुरंत चढ़ जाता है।

प्रदेशवासियों के लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की है। नागरिक केंद्रित इन सुधारों ने भविष्य की तस्वीर में खुशहाली के रंग भर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम के तहत पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सेवा वितरण सुधारों तक की लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की जमीन तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होगी उज्जवल भविष्य की शानदार इमारत। नागरिक सुविधाओं में इजाफा करना ही छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा है। यही वजह है कि लोकतंत्र में आस्था की पताका थामे शासन, प्रशासन और नागरिक एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम गुरदुम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम गुरदुब। आज इसमें सुनिए भत्री गीत। गायक कलाकार है नंदू राम भारती और साथी।

समय हरि भगवान मन श्रद्धा चञ्चल रे बेरी तुरी बंशी बाद बजाइन बसिला मन चञ्चला नमः।

समय भगवान पलंग रे निद्रा जाऊतिला मा लक्ष्मी सहित भामा पूजा करूतिले मन श्रद्धा चंचल रे हरि हरि बलि न हुल हुली देले से समय राजा पलंग रे निद्रा जाऊतिला हरिपद शुणि राजा चमके उठिला प्रभु हरिपद शुणि।

0: ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ।
1: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुब में अभी आप सुन रहे थे नंदोराम भारती और साथियों के गाए भद्रीनाथ गीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमें आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें कला के अनूठे रूपों के साथ साथ कलाकारों की एक ऐसी भीड़ भी है जिसने वर्षों से अपनी प्रतिभा और कला के दम पर जनता के दिलों पर राज किया है। कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद वो मुकाम हासिल किया है कि भारतीय सिनेमा में उनका नाम अमर हो गया। श्रोताओं, आज के एक ही कलाकार में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार की, जिसने न सिर्फ लोगों को नाचना सिखाया बल्कि यह भी साबित किया कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरंगा चक्रवर्ती उर्फ लाखों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती की। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उसी गाने से जिसने उन्हें घर घर में डिस्को डांसर बना दिया।

350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके मिथुन चक्रवर्ती की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में होती है। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनका फिल्मी जगत से कोई नाता नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती के चमकती हुई सिनेमाई दुनिया के पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता भी था। इनका जन्म आज ही के दिन 16 जून 1950 को कलकत्ता के एक साधारण परिवार में हुआ। मिथुन चक्रवर्ती सिनेमा में आने से पहले नक्सल आंदोलन का भी हिस्सा रह चुके थे, लेकिन किस्मत उन्हें मुंबई ले आई और फिल्मी दुनिया में वे काम करने लगे।

श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती ने अपना शुरुआती जीवन कलकत्ता में ही बिताया, जहां उन्होंने शहर के जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और फिर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से स्नातक की पढ़ाई के लिए पुणे का रुख अपना लिया। यहीं उन्होंने अभिनय भी सीखा। श्रोताओं, मिथुन को न केवल एक अभिनेता के रूप में जाना जाता है, बल्कि उन्हें एक्शन स्टार और फिल्म जगत का बेहतरीन डांसर भी माना जाता है।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: जूली जूली

श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती के करियर में एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें साधारण सा दिखने वाला कहकर रिजेक्ट किया जाता था और उन्हें कई रातें फुटपाथ में गुजारनी पड़ती थी। लेकिन साल 1976 में आई फिल्म मृग्या में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उन्हें काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और वे छोटे किरदारों में ही नजर आते रहे। लेकिन फिर आया साल 1982 जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। फिल्म थी डिस्को डांसर, जिसमें मिथुन स्ट्रीट डांसर की भूमिका में नजर आए और भारत को मिल गया अपना पहला और सबसे लोकप्रिय डांसिंग सुपरस्टार।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: फिल्म डिस्को डांसर की अपार सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय रही। खासकर सोवियत देशों में इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता खूब बढ़ी। मिथुन ने इसके बाद घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं और मुझे इंसाफ चाहिए जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती 1980 के दौर के सबसे बड़े अभिनेता के रूप में गिने जाने लगे, जहां वे एक साथ दर्जनों फिल्में साइन करते और 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग एक ही समय पर किया करते थे। इसके अलावा वे बांग्ला और भोजपुरी फिल्मों में भी सक्रिय रहे।

श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती अपने अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मृगया फिल्म के अलावा साल 1992 में आई बंगाली फिल्म तहादेर कथा और साल 1998 की फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए प्राप्त हुआ था। श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती राजनीति में भी सक्रिय रहे और आज भी उन्हें राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों में ढूंढा जा सकता है। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अभिनेत्री योगिता वाली से विवाह किया और उनके 4 बच्चे भी हैं, जिनमें उनके बड़े पुत्र महाअक्षय चक्रवर्ती मिमोह के नाम से फिल्मों में सक्रिय हैं। श्रोताओं, मिथुन दा को बॉलीवुड का बड़ा चेहरा होने के बावजूद अपने करियर में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 90 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गईं, लेकिन उनका स्टारडम इतना ज्यादा था कि उस दौर में भी वे दर्जनों फिल्में साइन किया करते थे।

श्रोताओं, मिथुन दाकू भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जो उनके बेमिसाल सफर पर एक खूबसूरत मुहर है। संघर्ष से स्टारडम तक मिथुन दा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। आज उनके 76वें जन्मदिन पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गुलामी फिल्म से मिथुन दा पर फिल्माया ये सदाबहार गीत।

0: एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम अभी आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आज का हमारे ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक वाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार हैं मधुराम बघेल और साथी।

0: आप सुन रहे हैं लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़। इसमें अभी आपने सुना मधुराम बघेल और साथियों का बजाया सेवा पाड़।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: कार्यक्रम पाड़ में आइए अब सुनते हैं मधुराम बघेल और साथियों का बजाया जिगातो पाड़।

लोक वाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में अभी आप सुन रहे थे चेगा तो पाड़। वादक कलाकार थे मधुराम बघेल और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। छात्रों को आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों को उनके यहां की आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं की गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश देंगे। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लक्षण भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले के 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत का कार्य करेंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत 15 जून से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईगंज गंडई जिले के संवेदनशील गांव में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार दादा दीदी मन के, भाई बहन मन के और संगजौरिया संगवारी मन के, मैं तारा करे से जुहार और सपाए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और चूमा। तो कलाकार भाई बहन मन कसन आसस तुम्हें सपाए नंगत नंगत आसस बेकाय असनी नंगत नंगत रहा कलाकार भाई बहन मन। देखा भाई बहन मन एवे जेठ चो समिया तो गेली ने अदाय ऐसे बरसा चो समिया तो असनी देखा मौसम और समिया तो बदलते रहे से ने अरे मंचो कैक रंग बलिया से असनी जोन कला हुनर बल तो बीती रहे से नहीं कला बलों ने फिर जोन हुनर रहे से एचो बले कैक रूप और रंग आसे जेचो काई गिनती नहीं आए और ना ही कोनी हिसाब किताब आसे। एमन नाना प्रकार चो बानी बानी चो जोन कला और हुनर मनाए एमन आ सोतने जे के आम चो जोन कलाकार दादा दीदी मनात भाई बहन मनात उनमन जान सोत और आप लोग जोन जान लो बीती कला और हुनर आए उनके जहाँ मौका मिले से बल लोने हुन थाने आप लोग जो न कला आए उन जो प्रदर्शन मन के कर सोत आम जो कलाकार भाई बहन मन और कई कलाकार भाई बहन मन असन आसोत जे मन के मौका नहीं मिल रुक लाए सके से आप लोग कला आप लोग हुनर मंचो जो नए प्रदर्शन कर तोर को निथन दखा तोर हुन सब चो मौका च नहीं मिले से तो असन गोटाए कलाकार भाई बहन मन कि आमी एवे चो समयाने आम सपाई लगे मोबाइल फोन बल तो बीती तो रहे से चीने और मोबाइल फोन ने फिर होए से गोटोक सोशल मीडिया बल तो बीती तो आमी सोशल मीडिया चो माध्यम ले आमी आप लो जान लो कला हुनर के देश ले धरुन बाती गुलाय बाटे आमी अमरोक लाई सकू ने उन जोन बले आमी कला और हुनर के जानू उनके आमी आप लोग फोन ने रिकॉर्ड करून बाती जो न फोन ने रहे से नहीं सोशल मीडिया बल तो भी थी उन ताने डालुक लाए सकूँ आप लोग काई बले आईडी बनान बाती आईडी बल लोने फिर उन्हीं गोटक चैनल महा हो ऐसे आप लोग नाव चो आमी उन ताने आईडी बनाऊ क्ले सकूँ और आमी उन ताने आप लोग जो न कला हुनर आए उनके रिकॉर्ड करून बाती डालुक लाए सकूँ जे चोले लोग मन उन कला हुनर के सीखू क्लाय बले सकोत और समझू क्लाय बल सकोत और जानू क्लाय बले सक दे ने काय जोन कला आए हुनर आए बलून बाती और नहीं ये जोन हुनर रहे से नहीं उन काई बले हो क्लाय सके रांदा बाड़ा चो सिलाई बुनाई चो संदान पापड़ बना तोर गाव तोर बजा तोर नहाले फिर नृत्य मन बले हो सके बल्लो ने काई बले कला हो क्लाय सके कलाकार भाई बहन मन जे के आमी जानू से बल्लो ने ने और देखा असनी करुण करुण बाती कई कलाकार भाई बहन मन आसोत जे मन सोशल मीडिया चो माध्यम ले आज नाव कमा लसोत और चीना बले बना लसोत तो असनी तुम्ही बले आप लोग कला के सोशल मीडिया चो माध्यम ले पूरे अनुकूल ऐसा कस कलाकार भाई बहन मन तो ए तो रहे काय सुंदर नगत ज्ञान ध्यान बीती गोठमन अदाय और बले झाला बीती गोठमना से हुन गोठमन के बले सुनुता पाचे के फेरामी गोठियामा।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: तो कलाकार भाई बहन मन एबे आमी ये झाला बीती काय सुंदर गोठ मन के तो सुन लू ने असनी दखा आमी आमचो कार्यक्रम मन भीतरे कई ज्ञान ध्यान बीती गोट बात मन के तो धरून एते सी रहुआ जसन के कहानी होली भेंट वार्ता होली झाला मन होली नाले फिर नंगत गोट बात मन तो असनी ये गोटोक भेंट वार्ता आसे एथाने गोट बात करसो दादा श्री प्रहलाद और एमनाथ लकड़ी शिल्पकार एमन संगे भेंट घाट करसोत एमनाथ बलबीर सिंह कच्छ आले गोट गोट ने बेरा नी करू पहले मन चो गोड़ बात मन के सुनुता उनचो पाचे फिर आमी गोठिया मा
8: अल्लाह दादा सब ले आगे तुचो नाव सांगाय ना
9: मैं मुझे नाव पलाद है
8: पलाद हां गांव नानगुरे
9: नानगुरे हां
8: हां तक पलाद दक तुई तो बल्ले ने बड़े ही काम जानिस ना
9: ओ जाने गए मंत्र बड़े ही तो मैं चो बल्ले रतनी छोटे दाय लागे मिल बल चला ले सब कर ले
8: अच्छा।
9: उनके बाद ने बोले सप्तान टेरलिंग कर ले मुके नहीं पता ले
8: अच्छा।
9: तो ये कला गोटो यालो कोनी ची नियत गाँव ने मुझे गुरु मन बोल रो दुई जान उन मन बोल गेला उनके बेटा बेटी बोल कोनी नहीं सी गेला
8: अच्छा।
9: उनके बाद ने मैं काकी नहीं अपना मन ने अपना कला ची बना ले कला पर ने उनके बाद ने बोल गोत का जो बोल रहा फिर भी नहीं मैं जितरो रोटी नहीं आई इतनी इंच रहे थे जितरो देश गाँव सेवा कर बोल ली मैं
8: अच्छा।
9: उन्हें इतनी पेर करते करते करते इतनी सब बोल ली उनके बाद ने ये भी बोले उन्हीं चालू आए थे कि माने कोनी की काकी नहीं बोले कि मुके चौकुट बना देस पोलंग बना देस जतन दीवान बल बना देस बोली बात मंत्र मैं गोदा गोदी बांट नहीं सके मैं इतरो तक ट्रेन बिता नू है मंत्र हाँ सादा बीते है बोले जसन बोले हो असन बना तो या तो एक अर्धक उनके बाद ने बना देंगे बोल
8: अच्छा आगे मिल ने बोलते हाँ। काए
9: मिलने कुटत भी थी
8: धान कुटत
9: हाँ
8: अच्छा
9: एतान ले उनके बाद ने बोले उन तान गेले कायत गांव बेड़ा गुड़ा
8: अच्छा।
9: उन गोटो कोष्टा करे उन तान बोल चला ले एक साल चला ले उन तान बोले काय तो राइस मिल ने
8: अच्छा
9: उन ताने ये तान ले जैसे बिक तो के मिल के बिकला जैसे मूल्यन छटिया कर रही थे बाटे ये ताने सब उनके बोले छोटे दाल सीख लो तन सीख ले उनके बाद ने गोटो सर बोल रहे था गोटो बड़ी उन तान बोले उन बड़ी बोल रहे मानतर उनके ना मांडिया उन पूरा उन बल तक आलू मंतर उनके ये जसने बुना ये केन तो आगे तो केनेच भी चलते रे सोपा सुपी सब केनेच भी चलते रे उनके बाद ने उन बल दका रे उनके बाद ने बल पूरा माइंड पूरा बसली बल उनके बाद ने दखते दखते पीर आरू दूसरा कला नहीं ले और दूसरा करण ने सुनी ये गाड़ी बनात भी थी असन बुल गाड़ी पीर ये बोल कौन तो रशन सब दख ले हाँ ये हाँ सन के ये पिटोली एक बोलोली सब बोली उनके बाद ने पीर आरू उनके बाद ने काय कर ले अभी बड़ी बल्ले बसनी सोफा ये भी दीवान पलंग ये भी तो बाहरू ये जो बल काय लाल माने चोर ते नीलो असन बोली बस ये माने माने काज संग नहीं जाऊं तुम ताने ये लोग ट्रेनिंग करते रहले अलग होती नहीं दो कून उनके बाद ने बना तो असन बोली ये लोग बोला असन कसन आप ली इत्रो के इत्रो हाँ बोलते उन बनाते गेल पाचे
8: अच्छा बोले तो खुदे
9: खुद मैं अपना माँ कोनी गुरु को बस दो कुंठ चोर लो भी थे मके गुरु दुरु नतने के सिका मजाया बन से कहला ना कोनी मच कोनी नहीं जानो भाई बंद बोले छे जाना कोनी नहीं जानो
8: अच्छा।
9: बेटा बोले आज उन बोले सीख बुलवा नहीं सके मंत्र ये गोटो कसे नौकरी ली ज्यादा ये बीती आए कथित
8: अब बोलता ये तो गोटो खून आ रहा है
9: हाँ माने कि निपुत बीता बोली आज गोटो पाट ली से ना मुख बनान दे से ना बोल जो ये भी गोटो क्यों रहता कसन ना उन्हीं अतनी आले कसन करूँ मैं काम के चढ़न तुझे लगा ले भी हुआ मैं याले तो लोग इलाते अब कसन कर आले नहीं बोलते कसन करूँ बोलूँ आते उन जान लोगों टाके
8: हाँ हाँ
9: तो कहते नहीं करूँ बोले उनके बना तो राचू उनके बल सन तो सो बोल रहा था मुझे काम है
8: अच्छा हम जो गाँव के हिसाब ने ये गाड़ी आए दर दरवाजा आए चौकोट आए खिड़की आए बोले घर चो पूरा सामान
9: हाँ घर घर भी तो पूरा सामान है
8: अच्छा
9: सब जितरो बोले जोड़ दो जसन उन जसन डिजाइन सागे दे उन रसनी पूरा गोल भी तो बल गोल जसनी दरबार अलग अलग बोले रो बोले उन रसन भी तो सब बना देंगे
8: अच्छा
9: उन्हें मैं कि ये कि कायत करन ता नहीं मके ये भी तीन जाने के ये असन हुआ है तो जसन बीती बोल ले असन ना ये दरवाजा बोल बना तो रसनी आगे ये भी जसन ये भी चैन गटान सुझे उन असन ये भी कपाट के बोल उन्हीं असनी जोड़ून पीर उन्हीं असनी मोड़त बीती बोल उन असन सब सब कला बोल अब चार सब बातें ले
8: तो ये भी तो आजकल जसन की बोल ली से सोफा है पलंग है दीवान है
9: ये मन बल्ले सब ये बे तो बस काली गद्दी बीती मन होए से बे बे उन गोटा सरल होए से आगे चिकन बीती बल्ले उनके जैसे गोपा टुक नगा तू नहीं उन्हीं असनी बुनुक पड़ते रहे उनके डिजाइन ये तू न तो बुनुक पड़ते रहे तो ये भी नु है बस पोला ही कान तोर गद्दा काट तोर चमक रहा है बस पीन मर देते बस अंदे तर बस इतरी हो सोपा नहीं अब चार उनचो काही नाही आहे, बस बीडीच काढतो उनचे, बस उनचे बस तर सिराणाची बनवतो काय तो आचे नोल काही नाही आहे. अब सरल आहे बे ओदा गोदी बीतनु आहे ना एबे उनी लागे ने एबे उन गोटा मन एबे सरल होली उन एबे केन बीत गेली ची अब चार कोणी उनता नाही कोणता धक्का नाही दे तुमचे ऑफिस ने बोल नी धक्का दे ना जे कोणी ऑफिस नाही नींद देणार उनी ची कदा बीत धक्का दे से.
8: तो जसन की तू बल्ले बनात रहे ने घरे से बनावा इसकी
9: हाँ, घरे से बनावा मैं काकी मैं लंद पंद बीता मन संग बीड़ू मैं बस मच काम जाने उठले लगले बस बस उन बाद ने बस संजोली बोले हाँ तो बंद कर ले चिमड़ा आचे. अच्छा नहीं मैं एक ही उनके दर बोलते उन नसन काम बटे नहीं मग दूसरा संग बोल ले गुनवाए मैं ये तक उठ कान था ना ते पाँच जामा काली की जामा उनसे चलते चलते ये लोग चो रोटी रोटी मार का आए.
8: हाँ तो आए
9: उन्हीं कहते मैं एकला ची जितनी दूर बोली हो नलू को नित्ता नो मैं एकला ची करूँगा. अच्छा, जितनी दिन बोल दो रो मौज काम है.
8: अच्छा तो बोले ने ये जो पूरा सज आस है ना.
9: हाँ पूरा सज आ चे.
8: अच्छा
9: हाँ मशीन ले दोरुन सब मशीन आ चे. गोतल दोरुन पूरा रेंदा उंदा सफाई हुए सब
8: सब
9: सब. अच्छा, डिरिल मशीन मुझे चेदा कर तो कच कुछ सब कच.
8: अच्छा
9: सब दर ले से.
8: आजकल बोले ने सब कई मशीन ये करंट चलते
9: हाँ करंट बीती है.
8: अच्छा पूरा ये सब चीज आ से.
9: हाँ पुराना बीत बन बला चाहिए आगे नहीं रहे उन गोटा मन रेंदा मन सब बुआ चे माने आदो गोटो का लुआ चे रेंदा मन आदो ये लकड़ी ची बना ले से उन रेंदा मन सब गिन नाल बीतनु है खुद जब माने दुकुन दुकुन उनके सब को बनाते गए ले.
8: अच्छा,
9: उन मन के दुकान ले बस उन पोतरी असन गोटा मन गिनु नाल ले दार कर तो बीती मन उन्हीं गोटा और मैं गच चीज बना रहे.
8: अच्छा,
9: और गच नीचे सब काम सीख ले. और जो नागे जसने बोल नहीं उन बाटले सर ले बिदना वार्षिक यंत्र बीतनु है ये मैं पूरा उन गोटा सीख तो बीती बोले लोहरा तान ले बिदना तान ले सीख ले.
8: अच्छा
9: सब ये गेन माने सरकारी बीत तान यूज नहीं कर ले नहीं सीख ले. हाँ पूरा लोहरा बीती उन तान सीख ले बिदना जसन महाराज बोले उन बीती वो सर बीत नहीं कर ले ये भी काया उन बारीक बारीक सामान आए बोलते उन सर बीती आनु ये कुरुक पड़े.
8: अच्छा ना पढ़ला दे सांग जैसन की कोनी बोल चीज जैसन की पलंग है ना दीवान है बनाते रहने कित दिन लागे तो की ना
9: मके एकला वाले छह दिन दूर है ना.
8: अच्छा
9: और एकला वाले
8: एकला छह दिन.
9: हाँ छह दिन दूर है.
8: अच्छा
9: अब जैसनी अब मान की नहीं अब किन किन आज किन बनाऊ बोले छह दिन दूर है जैसन पालिस बना तो किन किन दक्ष सेफ चो असन कतनी जो बना बोले तुम तो चले नहीं. माने कि दखले बोले कि अपना गागर मुंड के बोले नहीं ना कि बना लो तो बोल लो थे वो बोलते उन्हीं कि काय है उनके पालिस बनाओ पीर नोल लोग किन कोदरा रे लीप लाप कर बोल लो थे काम है उन्हीं गोटा किरका मरका बोल लिपू पड़े से कूट ले एक तो जोड़ पड़े से गच के उन्हीं अथनी है के उन तो जोड़ तो बीतनु है उनके जपनी में माने उनके कई बल बना लटका चिपुड़ गए उनके और सुकली बोले लोगड़ पड़े से उनका अपना पीली नाम तो गचे उन्हीं अथनी आए गोटा.
8: और जसन की तुझ मेहनत है हिसाब ने कोई लोग रुक बोल दे सो
9: हाँ पूरा नहीं अपना रुक दिला बोल तो उन ठीक है क्या अपना रुक अन दी बात उन मन रुक अन दिला बोल ले तो उनके बाद नहीं बोले उन्हीं रेट कम पड़े से नहीं और मच गोटा है बोल लेकिन रेट
8: पड़े से
9: तो उन्हीं कहते उन मन रुक अन दिला बोल ले फिर कम रेट ने बना दी भाई अपना रोजी हिसाब से.
8: अच्छा
9: जसन रोजी आज जसने भी 600 है कि 700 है कसन हिसाब
8: पड़ गया. अच्छा रोजी एक
9: अब मशीन मुसना संगे बोल लाइट के लोग चो सब ये लोग चो बोलते उन्हीं असनी तो उन्हीं असनी उन मंदूर हैं.
8: अच्छा बल्ले ने मान लो गोटोक ये सोफा सेट बनाते रहे ने पूरा जसन तुचे लकड़ी आनो दिले ने कित लोसन
9: उन मन लकड़ी आनो दिला बोल सोफा सेट का जो बोल ले मान के चल गोटोक 5000 लागे से.
8: 5000
9: हाँ जसन बनात कच बल बहुत कठिन है उन गोटा के पीर दक्षी तुम बारीक भी थी उन्हीं का चे ये भी नहीं बना ले सुन जो बाद ने बोली उन मन बुलवात की मके तू ही उल्टा मके नशा सी तू ये गांव नहीं आउर तू याचे सुनु उनके सब बुलवात तू कम रेट दुरुवात काय काय बुलवात बार बाट लीला ले.
8: अच्छा
9: उन्हीं का चे भाई तुम चित्र तुम इधर हम चित्र मैं इधर है से भाई तू की टेंडा हुआ तू की सब बुलवात असनी सब चौकट उकट बोले सब दरवाजा उजी सब के कमरे बना हुआ काय काय बुलवा.
8: अच्छा
9: अच्छा मच भी इतरो मच मेहनत इतरो मैं दूर हुआ तुम यार तुम बड़ा और दरा काय बुलवा है उनका चे उन मन के आज होते तो कुएली आचो ते लगे जसनी यदि पोटिया पल आचो बेंगलुर आचो सब उन मन सब गोदाई भी था मना जड़ी गुड़ा ये लगा चुच मंत्र चार जन आचो मंत्र राम ची गाँव ने एक लच आच मैं.
8: अच्छा बोले ने आजकल तो जुगे फिनिशिंग लागे
9: हाँ फिनिशिंग उन तो पूरा फिनिशिंग लागे उन्हीं बीती तो काय तो ताकल वसन वैसे जसन उन बीती वैसे बोले जब तक बोले उनके बोले सोग नहीं दकाल उनके बोले मजा नहीं दे नहीं बना बोल उन्हीं कहते उनसे सोग इन बनाते रहते उनके बोल दकले हाँ ना ही ना पैसा दर लो बोल तो बना लो ठीक बना लो बोल लो ना उन्हीं ऐसे नहीं वैसे
8: अच्छा तो दखना बोले ने तुचो बोले ने जीवन आए बोलू आगे मोर लेकिन कटिंग ची
9: ताकत रोत बोलो मशीन बीती है आग चन रेंदा बीती वाले कि बड़े दिन चाड़ू पड़ती आम चे जसन लोग काका के आधा दिन ने बीच ने सरकार धोखा दिल्ली जूनी अतनी उन्नी अतनी काम वैसे आम चे बोले किन ताकत रोत ले माने जिकाता नहीं जब तो मशीन है ताकत ले बोल को रुक पड़ लो वैसे और जब रेंदा आगे जिक्त बीती है तीतरो खूब मसा गत जाते रहे नहीं फेंसिंग आन तो बोले बहुत दिक्कत जाते रहे ये भी नहीं हुआ आधा बोले मार लीस बोले तो बस मशीन चला लो उनके बाद सफाई कर लो बोले तुरंत बने शुरू होता है अब एकला बोले उनके बोले मशीन उन आची का उन बीती अब माने उन सामने बीता इंड तो बीता आचार ले तो सब ये पटापट वैसे नहीं जब सामने बीता नहीं रहे इधर दाए धक्का देश बोल रहे अंग्रेज मंच धक्का दिलो असन दे तुरू ये भी उन्हीं असनी ये भी उन बीती गेली ये भी सरकार चली तो सरकार साहे साहे बनाए सुनी असनी मिस्त्री मंच बोलो ऐसे
8: तो देखना प्रहलाद तो इतलो अच्छा कला के सीख ले कसन लागे ना तुझ मन ने
9: मैं तो ये बे बोले ना ये बे नो नियोल बोल नहीं नौकरी बिता ये बे ये कला ने उतर ले नहीं ये बे बोल नौकरी बिता नहीं हमरे मंदर करुक चाले बोले ना के भी ते बुक नहीं देवत ना ये घर रुक नहीं देवत ऐसा ना है जसन मौके बनाओ तू के बनाओ बोलते यदि जाऊ रहे था जार राजी जार राज जाऊ रहे पलंग बना नहीं ले उन बोल रान बीत उन कोडरी बार बाटे उन दख लो उन तन जाऊ रहे रानी बना भगवान दकाली सरस्वती घटली तो ये भी बात नहीं सब पूछ लो वैसे
8: बोले तुझो जीवन का जी कला से बड़ा सहारा होली ना
9: विकत सहारा होली और विकत मुकबले आधा उम्मीद दिली और आप माने किनी कुनी बद सहायता हो लोसन होली बोल आधा देवभूत बाट बोल सहायता हो नोले मच कला बाटल बोल सहायता हो बोल किनी माने माने आगले माने किनी दिक्कत नहीं है बोल असन टाइप चो उलू बोल
8: अच्छा अच्छा ये पूरा जसन की बड़ाई चो सामान धर तो काजे तो खुद
9: पैसा लगा ले खुद पैसा लगा ले बनान चु बना धर ले
8: अच्छा
9: जैसे आगे रेंदा मशीन बना ले फिर उनके बाद ने जैसे बनात गए नहीं उन पाचे इतरुआ बोलते पूरा गोटक 5,000 है गोटक 3,000 और गोटक 3,000 है उन गोटक और मशीन और उन बोल 3,000 है और गोटक माने उन्हीं गोटक मशीन है 2,000 है मशीन सब असनी मशीन मंदर ले
8: अच्छा
9: और ये सिकंजा मन बोले सब चबात कचे सब ये जॉइंट मिलात कचे कुछ है सब बुनी असनी 1,000 1,500 2,000 असनी बीती मंदर ले
8: अच्छा

0: बोले ने देख ये बड़े ही संगे फिर और खेती बाड़ी आए ना।
1: हाँ खेती बाड़ी है पूरा
0: अच्छा
1: उनकी खेती की नहीं कर ले तुम दा नाम चाहिए दादी पुरगा बड़ बोलो तन
0: हाँ
1: सबु
0: हाँ
1: आचे
0: हाँ
1: माने आले गोटो के कल्ला नाल खेती दिने खेती करू। हाँ
0: हाँ
1: और जब ये भी मिली ये भी तो कहीं नहीं है सर लिया हम चल गए
0: हाँ
1: साधन सर ली
0: सार ली
1: तो वसन दिने ये बोल मच काम हो दे बोलते ये बोले ये कला ने
0: हाँ
1: उतर लथन माने दूसरा सोच दूसरा आचे ये लोग
0: अच्छा
1: से सोच मौके मानते रहे भी कसन कर ले कसन हो दे
0: हाँ
1: उनका चे साला ये गोटो की लिए तो हाँ ये बना ले ठीक आचे ये तान
0: हाँ
1: ले तो नहीं आता और को नहीं
0: हाँ हाँ
1: बोलते ये दिमाग लगा ले मुझे
0: अच्छा
1: और ये सीख लू बीती बोली कि ये बोले मौके
0: हाँ
1: साथ दे से ची ची
0: अच्छा
1: बस मशीन दर ले लाइट आ चुका नहीं आए बोले उन्हें एकला बूती तैयार हुआ है उनके नहीं हुआ है फिर
0: अच्छा
1: बिना लाइट नोल बटे
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: लाइट का नहीं आए बोले काकी नहीं तैयार है
0: हाँ हाँ
1: एकला जाऊँ करुण दियो हफ्ता दिन ने बस किधर दिन हो निपड़ो
0: अच्छा
1: उनके बाद नहीं तीन हुआ है
0: हाँ
1: नो
0: हाँ
1: एक दिन बोल निपड़ो
0: हाँ हाँ
1: बोनान पोस पोस
0: बस बस अच्छा अच्छा प्रहलाद दादा आजकल तक पूरा डिजाइन आए फिनिशिंग आए बल्ले दिन दिन बदलते जाए छे ना
1: पूरा ये देखा जसनी माने आमी जसन कपड़ा लता बदलू सुनी असनी गच कुट बल बदलते जाए से लोग बदलते जासो अपना बाना चीना बोले अपना सुध बुध बोल लो से नून सब अलग अलग हो जाए से गच कुट के बोले गच कुट के बल दुखू से बढ़िया ये बढ़िया ऐसे न मासी लिगुनु बढ़िया दर दरा दका दे से गाम दाई ले टू चाय टंग टंगा पाचे सुनी असनी वो ऐसे भी रान बोल पूरा टंग टंगा वैसे और बड़ी मन के दुख बोले एक से एक बड़ी मन बोला चो माने बोले ये जीव लोट लो सन वैसे मुझे ये पूरा बना सो तुम मन बोले जब जसन भाई अभी गोड़ सो तो माने गोड़ जीव ची हो साक्षी नियम से हो साक्षी नियम चतन ये पुत्रा बना सो तो आगे जसन पलाष्टी पुत्रा मन रहेगुन उनके दखतरू ये भी तो हकीकत भगवान के दुखू हकीकत पुत्रा के दुखू हकीकत माने के दुखू उस बोल दुख लू थे उन्नी असनी रंगोली अभी उन्नी असनी सब भाषा बोली से बोल बोल गोटक बोलते तो बीती कि निक रे तुम जे रेडियो ची नहीं बोल लो तन वही तुम तन पीट कर ले बोल बोलती का बोल लो तन बात वही से
0: हाँ तो आई छी हाँ बल्ले ने एदाय पूरा तुझो कला चो हिसाब ने बल्ले कि पैसा कोड़ी हिसाब ने बल्ले ने कहीं तकलीफ नहीं आया
1: नहीं
0: सदा
1: है काई तकलीफ नहीं है मुझे
0: हाँ हाँ
1: अब मैं माने काई का पैसा कोड़ी जी बोल ले कोनी उनतान कर ले तो पैसा दीवा है बिना पैसा तो दे उन दे नहीं
0: दे
1: और
0: दे
1: कराए बोल तो नहीं हूं
0: हाँ
1: इतरी इतरो करारू ना माने कि इतरो मसीन नु है कई दर ले
0: हाँ
1: असिन लुका बाड़ी चोपी नहीं कर तो बीती आई हूं
0: हाँ
1: और तो उनचू बाद ने कई दरा दूरी वाले बोल तो दक्षिस इतरी इतरो मसीन जाऊ है बाबू दा
0: हाँ
1: करे चले अब
0: हाँ
1: तो इरिक दुर्वा चाल उन्हीं का जो बोलते मैं दूसरा तन कुरु ने घर आऊं दिया घर च बनन दे बोलू है
0: अच्छा
1: उन्हीं का जो मैं घर च बनन दूंगा अतनी कि नहीं उन नहीं सकते हो संतान बोले ना ही ना मैं आनुक नहीं सके तो घर आ वो नंदे बोले उन घर जाऊंगा
0: घर हाँ आलना प्रहलाद दादा दख तुचो बल्ले ने किनिक देसी हिसाब ने ये काय तो दवाई दारू
1: दवाई
0: गोलियां
1: दारू
0: हिसाब
1: बोल
0: ने बल्ले ने
1: ले सब बोल ले अब जसन ये भी जसन मेडिकल ने जाऊं
0: हाँ
1: जैसा मेडिकल बीती बोल ले अपना तो अपना बीमार चु बीती बोल ले मेडिकल दरे से
0: हाँ
1: और जसनी देवी चोले आम चे जड़ी बूटी अब जसन रान ने आचे आम चे लगे आचे
0: हाँ
1: जसन ए बे ऊंचे ऊंचे दोकलू से असन असन दुआई असन असन दुकान हुआ है
0: हाँ
1: असन असन बात हुआ है बोले सांगले देव वसले बोले असन असन गोटा के डाला बुलू
0: हाँ
1: तो आले असन गोटा कौन दका बोले जसन ए बे गचो ये चाली उन चाली बनान
0: हाँ
1: अलकाई बोले जसनी पेट दुका है जसन मुड़ दुका जसन नाना प्रकार की दुका है तो वो
0: हाँ
1: नहीं अलग चो अलग नाई तुई बना दे सामने नहीं जानू बोले उन गोटा बनान कर दूंगा मैं
0: अच्छा बल्ले
1: बस
0: ने
1: उनके बाद में
0: पूरा जड़ी
1: और
0: बूटी वगैरह बल पूरा आनू रहे छे
1: हाँ उन्हीं उतनी ताले ये भी अस्पताल लाल कोनी कोनी आले अब जसन ये भी तो टाइप पाई होली दुनिया भर चो बीमार मन होली कैंसर होली आले उन गोटा मन के तो आगे तो नहीं जानते रू आग चिनियो मने ये जसन लोको आवली अबे जो नागे टी भी वो जसन रे गोटोक डूटान रे लोको अभी तो बोले का दुका रे अभी तो नुआ है पीला क्रिचाड़े से नहीं ना सियान क्रिचाड़े से नहीं दरली मन गेली उनचो असन वो ऐसे उनचो बोले लोको आज बोले कि किसम किसम चो मंत्री साग पांचो मचे अंताज राख चो गोटो के नियम से हिसाब ने आगे बढ़िया रहे आगे कसन बढ़िया रहे बोले सियान सजन मन जसने भी तेल पुल ने बोला चो कातर होत बोलते हो जंगल ची भी कातर होत इतरो
0: बड़े शुद्ध रहे
1: जसन शुद्ध रहे तो अरे भी इतनो है जाल जितर बोला हम पैदा जानते जानते अभी सब बूटा लाटा जी बोले सबके अभी सब काते चला गए से सरकारी ची भी कादे चला गए से उन्हीं गोटा फिर आनू नफ्ता दिन ले बनाना और कौक पड़े सामी ची रोग बनाई बोलो
0: रोग
1: असन
0: बनाई
1: वैसे अब जंगल भी तक चाड़ लू उनके बाद ने जंगल ने तो नहीं आए आगे तो सब सर ली और ये तो सब भी कुन का सोत अब कई दो एक बल आन लू तो उनके बोल बीक सोत अब ये बाटे मर तो कर मात्र दो ही आचे उन मन चका तो कर दो ही नहीं है सबके नहीं भी सरकार लग बीक सोत अब सरकार उन्हीं गोटा काम जाऊन उनके बिर और गेनू ना आज बीमार कर चढ़ाई उन्हीं
0: हाँ
1: वैसे
0: भले ने आम चो आगे चो खा

0: इरफान रान बल्ले
1: हाँ, बढ़िया रे ईद अल्दाय बल्ले गागर मुंड बल्ले शहीद अच्छा रे जसन भी आगे जसन मारा मारी वाले बल्ले गोटुक दुई बड़का तीन बड़का नोल बिंदा बिंद कोटा कोटी वाले बल्ले ईद अल्दाय अब बिकट आड रे आड़ा ने ये भी कीनुमा बोल कुन टेगल लिख मार ले हाथ गोट टूटे थे आगे चो बल्ले गाय बिलोली जसन चेरी मिट बोले आग चो कान पीन ने बहुत अंतर रहे और ये भी चो जित्र बोले जसन ये भी जन्म नहीं ये भी इतरो ताकत नहीं आए नर लगे ना जो नी नर लगे नहीं है ना ये मल्लक बल नहीं आई इतरो लेडीज मल्लक बल नहीं आई इतरो दम नहीं आया आग चो आगे चाहे बोले जित्रो बजाक बोक सोकत नहीं ये भी साला उन्हीं 10-20 लीटर पानी बल पोक नहीं सकते अब इतरो की असन स्वाति बोली की एकदम की काकी माने उल्टा बुद्धि तैयार ना जो तापना जो कोटा बोले दूसरा बुद्धि बनान करा सो
0: तो अरना प्लस दादा तो इतलो अच्छा तो छो बड़े काम छो सब गोट के संग लिसना को खूब जो अरना
1: जो अरना जो अरना जो
2: हाँ कलाकार भाई बहन मन एवे आमी सुनते रहूं भेंट वार्ता कार्यक्रम ने एथाने गोट बात करते रहो दादा श्री प्रहलाद और एमन संगे जुन गोठियात रहो थुन मनात बलबीर सिंह कच्छ तो भेंट वार्ता भीतरे एमन चो कितरो सुंदर गोट बात मन के तो सुन लू ने दादा प्रहलाद कितरो सुंदर जो नए लकड़ी बीती शिल्पकारी चु काम के कर सोत ने और दादा प्रहलाद काम के कर सोत अरे मन कितरो सुंदर आमदनी बोले कमा सोत और आप लो नाव बोले बनाला सोत चीना बोले बनाला सोत ये लकड़ी शिल्पकारी ने तो ये तो काई सुंदर गोठ मन रहे अदाई और बोले गोटोक झाला बीती नगद गोठा से ए गोट के सुनोता उन चो पाछे फिर हमें गोठिया मा
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आए 07782222666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
2: ये काय सुंदर झाला के तो सुन लो मंत्र अदाय समय होय से गोटो गीत चो कसन बल्ले आमी आमचो कार्यक्रम मन ने कई ज्ञान ध्यान बीती गोठ मन झाला बीती गोठ मन के तो धरुन ची रुआ असनी आमी गीत मन के धरुन उकलाय बोले नी भूल को तो असनी ये मधुराम और मंचो संगवारी मंचो गा लो ए गोटो गीता से ए गीत के सुनुता उनचो पाचे के फिर आमी गोठिया मा
4: तो

कलाकार भाई बहन मन, एबे आमी सुनते रहू मधुरा मरुन मंचो संगवारी मंचो गाव लोए गीत के। तो अदाएं दखा मचो जात समय होए से, असनी मैं फिर के भई तुमचो संगे भेंट होक लाए आईंदे आले विदा धरे से। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाई कलाकार दादा दीदी मन, भाई बहन मन और संगजौरिया संगवारी मन के जातो पूरे में तारा करे से जुहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर दुआर कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन, दीदी मन, बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के, मैं तारा करे से जुहार। और सपाए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और चुमा। तो बहिन मन कसन आसस तुम्हें सपाए, नगत नगत आसस बिकाय। असनी नगत नगत रहा बहिन मन, तुम्हें नंगत आसस बल्लो ने मके बले नगत और हरिक लागे दे। और असनी बल्ले आजीले कई बहिन मन चो तो बूता बाड़ली से वे ने, कसन बल्ले आजीले स्कूल मन खुलुक मुरियाली से ने, पीला मन स्कूल जाओ कले मुरियाला सोत। तो पीला मन तुम्ही बल्ले सपाए नंगत नंगत आसास बेकाए, अच्छा ले रहा है तुम्ही सपाए। और तुम्ही जो स्कूल जा तो पीला मन हंस, अदाय रोजे दिना स्कूल जहा, अच्छा ले पढ़ाई लिखाई के करा है ठग नहीं हुआ। और देखा पढ़े लिखाई के करुण भाती, आप लो पाए ने ठिया हुआ, बड़े मनुक बना, बड़े मनुक बनुन भाती नाव कमावा। आप लो आया बाबा घर परिवार चो लोग, गाँव चो लोग, सपाय चो नाव बनावा है, ऊपर उठावा सपाय चो नाव के। तुम्हें नहीं पीला मन, आप लो आया बाबा घर परिवार चो लोग के मुर्रे नहीं बिटावा, उन मन चो गोट बात के धरा, उन मन काय बल सोत, काय समझा सोत, काय सांग सोत, उन मन चो बल तो सपाई गोठ मन के, मन दे उन भाती ध्यान ले सुना और समझा है। तुम चो आया बाबा के घर चो लोग के, गांव पारा चो सपाई लोग के, सियान सजन नानी बड़े बल्लो ने सपाई लोग के, आदर भाव ले मान दे उन भाती गोठ यात्रा है। पीला मन मया संगे आम के नगद बन मनुक बनुन भाती रतो राय, आम के अच्छा मनुक बनुन भाती रतो राय, अच्छा इंसान बनुन भाती रतो राय है। पीला मन तुम चो तारा दीदी चो बल्लो ए गोठ मन के नी भूल का है, सुरता संगावा। बहिन मन पीला मन संगे तो गोड़ बात होली, तखा आजी ले जो नाय पीला मन चो स्कूल जातोर मूर होली ने, अदाय रोजे स्कूल जा दे भी स्कूल जातो पीला मन। और आंगनबाड़ी बोले जाऊक मुरिया दे भी कई पीला मन ने, और कई पीला मन चो तो ये सुनवा भरती रहे दे भी पहली कक्षा ने। तो असन बेरा आम के आम चो घर मन चो जोन पीला मनात, एमन के पढ़तो ने रुचि ओ बोलून भाती, एमन के और प्रकार ले पढ़ातो रहे, लिखातो रहे और सिखातो रहे, बोले आम के कोशिश करतो रहे। पीला मन के रोजे गोटोक तय समयाने पढ़ौक लय बसातो रहे और उन मन के खेल खेलने बोले पढ़ातो रहे और सिखातो रहे पढ़ुक लाए, कहनी बीती पुस्तक मंचो माध्यम ले और कई बोले पुस्तक मन रहे से जोन थाने कहनी मन बले रहे से, सुंदर सुंदर चित्र मन बले बनू रहे से, उन बीती मन के बले दखा उन बाती जो नवा नवा स्कूल जाओ मुरिया सत पीला मन और आंगनबाड़ी ने बले उन मन के सिखा तो रहे। अनाराम बीती पुस्तक मन बले रहे से।

0: पढ़े ही नहीं, मन लगाऊ खुलाई सकू। आर आम के बड़े पीला मन तो स्कूल जा सोची नहीं, हुन मन जान सो समझ सोची, संगे संगे नानी पीला मन बड़े हो नहाले नानी पीला मन हो, उन मन के आम के जोन पढ़ई चो मोल आए, उनके सांग तो रहे समझा तो रहे कि पढ़ ले लिख लो ने काय हुआ है, ए चोले काय होए से कसन होए से, ये सब के आम के पीला बेरा ले ची पीला मन के सांग तो रहे, तेबे उन मन पढ़े लिखे चो मोल के बले समझू र दे और जानू र दे और आगे जाऊन बले समझते रहते। तो बहिन मन ए तो काय सुंदर ज्ञान ध्यान बीती गोठ मन रहे, अदाय जहाला बीती गोठ मन बले आसे, ए गोठ मन के बले सुनूता।
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता, डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो, इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेन कम की सित तोड़, अदेन के इलाज तलाय खर्चावेन कम लगे माता, जीवन बीमा तगवेन इंजे जीएसटी छूट दोरकिता, अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता, सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता, अद गम्मास इंजे 18% अत्ता, इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकिता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: बहिन मन एबे हमी एक काय सुंदर झाला बीती गोठ मन के तो सुन लू ने, अदाय दखा गोटोक भेंट वार्ता हासे। एथा ने बहिन श्रीमती नीता दीवान गोड़बात करसोत और एमन संगे जोनाय गोड़बात करसोत उन मनात बलबीर सिंह कच्छ, अले एमन काय काय गोठिया सोत, काय काय गोठ मन के सांग सोत, एमन चो गोड़बात मन के पहिल सुनूता, उन चो पाछे के फेर हमी गोठियावा।
4: बहिन मन में गोट बात करें से नीता दीवान ये मनात सोनार पालचो, तो नीता दीवान सबले आगे सांग बले ने तुचो जोन काम आए, काय काम है से?
5: मचो कौशल विकास योजना में आए।
4: अच्छा, कौशल विकास योजना ने।
5: हाँ।
4: अच्छा, बले ने कहीं प्रशिक्षण वगैरह देते और काम है से?
5: हाँ, वे प्रशिक्षण दी मामी, मतलब बेरोजगार लड़का लड़की मन के ट्रेनिंग पठाऊ हम हैदराबाद।
4: अच्छा,
5: तो उतार ट्रेनिंग 6 महीना छुआ है, 6 महीना ट्रेनिंग के बाद उतार जॉब वगैरह लगवा है।
4: अच्छा,
5: उतार हूँ कर तो बीती ना।
4: अच्छा, तू नीता बोले ने काय काय चु ट्रेनिंग दे सास?
5: सिक्योरिटी गार्ड चु ट्रेनिंग दी हुआ था, और फिर फ्लिपकार्ट चो और हॉस्पिटल वगैरह में ये सब चीज में देसो, तो मतलब उतर ट्रेनिंग जो बाद में।
4: अच्छा,
5: पूरा ये सब चीज जो ट्रेनिंग होता सीखा सो बस उतर है।
4: अच्छा, बोले और महिला मन का जे?
5: महिला मन का जे तो नुमा ये सिर्फ बेरोजगार जो लड़का लड़की 8वीं 10वीं 12वीं पास आसो थोनी मन का जे आए।
4: अच्छा, बोले जो लेका और लेकी मन का जे?
5: हाँ, 8वीं 10वीं 12वीं पास पढ़ून भाती घर आसो तो उनके हम 6 महीना का ट्रेनिंग पठाऊ हैदराबाद में।
4: अच्छा, तो ये था जैसन की स्थानीय स्तर ने तुम्हें बोले का काम कर सा चाले समूह वगैरह संकाई?
5: हाँ, बिहान योजना बल जुड़ ली से भी थी ना।
4: अच्छा अच्छा, हाँ। बिहान ने बोले ने था काय काम है से?
5: बिहान ले मतलब ये बोले जोन समूह में जुड़ लासो महिला मन मन चो बेटा बेटी मन पढ़ बात छाड़ लासो तो उन्नी का फिर मन के ट्रेनिंग का जहाँ होता मतलब कैंप वगैरह लगाऊ बात पंचायत मन में सरपंच सचिव द्वारा हम कैंप करूँ भाती हूँ ताले फिर सांग ले फिर जो जात लोग के तैयार कर ले।
4: अच्छा।
5: फिर नहीं हूँ सर छाड़ उन बाती हूँ सुताल।
4: अच्छा, ये सब लोग के मतलब उन्हीं हैदराबाद ने साथ?
5: हाँ, सबके 18 से 30 द्वार से तक आए।
4: अच्छा, तो फिर उता गेला बल्ले मन के कहीं काम मेरे से सीखो नहीं लेने?
5: हाँ, काम 6 महीना ट्रेनिंग होले उताय तुरंत मिले से जॉब बल उताय कर सो।
4: अच्छा, उता बल कर सो?
5: हाँ, उताय कर सो कहीं बाहर दी उनवा सिर्फ हैदराबाद में ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग के बाद जॉब उता मिल रुचि आए गारंटी है।
4: अच्छा,
5: हाँ,
4: तू जो सन की जो नी करूक चाहे से उताय बाट करूक चाहे से सन लोग मन का जे?
5: तो उसन तो नहीं हो मतलब ये बाटे नहीं करूक सको क्यों बोले ये बाटे नहीं।
4: हाँ।
5: मतलब उता ट्रेनिंग कर लो के ये बाटे नहीं दे सकू बोल सत नहीं मन।
4: अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये तो बाहर इस लोग का झोली मतलब स्थानीय स्तर ने कोई महिला लेकी मन काज कहीं तुम चुपाट लेके प्रशिक्षण
5: महिला लेकी मन काज अगर जो घरे मतलब घरे कई चीज चो रोक टोक नहीं आए तो उन महिला जो उन करू सके।
4: अच्छा तो ये मन तो बाहर ही जाऊन कर रुक सक।

0: उतारे था काज कहीं बस्तर ने कर तो काज कहीं काम।
1: बस्तर का तो कहीं नहीं है, मतलब उतार तो प्रमाण पत्र हो गया अमीर हुआ है, फिर पाचे मतलब पढ़े लिखे ज्यादा तो उन बात करते करते ये बात बल कोशिश करूँ भाती, फिर पाचे बात कहीं बल करूँ सक दे का पाचे कर तो करूँ चाह ले ये
0: अच्छा
1: बात बल लगे ऐसा नुआ की नहीं लगे बात नुआ ये बात बल करूँ सक पाचे।
0: अच्छा बोले उन आप लोग इच्छा ने करुक लाए सकत बोलू नहीं।
1: हाँ आप लोग इच्छा ने
0: अच्छा ट्रेनिंग उतार धरुक लाए सकत बोलू नहीं।
1: हाँ ट्रेनिंग तो धरू पड़े दे तो बिना ट्रेनिंग तो नहीं हो नहीं कहीं।
0: हाँ हाँ उन तो आए जी।
1: हाँ हाँ
0: हाँ तो ये तो वाली संस्था मैंने काम बोलू और तू चुका है काम है ऐसे।
1: और तो कहीं तो नहीं मैं उन्हीं बीच ना उन्हीं बीच ने बस करें इसमें
0: अच्छा तू
1: पहले बस समूह ले मतलब जुड़ू रले मैं बस समूह में जुड़ून भाती, फिर अभी करते करते फिर एता कौशल विकास योजना में करें से 1.5 साल होली चालू होली से मत एता कर ली।
0: अच्छा समूह ने बोले काय करते रहला समूह ने आगे।
1: मैं समूह ने फर्स्ट ने सक्रिय महिला जो काम करते रले
0: अच्छा
1: उतरों ने फिर सीआरपी राउंड कर ले, फिर
0: हाँ
1: उतरों ने पीआरपी जो कर ले पीआरपी बाद में कौशल विकास योजना करें से 1.5 साल होली।
0: अच्छा ये सक्रिय महिला बोल से जेता काय काम रही।
1: ये था मतलब उन्हीं गांव ने समूह की तो चले सुन समूह के बाहर बैठक में जाऊन दफ्तर रजिस्टर सुधरा तो उन्हीं काम करते रहे।
0: अच्छा हाँ हाँ
1: हाँ
0: तो ये मन कहीं प्रशिक्षण वगैरह बोल देते लास्ट महिला समूह मन के।
1: प्रशिक्षण वाले हुनी मतलब लिख तो लोग के सांगते रहू की असन लिख तो असन कर तो हुनी सब चीज तो समझाऊ जाऊन भाती,
0: अच्छा
1: और तो ट्रेनिंग तो और बाहर ले उन दे उन मन के मतलब
0: हाँ हाँ अच्छा
1: जो बुक लिखते रहे उन मन के।
0: हाँ हाँ अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ पल्ले हूँ मन की तुम केवल मार्गदर्शन सांगते रहो
1: हाँ
0: लास्ट
1: हाँ
0: मन।
1: हाँ हाँ
0: हाँ हाँ हाँ तो ये भी बल्ले जसन की कहीं घर चो बोले कहीं दुकान वगैरह नहीं तो कहीं दूसर काम काय कर से चल।
1: ये भी मैं तो घर या और कहीं दूसरा काम नहीं करे बस यही भी तीन ने हम जो डेली फील्ड रहे से फील्ड
0: अच्छा
1: जाए से बस कैंप वगैरह लगाऊं भाती यही मन के प्रशिक्षण वगैरह दे से बस।
0: अच्छा तो रोज दिन फील्ड जाओ पड़े से।
1: हाँ डेली फील्ड आए हाँ
0: अच्छा कहाँ पंचायत मन ने।
1: पंचायत मन में सरपंच सचिव का जे सीओ सर आदेश नहीं कराऊं दिलो तो उन्हीं मन मतलब जम सांग रू सामी तो सांग ले फिर कैंप का जी मन जमा करूं दे सो तो तब सांगू सामे जो बारे में सना सुना बोल दे जो बोले
0: हाँ अच्छा
1: तो से तो जा तो लोग तैयार होले मन फॉर्म वगैरह भरा हूँ से और फिर उतल डेट दी रो था हम हैदराबाद से सर मन तो उतले फिर हम ये डेट में भी 12 तारीख के पठाऊ हम ये बाटले बल तैयार होला सो जा तो लोग मन।
0: अच्छा हाँ।
1: हाँ
0: तो ये जैसन की फार्म भर तो काज बोलू काय काय चीज लागे से को निजात लोग
1: एता
0: के। हाँ
1: लागे से आधार कार्ड राशन कार्ड आय जाति निवास
0: अच्छा
1: मार्कशीट लागे 10वीं 12वीं
0: हाँ हाँ
1: जन बल 8वीं
0: हाँ हाँ
1: ये सब
0: अच्छा
1: चीज लागे से तो और राशन कार्ड में नाम रहता तो जरूरी है एटा।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो ये चो जो मीटिंग चो जो मतलब काय के आयोजन कौन का ब्लॉक बांट ले वैसे।
1: हाँ ब्लॉक बांट लिया है।
0: अच्छा तो तुम्हारे मन की कहीं लिस्ट मिल रही होती कि ये दिन ये
1: हाँ
0: था।
1: लिस्ट है उताल पूरा आदेश दे रसोत का हम कितने भी करूँ से।
0: अच्छा हाँ
1: हाँ
0: हाँ भले तारीख हिसाब ने देता रहा है कि एक दिन
1: हाँ
0: ये
1: तारीख
0: बा
1: हिसाब में दिला सो तुताल बोले तो तारीख हिसाब में हम कर रहा हूँ से तो अलग बल जाऊँ नाम कराऊँ हम की सरपंच सचिव बात करूँ जो जो पंचायत में नहीं होली से उन पंचायत में जाऊँ सरपंच सचिव
0: हाँ
1: पटवार से मिलू हम फिर उतार सांगू हम तो उन मन मुनियादी करूँ दी बोले फिर दूसरा दिन हम फिर कैंप लगाऊँ सुता तो
0: अच्छा
1: ट्रेनिंग दी हूँ फिर लड़का लड़की मन के।
0: अच्छा तुम खुद बोले पंचायत ने जाऊ सका।
1: हाँ खुद बल जाऊँ सकूँ हम।
0: अच्छा हाँ। तो मान लो कोनी अगर पंचायत ने बोले ने असन ट्रेनिंग का जे करुक चाहे से तो कसन ने तुम के मिलुक सक दे कोनी
1: हाँ
0: पंचायत चो
1: मिलू
0: लोग।
1: पहले सरपंच सचिव तो हम सांग दी रहे तो उन मन सांग दी रहे तब उन्हीं मिखट्टा हो सो नहीं तक पंचायत में।
0: अच्छा आगे ले तुम्हें जाऊन बाती सांग सास ने।
1: हाँ पहले जाऊ हम उन मन के सांग दी रहे से कि तुम काली काम चो असन असन बीती ना तो
0: हाँ
1: उतर ट्रेनिंग दे हम ही तो इकट्ठा करूँ दिया से बोलो हम सांग हम तो इकट्ठा करूँ दी सरपंच सचिव
0: हाँ
1: कोटवार मन।
0: अच्छा हाँ हाँ
1: हाँ
0: तो ये काम कर तो नीता कितलो बरकसन होली कितलो दिन होली जाए।
1: मच काम कर तो
0: हाँ
1: मचो अभी 1.5 साल हुए से।
0: अच्छा 1.5 साल तो अब तक बोले ने आम चो बस्तर चो कितलो लेका लेकी मन बल्ले सन ट्रेनिंग जाऊन बाती नौकरी कर सोताले।
1: अभी ये ताम चो बस्तर ब्लॉक ले मचो जानकारी छी सामने 40 जन गेला सो
0: अच्छा हाँ तो
1: 40 जन में गेला सो फिर कर तो लोग मन कर सो बाकी छुट्टी बले तेरु जाते रुआ।
0: हाँ अच्छा
1: हाँ
0: हाँ। तो ये मन रुचि धर सक लेका लेकी मन जोन आते मन काम कर तो काजे सीख तो काजे।
1: हाँ तो सीख तो काजे मतलब जो अच्छा टेंट है मतलब जो बारे में समझ लो लोग उन मन तैयार हो तो जा तो काजे।
0: हाँ हाँ अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ बोले आप लो इच्छा अनुसार कहीं बोल काम को रुक ला सकत बोलू।
1: हाँ पाछू था बोले मतलब ट्रेनिंग मतलब होली जाल नहीं उतर पाछे नौकरी बार आप लोग हिसाब नहीं दिवा देता मतलब मैं एक काम करूँ है मैं हुन काम करूँ है बोले जोन काम बोले हुन काम मिल जाता बोले।
0: अच्छा तो नीता दीवान तू इतलो अच्छा बोले तू चो जो काम आए प्रशिक्षण देते बीती नौजवान लेका लेकी के उनमन के स्वरोजगार काजे तो इतलो अच्छा सांगरे साल खूब खूब जुआर जुआर।
2: बहिन मन ए भी हमी सुनते रहो भेंट वार्ता कार्यक्रम के एथाने भेंट होते रहो बहिन श्रीमती नीता दीवान और एमन संगे भेंटघाट करून गोड बात करते रहला बलबीर सिंह कच्छ। तो एक आय सुंदर गोड बात मन तो होली ने अदा गीत मन बले आसे जोन मैं तुम चुका जे धरुन भाती हिले से ए पहिल गीत आए दिलीप कुमार पांडे और हुन मंचो संगवारी मंचो गावलोर आले गीत के सुनुता।

सावला सो दिलीप कुमार पांडे और हुनमंचो संगवारी मन असनी गोटो काउर गीता से तब बहिन मन कसन बल्ले आम के गीत गोविंद के सुन लो ने हरिक लाग भाई नगत लाग भाई। तो असनी ये काय सुंदर शिक्षा बीती गीत मना से ने तो असनी ये दूसर गीता से एक गावला सोत महेश पांडे और हुनमंचो संगवारी मन आले गीत के सुनोता उनचो पाचे फिर हम गोठियामा।

हाँ बहिन मन, एक इतरो सुंदर गीत के आमी सी सुन लू ने अब सुनून बाती गोटोक सीख बोले मिली कि लेका हो नाले लेकी हो नाले फिर बड़े लोग हो सबके पढ़े लिखे के कर तो राय और एबे चो समय तो ऐसा ना है जहाँ शिक्षा खूब जरूरी होली से पढ़े लिखे खूब जरूरी होली से बोले हूँ लेका रहो नाले लेकी रहो कोनिच बोले रहो तो असनी और गोटोक शिक्षा बीती गीता से बहिन मन एक गावला सो जलधर और मंचो संगवारी मन आले गीत के सुनू।

हाँ तो बहिन मन, ए फेर गोटोक काय सुंदर गीत के आमी सुनलु। एक ही गावला सो जलधर अरुण मंचो संगवारी मन, दका कितरो सुंदर ए गीत मंचो माध्यम ले संकेत रहन रहने कि पढ़ई लिखई कितरो जरूरी आए। पढ़ई लिखई करलू वाले आमी गांव के आमी आगे बढ़ सकू, आमचो गांव के, आमचो पारा के, आमचो लोग के ने, अरे लोग चो जीवना के बले। तो दखा असनी मचो जातो समय बले हो ऐसे तो मैं फिर के भी तुमचो संगे भेंट हो कलाए दे। तो तुम ही सपाए बहिन मन, नंगत रहा, स्वस्थ रहा, हरी कुदिम ने रहा और खूबे खूबे बढ़ती उन्नति करा। अले विदा धरे से घर दुआर कार्यक्रम सुनतो सपाए आया मन, दीदी मन, बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के, जातो पूरे में तारा करे से जुहार।

0: का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
3: काश्तकार भाई बहन मन, जसन जसन जनसंख्या बाढ़े से हुसने हुसने बेड़ा कमानी कम होए से बेड़ा खाड़ा कमानी कम हो तो के देखुन पशुपालन के किसान मन आमदनी चो प्रमुख काम बनाक लाए सकोत। मानतरे चो नगद वाट मन नी जानतो के किसान मन के चुखुबे फायदा नी मिरुक सके से। यही काजे गोरस व्यापारी के लाभकारी बनातो काजे पशु पोस्तो लोग मन के एगोट मन के लेख करुक लाए पड़े से। सबले पहिल तो पोस्तोर गाय हो नहाले भैंस पालन पोषण काजे ज्ञान और मन चो इच्छा शक्ति होतर खूबे जरूरी होए से। दूसर गोट होए से गोरस बीती पशु मन के गाय भैंस जो घेंतोर पूरे छाट तो काजे पशु के घेंतो बेरा उम्र नस्ल और हुंचो स्वास्थ्य कसना से एक ध्यान देतोर खूबे जरूरी होए से। घेंतो काजे बले गोरस बीती गाय नहाले भैंस के लाफी ठान ले नी घेंतो राय। कसन बल्ले लाफी ठान ले घेनलो ने ये जलवायु हुनके हुंचो काजे अच्छा होए दे कि नहीं, हुंचो देह पाए अच्छा रह दे कि नहीं, ये गोट काजे लेख करतो राय। और पशु मन उन्नत नस्ल चो रहो ये गोट के बल्ले दखतो राय। पशु चो उमर कसन रहो कास्कर भाई बहन मन गाय और भैंस के दखुन भांति घेनतो राय। हुन एक नहाले दुई हार पीला पकाऊ रहो। संकर नसल चो गाय चो पहिल हार पीला पका तो उमर 28 से 32 महीना और भैंस चो उमर 45 से 48 महीना ले आगर नी होतो राय। और लेख करतो राय कि हुन चो देह पाए नगत और बरसक रहो। ढेटी मन बले नगत और बीमार नहालो रहो, एके बले दखुन भाती घेनतो राय। गोरस कितलो दय से एके सांगा सुना हिसाब ने नाई पारले घेंतोर पूरे आपलो हाथ ने 3 से 4 हार दुहन भाती कितरो गोरस दय से एके जांच करून दखतो राय। गाय भैंस के छाटतो बेरा होंचो पीला बाछी रलो ने और नगत आए। काय काजे की बाछी ले ए तो समय आने गोटो गाय नाले भैंस बने दे। संगे संगे लेख करतो राय कि होंचो सिंग और खुर जसन चो हुसन रहो। बल्लो ने बिकतो काजे व्यापारी मन होंचो सिंग के घसुन भाती लुका हुआ तो उमर के ऐ काजे ये गोट के बले लेख करतो राय। पशु के पूरे ले पाठे हिंडाउन बले दखतो राय। पशु चो जनेन्द्री बल्ले जन्मा तो आंग ने कहीं अलग ले कहीं पानी महा घसरे से तो नहीं, ये गोट के बले लेख करतो राय। लेंगड़ी के बले हाथ ले हलाउन भाती दखतो राय। ऐचे संगे पशु जानवर चो टक्कर के बले लेख करतो राय। एचो काजे लगे जाऊन दखतो राय। काय काजे की कोनी कोनी पशु दूसर लोग के सिंह ने मारुआत और कोनी कोनी पशु मन सिंह ने खुटा के मारसोत। असन पशु के बले लेख करतो राय और नी घेनतो राय। आगर गोरस काजे हालिस्टीन फ्रीजियन जर्सी संड ले जन्मालोर संकर गाय मन ये थाने 62.5% विदेशी नस्ल चो रहू रहो और एक घेनतो राय। देसी नसल काजे साहिवाल नहाले हरियाणा चो शुद्ध नसल चो गाय मन के घेनुक सकास। भैंस चो नसल काजे मुर्रा और उन्नत मुर्रा भैंस पोस्तर नगत आए। कास्कर भाई बहन मन सांगलोर असनवाट के धरुन गोरस चो उत्पादन कर ले जुगे लाभ कमावा से और आप लोग डेयरी व्यवसाय के आगे बढ़ावा से।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुशील सिंह ठाकुर का प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फर्ज फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, आनंद बख्शी की शब्द रचना, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फरमाइश आप सबकी। आप हैं मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी के हमारे श्रोता। संदीप गगलानी, सुधीर नूतन, सुनीता सुनीता शर्मा, जगमोहन, भूपेश और इशप्रीत शर्मा, आप हैं करनाल के हमारे श्रोता। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, आप हैं कोटवा नारायणपुर बलिया से। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कलाम गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, लीलू और रितु सिंह, आप हैं कैदीमुड़ा रायगढ़ के हमारे श्रोता। धनबाद झारखंड से एक खत आया है, आप हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और बेबी समृद्धि, संजीव कुमार सिंह, पूजा और आरती सिंह, साथ ही रवि सिंह, आप हैं झाझा बिहार से, भुवनेश्वर सिंह और लीलू सिंह, पटना बिहार के हमारे श्रोता, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, रोनिका और रागिनी यादव, हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, आप हैं गांधी चौक रोपण पंजाब से। भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा, आप हैं तासपुर मोरबा के हमारे श्रोता। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से आप हैं जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, पंचू यादव, दादू यादव, हथकेरा भाटापारा से, बावली से आप हैं कमलेश साहू, हरेंदर और सुशील बेलस पुरिहा, बेरेडी से ये खत आया है, आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद के श्रोता। नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा और आकाश कुमार, आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से, मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद शाकिब पवार और हसनैन पवार, आप हैं ताजमंजिल खंडवा से, बासार चौक ग्राम दीवाल से आप हैं शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, जिला खंडवा ग्राम छेंगा से आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे, नंद कुमार यादव, दुलखील यादव, शंकर, शमा, भोला, किरण यादव, कुलदीप, द्रोण, अमन, ईश्वर और कुलेश्वरी यादव, आप हैं मतवारी दुर्ग छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हिमलता और डिंपल देवांगन, पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन, आप सभी हैं बाग बहार भदरसी से, संतोष खड़से, विनोद खड़से, यवतमाल विदर्भ के हमारे श्रोता, गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी और यश कर्ष, भाई नरेंद्र कुमार तिवारी आप हैं जेल रोड रायगढ़ से, मोहम्मद सई अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबा नवासी, आप हैं ऊपरकोट बुलंद शहर के हमारे श्रोता। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फर्ज फिल्म का ये गीत।

आशा रेडियो श्रोता संघ महनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाड़कर राही, सरिता गौहाड़कर, प्रिंस एकांश गौहाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहाड़कर, प्रणीता और अर्जुन गौहाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गौहाड़कर, सुमित और कुमारी ध्वनि गौहाड़कर, महामाया पारा ग्राम दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी रेखा और मोतीलाल साहू आप भी हैं दरचूरा के हमारे श्रोता। जिला हिंगोली महाराष्ट्र रोकड़ेश्वर नगर से आप हैं रामचंद इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे और सुनील जपड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली से दीपालु राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित मोनू और सोनू। झुमरी तलिया से आप हैं छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा और रामचंद इंगोले, साथ ही हैं महेंद्र चौरसिया। तिरुपति नगर लातूर से आप हैं संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, रंजीत कुमार थोरात, रामकिशन गणपत और गबरू पहलवान थोरात आप हैं बीड शहर के हमारे श्रोता। दयानंद नगर नांदेड़ से आप हैं प्रकाश जैन, बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज आप हैं जरूण वरुण महाराष्ट्र से।

मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन आप हैं बेलर गांव के हमारे श्रोता। गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा आप हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के हमारे श्रोता। कतियापारा जूना बिलासपुर से एक खत आया है, आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन। बंबर चांटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी आप हैं भंडार सिवनी कोंडा गांव के हमारे श्रोता। अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर आप हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादी आसमा, सालिया, शोएब खान, राउफ, मुस्तबा और शाहिद आप हैं सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोता। रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, गांधीबाग अकोला से। खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं तिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका और अंजलि वर्मा, साथ ही हैं श्वेता वर्मा भी। अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, भीषम दास, मानिकपुरी आप सभी हैं हिच्छा महासमुंद के हमारे श्रोता। भलेसर महासमुंद से रेवती सेन, सुदन साहू, रामकृष्ण, देवनारायण और छगन सिन्हा। भटिंडा पंजाब से आप हैं परमजीत सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट से आप हैं जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई आप हैं कोली नांदेड़ से। नलेश्वर नरवेल से आप हैं पीएस नाहवकर और विशाल। सुजान वर्मा, सोहद्रा आयुषी और कृत वर्मा आप हैं सारा गांव के श्रोता। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनेश्वरी ग्राम पंचायत भटेना से। गौरीनगर इंदौर से आप सभी हैं आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। वनिता नायडू, कृष्णा राव नायडू, ईश्वर राव, रोजा देवी, सोमशेखर और अक्षय प्रांजल नायडू आप हैं अघनपुर धर्मपुरा बस्तर के हमारे श्रोता। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से। गन्नूलाल रुजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री आप सभी हैं देवरी फाटापारा के हमारे श्रोता। और पांठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। इसमें अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की उगल स्वरों में फिल्म सिलसिला का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है शिव हरि ने। चाहत आप सबकी। डोगरगांव जिला राजनाथ गांव से आप हैं राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, पीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं मंतुराम यादव, चित्र रेखा यादव, साहिल शिवम, केशव माधव, राकेश पोषण, रितेश नेतराम, संतुराम, विजय शंकर और भोला यादव। जमशेदपुर झारखंड से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव आप हैं धरसीवा से। छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण और CL यादव आप हैं संतोषी नगर रायपुर के हमारे श्रोता। चंदन नगर सतारा से आप हैं सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और शिमेण बाघमारे। विजय चौहान, तेजस्वनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान आप हैं कोल्हापुर के हमारे श्रोता। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित, मोहित और रोहन आर्य। धुरवास सोनवड़े, सुनीता, खुशी सोनवड़े, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम आप हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, शिरसागर, सतीश, जगदीश और संजय चौहान। सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी आप है बेमेतरा से। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया आप हैं जमशेदपुर से। उत्तम कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर आप हैं पिपरपारा मुंगेली के श्रोता। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, प्रीति और देबिन आप हैं बड़ा बाम्बो गांव सुपाही साही से। गणेश पेठ महाराष्ट्र से आप हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल। जिला खंडवा मध्य देश किसान श्रोता से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, वनिषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। वंदना नगर इंदौर से एक खत आया है। आप हैं रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी और ललिता नारायण खर्चे। सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, प्रेमलता उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय, खुशी उपाध्याय आप हैं महासमुंद से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप आप हैं मोहाली चंडीगढ़ के हमारे श्रोता। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। और दतरेंगी से आप हैं मनोज कुमार साहू, सागर कुमार और सौरभ कुमार साहू। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत।

काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, निधिश परिधि और मायरा सुरोशी, भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा बाजार पारा बेमेतरा से, जिला जालना मराठवाड़ा महाराष्ट्र से आप हैं सुधाकर राज्य जाधव, प्रशांत राज्य जाधव, जगुताई संचित वायल, प्रथमेश देशमुख आप हैं मोताला से, मोताला से ही प्रणाली देशमुख भी, करडा से सानवी देशमुख और सवर्द देशमुख, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर आप हैं बेरडी के हमारे श्रोता, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं हीना कैसर, वकील राही और फिरोज आलम, संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका और तेजल यादव, सुरेश नारंग, आशा और सोनाली नारंग आप हैं सहारनपुर के हमारे श्रोता, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे आप हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, खुर्दे रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, दानसिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत आप हैं भाटापारा के हमारे श्रोता, विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मी नायदु आप हैं दतरेंगी से, लोकेश और समीर यदु आप हैं लालपुर से, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, कालू सिंह बड़ौले, सीताराम हीरालाल बड़ौले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचम आप हैं जूना पानी सनावत मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु और बबली, साथ ही प्रियांशु साहू आप हैं बोरसरा नैला के हमारे श्रोता, नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दीपिक मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, लोहंडीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग, हरीश, उदय और बाल सिंह नाग, रामधर कश्यप, रामधर बघेल, उदय ठाकुर, मोतीलाल मौर्य, दुखू राम, सोनू बघेल, नीलकंठ सिन्हा, भीमा मंडावी, शिव सोरी और बुधराम सोरी आप हैं दरभा बस्तर से, अमोल इंगोली, अर्चना इंगोले, सर्वेश अधीरा इंगोले आप हैं चितलवाड़ी अकोला के हमारे श्रोता, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष बेबी गाव्या और भाई सुच्चा पाठक आप हैं अनारकली बाजार जगराउन से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव आप हैं अमरपुर पिंडरा से, शिवाजी चौक राजिम से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, गौतम उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की और डोमन लाल कोठारी, डोंडी लोहारा संबलपुर से, अर्जुंदा बालोद से आप हैं दिनेश यादव, साधना यादव, रिंकू रावटे, अयांश रावटे, मंसूबा के हमारे श्रोता, चारामा कांकेर से आप हैं नरसिंह थापा, बीर सिंह और शंकर सलाम। आप सबने फरमाइश भेजी है फिल्म शर्मिली के इस गीत के लिए, एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत, इसने आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं नीरज।

फिल्म मिस्टर नटवरलाल से पेश है श्रोता सुमन कार्यक्रम का ये अगला गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है राजेश रोशन ने, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। आप हैं नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, जूनापानी सनावत से कालू सिंह, साहिल हरिओम, विशाल और सुमन, प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य और आराध्या। आप हैं उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से, जिला नांदेड़ से आप हैं शंकरलाल जायसवाल, रामलाल, गुलाबलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, मीनाक्षी दुर्गेश्वरी और ज्योति, बागलपार्डी वसमत से आप हैं चंदरलाल जायसवाल, विजया, लक्ष्मी और श्रेया, देवपेठ वाशिम से ये खत आया है, आप हैं राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसा, राजू, आर के कुसुमकर और प्रीति खंबायतकर। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता, विनोद, रुद्र और रिधु गुप्ता। पीली कॉलोनी ऐशबाग लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता रानी, कुसुम पलक और पंखुरी गुप्ता, मंजीत सोनाली, अंजलि गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। आप सभी हैं राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन के हमारे श्रोता। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, साथ ही आशीष चौहान आप हैं रायगढ़ बाबा कुटीर से। दरिया नामल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी आप हैं चारमीनार चौक गंडे पंडेरिया से, हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला आप हैं झूलेलाल चौक तिलदा के हमारे श्रोता। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाला, फलना झा आप सभी हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से। आशुतोष कुमार और अमिताभ कुमार आप दोनों हैं नया नगर सुपौल के हमारे श्रोता। जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता आप हैं यवतमाल से। छत्री तालाब अमरावती से आप हैं साधना रानी गुप्ता और किशोर गुप्ता। सुरेश नागवंशी, ललित यादव, श्रीनिवास, पुनीत सेन, बुधेश्वर रावटे, रामेश्वर चिराम, रामेश्वर रावटे, ललित दिवांगन, ईश्वर साहू और गोविंद साहू आप सभी हैं दल्ली राजरा से। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से एक हताया है, आप हैं बलवंत कुमार शर्मा, राजू बाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। बंडुलोहर, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और हरिभाव बिड़वे आप सभी हैं खुपटी महाराष्ट्र से। रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति आप हैं बुड़गहन छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनाल, अविराज गुरमान और गुरनूर सिंह आप सभी हैं लोहगढ़ फिरोजपुर से। शीतलानगर दुर्ग से आप हैं शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर। और मालेगांव से खत आया है, आप हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का ये गीत। इस गीत को लिखा है गरिमा और सिद्धार्थ सिंह ने, संगीतकार हैं विकी प्रसाद। पसंदकर्ता श्रोता हैं आप सभी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक और युवराज राउत, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग आप हैं। भटिंडा रोड बडवाली से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, बंगला मटिया बालोद के हमारे श्रोता, डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू प्रियंका और मुरली गौतम, मलोट कैंप पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपार वीर सिंह लाठी, विवान लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, डगिसर राम साहू, नूतन साहू और गौरव साहू आप हैं सुंदरपारा रोहानसी से, बलराम सिंह, रितिका सेन, इंदु पोषण, पुष्पराज सेन, भुवनेश्वर और पंचू सेन आप हैं दंतेवाड़ा बचेली के हमारे श्रोता, कृष्णानगर सेमिनरी हिल्स नागपुर से आप हैं नाना डोंगरदीवे, रमाताई, सीमाताई डोंगरदीवे, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगरदीवे, सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा आप हैं आगर मालवा के हमारे श्रोता, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई, ललिता, संजना, गणेश कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग और कुमारी देविका चौधरी, अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी लक्ष्मी, प्रेरणा और डिम्पी यादव आप हैं सुभाष वार्ड भाटापारा के हमारे श्रोता, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव आप हैं हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से, जामरून से एक हता है आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी जोशी, हठौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, गजानन येले, नवदीप येले आप हैं दरियापुर बामले महाराष्ट्र से, अरुणा दामोदर आप हैं शेरी बरनेर अकोला के हमारे श्रोता, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से, संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डाबर, विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, माई करिश्मा अंकिता और अनिकेत चौहान आप हैं कोल्हापुर के हमारे श्रोता, मोहम्मद वक्कार, फरीद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानेर, हीना कौसर आप हैं शेरकोट जिला बिजनौर से, आदर्शनगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, शायना शर्मा और निवान शर्मा, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे आप हैं धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से। पेश है आप सबकी पसंद पर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: India's interoperable DPI provides the diverse, high-quality and consent-based data sets that require to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate advisories to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good.
1: Right, Ankit, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
2: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
1: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha Speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the Youth Parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said the government is committed to building next-generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the Ministry on a proposed Middle East-India deep water pipeline. In a statement, the Ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test NET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
3: Earlier, the Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: The Special Investigation Team SIT, constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya, began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public, and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Bhavatanani made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Bhavatanani said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
4: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
1: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Evian, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
6: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
5: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
7: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
5: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिबाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुप्रे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
8: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
5: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
10: UNSC reform would be grossly inadequate.
11: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
5: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं।
13: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
14: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
15: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
16: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
15: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
16: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
15: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
16: क्यों?
15: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
17: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है, जबकि तालाब का

0: झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है? तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी।

0: और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
1: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
2: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
1: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
2: यस। साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
3: सू
1: जी,
3: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
1: जी हाँ
3: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
1: जी डॉक्टर साहब।
3: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
1: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
1: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
1: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
1: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 तीन बच्चे हैं।
1: क्या तीन बच्चे हैं? What's three dear?
4: तीन पत्तियां।
1: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सु,
1: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
1: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
4: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉनसी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
2: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
4: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
5: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
4: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
4: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
4: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू।
1: हाँ जॉन्सी।
4: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
4: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
4: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
4: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
4: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
4: थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
4: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
4: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
1: हाँ।
4: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
4: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
4: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
4: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
4: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
4: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।
4: ओह,
1: उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी।

0: और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। वीडियो वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे इसी बैंड पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। FM बैंड

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा दोस्त आनंद लेंगे कार्यक्रम युवाणी का शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। बस्तर के स्वर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। शिक्षकों के लिए ये कार्यक्रम सुनेंगे आप रात्रि 8 बजे। इसमें आप सुनेंगे वार्ता शिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन का महत्व, इस विषय पर वार्ताकार होंगी हेमलता त्रिपाठी। साथ ही आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजेगोठ में आज आप सुनेंगे तात्या टोपे के बारे में, प्रस्तुति होगी राम सिंह कश्यप की। पुरानी फिल्मों से रात्रि 9:15 पर रात्रि 9:30 पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत का प्रसारण किया जाएगा। पाड़ लोकवाद्य धुनों पर आधारित यह कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे विवाह पाड़ और माता पाड़, वादक कलाकार होंगे मंगलू और साथी। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में। इंग्लैंड के हिडिंगले लीड्स स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं मीडियम वेव पर शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। कल सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन और शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया जाएगा। सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन आप सुनेंगे। सुबह 6:20 पर आलेख और स्वर होगा गर्जन सिंह वड़कर का। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर सविता देवी के स्वर में। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगुट का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। सुबह 6:40 पर कार्यक्रम हुलहुली, इसमें आप सुनेंगे बिरली पाड़, वादक कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। नमस्कार जगदलपुर ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:05 पर, इसमें आप सुनेंगे रसरंग, विषय होगा अनोखा चांद, प्रस्तुति होगी चंद्रशी ठाकुर की। साथ ही आप सुनेंगे फिल्मी गीतों की मधुरी माँ। सुबह 8:30 पर लोकमंजरी, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। झुमझुमा लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लखेश्वर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर एक ही फिल्म से, इसमें आप सुनेंगे साथिया फिल्म के गीत। गुलशन इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक गीत सुबह 10 बजे, शीर्षक होगा हवा। गुड़दुम लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मेरे राम बघेल और साथियों के गाए भद्री लोकगीत सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार आधारित होगा पार्श्व गायिका सोना महापात्र पर। सबरस आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर, इसमें आप सुनेंगे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम कला और कलाकार। घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। NCERTA प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं FM बैंड पर। कल शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवाणी का आनंद लीजिएगा शाम 5:10 पर। बस्तर के स्वर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। पुड़ई फूल लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुकुलधर और साथियों के गाय हल्बी लोकगीत रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजी गोठ में आप सुनेंगे महाराणा प्रताप सिंह के बारे में, प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह की। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से उवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे परिचर्चा ग्रामीण परंपरा और योग, इस विषय पर प्रतिभागी होंगे श्री बलदेव मौर्य और श्री मंधर राम नाग, साथी होंगे श्री लोकनाथ नाग, संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रजनीगंधा पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 10:30 पर। ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंजनोड़ी सामसामिक विषय तक आधारित कार्यक्रम तसंगे नन्ना रमेश कुमार पोड़ियामी केंजनोड़ी नेन मनवा इत कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व ते केंद्र ते एनडीए सरकार ता 12 वर्षा पूरा अत्तग केंद्रित मिंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व ते केंद्र ते एनडीए सरकार अत्तद 26 मई ते 12 वर्षा पूरा किता। 26 मई 2014 ते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना शपथ पोष मत्तोर। एनडीए सरकार ता 12 वर्षा पूरा अत्तान के प्रधानमंत्री श्री मोदी केत्तोर की केंद्र सरकार ता अत्तव 12 वर्षा विश्वास विकास और जन कल्याण तीन समर्पित मिंदे। और केत्तोर की एनडीए सरकार 140 करोड़ देशवासी लोरा आशीर्वाद और सबले मुन्ने राष्ट्रता भावना तीन प्रेरित।

0: आस युवा मुत्ते और किसान भाई बहन किन सशक्त पाड़नक बातें हुआ ट्वीट सो श्री मोदी कत्तर की नैन देशमता बुनियादी ढांचा तीन पोइस डिजिटल क्रांति एवना विश्व स्तर तक हुन पूर्ण पहचान हासिल किता। प्रधानमंत्री कत्तर की विकसित भारत का संकल्प तीन साकार के लिए सरकार सेवा सुशासन और समृद्धिता ईद अर तक लगातार अग्रसर मनता। श्री मोदी कत्तर की सरकार ताकेट अत्तव 12 वर्ष ते तेहतव डाका तिना मिडिल क्लास अनिश्चितता तिना मुक्त आयमनता और आत्मविश्वासता संग देशमता विश्वास यात्रा तीन गति ये नग जुटे मत्ता। और कत्तर की वर्षा 2014 ते आसता बेद पोड़ता उदय अत्ता अद नेंड पूर्ण आत्मविश्वासता प्रकाश कुंज ते बदले मत्ता। ईव 12 वर्ष ने भारतता माने मुन्नेदाम ईद उड़ तोड़ की बेचुट सही नियत तिना सरकार चले माता अचुट तेज गति तिना विकास बड़े माता। ईद नड़मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून तिना भारत ता सबले दिव्य समय एवना सेवा केनोर निर्वाचित प्रधानमंत्री बने मत्तोर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ना रिकॉर्ड तोड़ा कित्तोर। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुन्नेदाम 13 मई 1952 तिना निर्वाचित प्रधानमंत्री ता रूप ते शपथ पश मत्तोर और 27 मई 1964 एवना प्रधानमंत्री डेढ़ तक मत्तोर। पंडित नेहरू ना निर्वाचित प्रधानमंत्री ता रूप ते कार्यकाल 4398 दीना ना मत्ता अगे 26 मई 2014 तिना पोइस 10 जून एवना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल इंजे 4399 दीना ना अत्ता अदिनले भारत ता इतिहास ते सबले लंबा समय एवना सेवा केन और निर्वाचित प्रधानमंत्री बने मत्तोर। ईद मौके तक केंद्रीय मंत्रिमंडल उन प्रस्ताव पारित कीस 10 जून 2026 ते भारतीय लोकतंत्रता यात्रा ते उन ऐतिहासिक क्षण केत्ता नरेंद्र मोदी देशमता सबले दिव्य समय एवना सेवा केन और निर्वाचित प्रधानमंत्री बने आयना बधाई इत्ता। प्रस्ताव ते ईद वेन उल्लेख कित्ता की सरकार प्रमुख रूप तिना श्री मोदी लगातार 25 वर्षा ना सेवाता ऐतिहासिक पड़ावता बुकते एवदा मुंतोर। ईद प्रस्ताव ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 ता अद घोषणा पत्रता उल्लेख कित्तोर अधिनगोर सबका साथ सबका विकास ता मंत्रता प्रति प्रतिबद्ध प्रधान सेवक घोषित किस मत्तोर। ईद दस्तावेज अभूतपूर्ण स्तर तक इत्तव सुविधाना विवरण इत्ता अधिनग गरीब लोर लय पक्का मकान बिजली स्वच्छ जल और प्रत्यक्ष लाभम हस्तांतरण ता संग ई निःशुल्क राशन और निःशुल्क चिकित्सा उपचार शामिल मिंदे। प्रस्ताव ते प्रमुख जनसांख्यिकी समूना सशक्तिकरण ता वेन विवरण इत्ता इदिनग युवा शक्ति नग केंद्रित वाटकिन स्वीकृति इत्ता बेनो भारत तीन विश्वता तीसरा सबले बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम और चंद्रयान मिशन ता माध्यम तिना ओन वैज्ञानिक शक्ति बनेम आयनक जरूरी भूमिका निभा कित्ता। धुआं मुक्त रसोई और लखपति दीदी अभियान तिना पोइस विदाई निकाय ने मुत्तेना लय ऐतिहासिक 33% आरक्षण तासुनता व्यापक नीति ना माध्यम तिना महिला नेतृत्व वाले विकास ता उन पूर्ण अध्याय ता विस्तृत वर्णन कित्ता। प्रस्ताव ते किसान किन विकसित भारत ता मूल स्तंभ मानेम आसो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पशुपालक और मछुआरा किन किसान क्रेडिट कार्ड दुर्कितिना आसुनता पहल ना सराहना कित्ता। प्रस्ताव ते इद्वेन व्यक्त कित्ता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व ते भारत आत्मनिर्भर सुरक्षित समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्रता रूप ते पूर्ण ऊंचाई किन दुर्कितिना जारी तासिता और वर्ष 2047 एवना विकसित राष्ट्र बनेम आयना दिशा ते मजबूत अर प्रशस्त केनद।
1: भारत सरकार आपके द्वार अभी आप समसामयिक विषय पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे गोंडी बोली में। एफएम बैंड और मीडियम वेव पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। समय है शाम के 5:10 का। पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के युवावाणी की शाम में, जिसमें आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त रूपाली काबरा
1: और मैं हूँ रंजना विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर घर, हर परिवार और हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है परिवार और युवाओं के बदलते संबंध।
0: परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहीं से व्यक्ति को संस्कार, प्रेम, सुरक्षा और जीवन के मूल्यों की सीख मिलती है। वहीं युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी ऊर्जा, सोच और सपने, युवाओं के बीच संबंधों में कई बदलाव देखने को मिलते हैं।
1: आज का दौर तकनीक और तेजी से बदलते जीवन शैली का दौर है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने युवाओं के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। आज युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक, आत्मनिर्भर और अपने निर्णय स्वयं लेने वाले बन रहे हैं।
0: वे अपने करियर, शिक्षा और जीवन शैली को लेकर स्पष्ट सोच रखते हैं। दूसरी ओर परिवार की पुरानी मान्यताएं और परंपराएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई बार दोनों पीढ़ियों के विचारों में अंतर दिखाई देता है।
1: हालांकि ये कहना गलत होता है कि संबंध कमजोर हो रहे हैं। आज के युवा अपने माता पिता से दोस्ताना संबंध रखना पसंद करते हैं। वे चाहे कि उनकी बातों को सुनना चाहे और उनके निर्णयों का सम्मान किया जाए। यह बदलाव सकारात्मक है, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी और आपसी समझ भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल सही कहा रंजना तुमने। दोस्तों, किसी भी संबंध की सबसे बड़ी ताकत संवाद होता है। जब परिवार और युवा खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। लेकिन आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण घर घर के में साथ रहते हुए भी लोग एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल, कई बार युवा अपनी परेशानियां दोस्तों या सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, लेकिन परिवार से नहीं। इससे गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। जब परिवार बिना किसी आलोचना के युवाओं की बात सुनता है और युवा उनका साथ देता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाते हैं।
0: इसके अलावा परिवार में साथ बैठकर भोजन करना, त्योहार मनाना, छोटी छोटी खुशियाँ साझा करना और एक दूसरे के लिए समय निकालना भी रिश्तों को मजबूत बनाता है।
1: दोस्तों, परिवार और युवाओं के संबंध बदल जरूर रहे हैं, लेकिन उनका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। जरूरत है विश्वास, संवाद, सम्मान और समझ की। जब परिवार युवाओं के सपनों को समझेगा और युवा परिवार के मूल्यों का सम्मान करेंगे, तब एक स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत समाज का निर्माण होगा। तो दोस्तों, चर्चा में बस इतना ही।
0: दोस्तों, आए दिन आप सभी से मुलाकातें होती ही रहती हैं और ये मुलाकातों के चलते कभी आपकी तो कभी हमारी शाम मजेदार हो जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, और फिर से इस शाम को मजेदार बनाने के लिए हम लाए हैं आप सभी के लिए, सभी के पेशकश में कुछ मजेदार गीतें और वार्ता और कुछ सामान्य ज्ञान की बातें।
0: अच्छा रंजना, ये शाम मजेदार तब लगेगी जब हम अपने दोस्तों को कुछ मजेदार खूबसूरत गीतों से रूबरू करवाएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं रूपाली, हमारे गीत और खूबसूरत सी बातें बस हमारे दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। फिर तुम देखना कि ये शाम कैसे मजेदार बन जाती है।
0: हाँ हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर दोस्तों, ये तो आप सभी के मूड पर डिपेंड करता है कि आप सभी कैसा गीत सुनना चाहते हैं।
1: दोस्तों, ये पहली फरमाइश आई है तड़वी बारे परिवार ग्राम मोहत से। भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू बाबू तड़वी, परु मुबारक बारे, विलास मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे। भोगरी तालुका रावेर से अरशाद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनस तड़वी। जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी। बेटियां रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार से। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू की।
0: इन्होंने फरमाइश की है फिल्म अमानत से और इस गीत में मधुर आवाज दिए हैं शफकत अली और सुनिधि चौहान ने, और संगीत है विशाल और शेखर का। तो फिर आइए दोस्तों सुनते हैं आपके मनपसंद का ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, ये सॉन्ग जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि आपको एक उम्मीद और एक विश्वास बना के इस दुनिया में कैसे जीना है और अपनी मुश्किलों से कैसे जीतना है।
3: दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हौसलों की उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है?
2: कभी कभी हम डर के साए में जीना सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को भी अपनी ताकत बना लेते हैं।
3: रंजना, आज हम जिस गीत की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि जीने का एक नजरिया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन्हें जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। पोठिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू ने, खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल ने, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने।
2: दोस्तों, ये गीत प्रस्तुत है फिल्म निर्जा से, जिसे अपनी बुलंद आवाज दी है कविता सेठ और अर्चना गोरे ने, और संगीत है विशाल खुराना के। तो फिर आइए दोस्तों, सुनते हैं ये रोचक गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सुरों का सफर पसंद आ रहा होगा, लेकिन रेडियो की इस महफिल में अब वक्त हो चला है एक नई चर्चा का।
2: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वार्ता का, जिसका विषय है अटल इनोवेशन मिशन। भारत सरकार का एक ऐसा सपना जो देश के हर बच्चे को इनोवेटर बनाने का हौसला दे रहा है।
1: दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये भारत की अगली पीढ़ी की सोच को पंख देने का एक जरिया है।
2: हाँ, चाहे वो अटल टैंकरिंग लैब्स हो या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये मिशन हमें सिखाता है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, बल्कि सवालों का हल ढूंढना ही असली विकास है।
1: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये वार्ता आयशा जोयल की आवाज में, जिसका विषय है अटल इनोवेशन मिशन।
3: दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयशा जोयल है। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रही हूँ, और वह है अटल इनोवेशन मिशन। दोस्तों, वर्तमान युग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का युग है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों को रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार क्षमता पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की। यह मिशन देश में नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवकों को नई तकनीकों के माध्यम से समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, देश में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। दूसरा, विद्यार्थियों में रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। तीसरा, स्टार्टअप और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहित करना। चौथा, शिक्षा संसाधनों में नवाचार आधारित वातावरण तैयार करना इत्यादि। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब है। इस लैब की स्थापना देश भर के स्कूलों में की गई है, ताकि विद्यार्थी छोटे से उम्र से ही विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग कर सकें। इन लैब्स में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है, जैसे कि रोबोटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन्स तकनीक, डिजाइन थिंकिंग। इन सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों को वास्तविक परियोजनाओं में बदल सकते हैं, और इसमें उनमें नवाचार की और आविष्कार की भावना विकसित होती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य नए स्टार्टअप और उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। कई बार युवाओं के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन संसाधनों और मार्गदर्शन की कमी के कारण वे अपने विचार को व्यवसाय में नहीं बदल पाते। दोस्तों, अटल इंक्यूबेशन सेंटर सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि तकनीकी मार्गदर्शन, व्यवसायिक सलाह, निवेशकों से संपर्क, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेटवर्किंग के अवसर, इन केंद्रों की मदद से अनेक युवा उद्यमी सफल स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं शहरी क्षेत्रों से अलग होती है, इसलिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई ताकि स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार आधारित समाधान विकसित किए जा सकें। ये केंद्र कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को भी नवाचार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का उद्देश्य देश की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, जल प्रबंधन में नवाचारी समाधानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार, उद्योग और स्टार्टअप मिलकर राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान खोजते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लोन का प्रयास किया है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्यतः रिटर्न पर आधारित थी, जबकि यह मिशन विद्यार्थियों को प्रयोग, खोज और नवाचार के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस मिशन के कारण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, शिक्षा में बढ़ावा मिला है, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ी है, टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित हुई है। आज अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना नवाचारी प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में अटल इनोवेशन मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह मिशन स्टार्टअप इंडिया अभियान के साथ मिलकर कार्य करता है और युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करता है। आज भारत विश्व के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में से एक बन चुका है। हजारों युवा तकनीकी आधारित कंपनियां स्थापित कर रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन युवाओं के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से वे नई तकनीक सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, रोजगार और उद्यमिता के अवसर खोज सकते हैं। इससे युवाओं की प्रतिभा को उचित दिशा मिलती है और वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमि निभाते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने अपने आरंभ से ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है, जैसे देश के हजारों विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा, अनेक स्टार्टअप को सहायता, ग्रामीण नवाचार को प्रोत्साहन, छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नवाचारों की पहचान। इन उपलब्धियों ने भारत

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था अटल इनोवेशन मिशन, जिसे अपनी मधुर आवाज दी थी आयशा जोयल ने।
1: तो दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन की उस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा तेज करते हैं। वक्त चला है हमारे जीके डोज का। आज के हमारे कुछ दिलचस्प सवाल हैं, आपकी जानकारी को और बढ़ाएंगे।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बना था? जी हाँ, 1964 में डगलक्स एंगलवर्ड ने इसे बनाया था। आज हमारे हाथ में जो स्लिक माउस है, उसकी शुरुआत लकड़ी के एक डिब्बे से हुई थी।
1: और दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि गूगल शब्द का अर्थ क्या है? ये गूगल शब्द से आया है, जिसका मतलब है एक के पीछे दो शून्य। कितनी विशाल सोच थी उन संस्थापकों की, है ना?
0: तो दोस्तों, यदि आप अगली बार जब अपने फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करें, तो याद रखिएगा कि आप इस इतिहास के कितने पन्नों को एक साथ छू रहे हैं।
1: तो चलिए दोस्तों, अब आपकी जिज्ञासा को शांत करने के बाद थोड़ा सुकून के सुरों की तरफ बढ़ते हैं। इस गीतों की फरमाइश आई है पंजाब रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेंद्र बीरक, मीका बीरक की। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक एवं तन्वी गोहर की। मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर, संगीता हर्षित एवं वैभव मुठ्ठू की। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मी यदु की।
0: इस गाने को अपनी जादुई आवाज और संगीत से सजाया है विशाल मिश्रा ने, और इसमें उनका साथ दिए हैं आशीष कौर की सुरीली आवाज ने।
1: दोस्तों, अक्षय त्रिपाठी जी के लफ्ज मानो दिल की गहराई को छू लेते हैं। ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि उस तड़प का नाम है जो एक महसूस होती है जब वो साथ ना हो। तो दोस्तों, पेश है नोटबुक का ये खूबसूरत नगमा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, अक्सर जब हम अपने सपनों के रास्ते पर चलते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते।
3: हाँ, लेकिन जब वही सपना सच हो जाता है तो वही लोग सबसे पहले तालियां बजाते हैं। फिल्म मिशन मंगल का ये गाना शाबाशियां उन सभी के लिए है जिन्होंने हार नहीं मानी।
2: तो दोस्तों, इस गीत की फरमाइश आई है पंजोनिया जालौन यूपी से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया के। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन। सुंदरपारा रोहानी से डगेश्वर राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू।
3: इस गाने को अपनी रूहानी आवाज दी है शिल्पा राव, आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने। अमित त्रिवेदी साहब का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य जी के लिए ये शब्द, कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियां, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला गीत है।
2: तो दोस्तों, चलिए पेश है अपनी मेहनत और अपने सपनों के नाम ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, अब तक हमने हिम्मत, जोश और गैजेट्स की भागदौड़ की बातें की, लेकिन क्या आप जानते हैं, तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, दिल की बात कहने का तरीका हमेशा वही रहता है।
3: जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत और संगीत आज की हमारी प्लेलिस्ट का ये अगला नगमा दिल के उन अनकहे जज्बातों को जुबा देने के लिए है।
2: फिल्म टाइगर जिंदा है का ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं, एक वादा है। आतिफ असलम की वो मखमली आवाज, विशाल शेखर का बेहद सुकून देने वाला संगीत और इरशाद कामिल साहब के वो लफ्ज जो दिल को छू लेते हैं।
3: दोस्तों, इस गीत की फरमाइश की है बुड़गाहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति ने, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजकांत सारथी ने, मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका घायल, गजानन घायल ने, उत्तराखंड जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज, रिफाकत शमरीन परवीन, मोहम्मद रियान माहिरा नूर ने।
2: तो आइए दोस्तों

0: मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
1: वाह वाह। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज का ये सफर परिवार और युवाओं के संबंध से शुरू हुआ था और भावनाओं के हसीन गलियारों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा।
0: उम्मीद है कि ये गाने और हमारी बातें आपका दिन एक खूबसूरत हिस्सा बनी होंगी। मैं थी रूपाली काबरा
1: और मैं थी रंजना विश्वकर्मा
0: और आप सुन रहे थे ये युववाणी कार्यक्रम। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक और कुछ नई यादों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए युववाणी, क्योंकि रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है।
1: शुक्रिया,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युववाणी, अभी आप युवाओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को NEET UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुसियांग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज ले शुरू हो इस नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करीन स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। अब समाचार विस्तार ले। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होए के संगे संग आज ले प्रदेश के जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल मन खुल गए है। आज ले स्कूल मन में शाला प्रवेश उत्सव घलो मनाए जावत है जौन 27 जून तक चलही। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नवा लड़का मन के टीका लगा के स्वागत करेगी। उन्हें विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल घलो बांटे जावत है। नवा शिक्षा सत्र की शुरुआत ले पहली काली परिवहन विभाग यातायात पुलिस स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय के सामला टीम स्कूल बस मन के जांच करी। ये दौरान स्कूल बस के सुरक्षा मानक दस्तावेज और कर्मचारी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालक मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। राज्यपाल रमन डे का आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप संघ राखे गए 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के शुभारंभ करें। ये मौका में राज्यपाल कहने की AI आधुनिक युग के एक विशेष तकनीकी हर है जौन चिकित्सा कृषि अर्थव्यवस्था और शिक्षा समेत आने आने क्षेत्र में मानव के सहायक बन सकत है। फिर यह मानव बुद्धि संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य के स्थान नहीं ले सके। ओमन युवा मन ले आह्वान करीन है कि ओमन AI और आने आने तकनीक के उपयोग नवाचार और समाज के हित में काम करे। ये मौका में राज्यपाल AI कौशल रथ ला हरियर झंडा दिखा के रवाना करीन। ये रथ प्रदेश के आने आने क्षेत्र में जाके विद्यार्थी शिक्षक और आम लोगन मन ला AI के उपयोगिता संभावना और रोजगार के मौका के जानकारी दी। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय ऊपर चर्चा करे जाही। एकर संगे संग विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के बारे में घलो लोगन मला जानकारी दे जाही। ग्राम सभा में पाछू बैठका में पारित प्रस्ताव के समीक्षा पंचायत के आय व्यय के अनुमोदन आने आने विकास काम की प्रगति और पंचायत संपत्ति के प्रबंधन जैसन विषय में घलो गोट बात करी जाही। संघ लोक सेवा आयोग UPSC हा ए बच्छर के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दे है। आयोग बताने कि 1000 ले ज्यादा पद मन बर 13000 ले ज्यादा उम्मीदवार मन के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बर चुनाई हुए है। UPSC हा उम्मीदवार मन ला यहू बताने कि उखर नंबर कट ऑफ अंक और उत्तर सूची आखिरी रिजल्ट घोषित होए के बाद आयोग के वेबसाइट में अपलोड करी जाही। उम्मीदवार UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में NDA सरकार के 12 बच्चर पूरा हुए में भारतीय जनता पार्टी डहाले प्रदेश के आने आने जिला में पत्रकार वार्ता आयोजित करी जावत है। यही कड़ी में रायपुर में पत्रकार मले गोट बात करत भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण ला समर्पित रहे है। उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुंगेली में राखे गए पत्रकार वार्ता में कहने की मोदी सरकार के 12 बच्चर विकास विश्वास और जन कल्याण के ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक है। उती खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में राखी के पत्रकार वार्ता संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्चर की उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार ह आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। ये रोक 15 अगस्त तक रही। ये दौरान नदिया नरवा तरिया मन में मछली पकड़े में रोक रही। छोटे तरिया और जल स्रोत जिखर संपर्क कोनो भी नदिया नरवा ले नहीं है वहाँ ये रोक नहीं रहा है। एकर संगे संग बड़े जलाशय में व्यावसायिक रूप ले संचालित करैया केज कल्चर गतिविधि में लगलो ये प्रतिबंध ले बाहर रखे गए है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत कोनो भी मनखे या संस्था प्रतिबंध के उल्लंघन करत पाए जाही त उखर मन ऊपर 25,000 रूपया तक के जुर्माना लगाए जाही। अवैया 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में बैठका लीन। ये समीक्षा बैठक में अन्य अन्य विभाग के बड़का अधिकारी मन शामिल हुईन। अधिकारी मन बताई ने कि यह बच्छर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिला में रखे जाही। उन्हें राज्य के हरेक ग्राम पंचायत के प्रमुख जगह मन में योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे के जम्मू जिलाधिकारी मला निर्देश दे गए है। मुख्य सचिव है अधिकारी मला कहीन है कि 21 जून के नीट पुनर्परीक्षा रखे गए है इला ध्यान में राखत यह सुनिश्चित करे जाए कि योग दिवस आयोजन के सेती नीट परीक्षा केंद्र और परीक्षार्थी मला कोनो किस्म के असुविधा जन हो। ये बच्चर योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित करेगी है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 गांव में जन चौपाल लगा के गांव वाले मन ले गोट बात करी। उमन विकास काम और सरकारी योजना मन के जानकारी लेन। ये दौरान आने आने गांव पर लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करीन और युवा खिलाड़ी मल्ला क्रिकेट किट घलो दिन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग डहर ले बिजली के दर में करेगी बढ़ोतरी के प्रदेश कांग्रेस डहर ले विरोध करे जावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत कही ने कि बिजली के दाम में करेगी बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापिस ले के कांग्रेस आंदोलन करी। उमन कही ने कि काली 17 जून के प्रदेश के सबो जिला के बिजली ऑफिस के घेराव करे जाही। उन्हें 18 जून के कांग्रेस जम्मू जिला में पत्रकार वार्ता करके बिजली के दाम में हुए बढ़ोतरी के विरोध करी। श्री बैजा बताइने कि जुलाई के पहली हफ्ता में कांग्रेस कार्यकर्ता मन स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर ले आवेदन भरवा के स्मार्ट मीटर हटाए के मांग करी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल में हरेक यूनिट पाछू 30 ले 50 पैसा और गैर घरेलू बिजली दर में 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जुड़े सबो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मन में स्नातक और स्नातकोत्तर पहली सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरण में होगी। विद्यार्थी मन ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगी। शक्ति जिला में ACB बिलासपुर की टीम है रिश्वत लेवा शक्ति जनपद पंचायत के CEO निखिल कश्यप बाबू अविनाश ठाकुर और चपरासी लक्षण भानु ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन ऊपर 1,00,000 रुपया की रिश्वत लेके आरोप हवे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण काम के चेक जारी करे के एवज में रिश्वत मांगे रहीस। ACB है तीनों जन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करी स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
3: से रिले करेंगे।

मीडियम वेव 396.62 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एफएम बैंड और मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। अब लीजिए सुनिए मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाय हल्बी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

0: और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायतों के आय व्यय का अनुमोदन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। आज से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है जो 27 जून तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे AI और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। इस मौके पर राज्यपाल ने AI कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को AI की उपयोगिता, संभावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट UG की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित की जाने वाली केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक श्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुंगेली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। UPSC ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड लोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
10: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
9: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कल 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली के दाम में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का विरोध करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में बैठक ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 21 जून को योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। दुर्ग जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर तथा क्रीड़ांगण समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित जिला क्रीड़ांगण समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में तय प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को छोड़कर बाकी की पूरी भूमि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपी जाएगी। इसके लिए भूमि को 33 वर्ष की अवधि की लीज पर देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विद्यार्थियों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी होगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल सुबह 10 बजे अभनपुर से कुरुत के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने औषधि नियम में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज कांकेर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पथ और फुटकर विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण संबंधी आवेदन जमा किए। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा

0: 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं बस्तर के स्वर। अब लीजिए सुनिए हमारा ये दैनिक कार्यक्रम।

0: राम राम हो कुलदर मामा, राम राम।
1: हाँ राम राम हो गडरू, राम राम।
0: अमर लास ने
1: हाय हो
0: आले आम्ही दोन तो भेटघाट होलू।
1: हो हो
0: आले दादा दीद मन संग भेटघाट करू ने।
1: हाँ
0: याचो संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सज्जन संग जोरे संगवारी मन के मै गडरू।
1: हां मै कुलदर
0: आम्ही दोन करू से
1: राम राम। अर्ध कान्ना नानी पिला मन बुलनी बुलकू ने।
0: हो हो
1: पक्क्यून मन बोले सुर ताकर तरुआ तर सुनते बोल रुआत ने। आले नानी नानी पिला मन की आम के दुनच बाटले कुबे कुबे मया आरु चुमा ने। आले हो तो आले दादा दीदी मन संग बैठ गाठ होलू, पिला जिला मन संग बोल बैठ गाठ होलू ने। आरु पिला जिला मन के बोले आरु दादा दीदी मन के आमी कहीं ना कहीं गोट भात मन आमी सुरता करात रहो से ने।
0: और ज्ञान दिया जो गोट मन सांगते बोल
1: सांगते रहो से। देखा आज ची दिन बोले मंगलवार है यार, आज तारीख बोले 16 तारीख है ने। आज पिला मन ची स्कूल बोले खुल ली ने। आले चले पट पिला मन स्कूल जाऊगा पोड़क मोरिया हुआ तर कोनी कोनी पास हो रो पिला मन फिर हरी खरीक ने हाई स्कूल मिडिल स्कूल ने जाऊ आत नारो कोनी कोनी पिला मन हॉस्टल ने बोले ना ले कन्या साला मन ने असन ने बोले जातो का जीवन मन खूबी हरी कुआत ने।
0: और कोनी कोनी काय असन प्रशिक्षण केंद्र मन रहे से बोले आईटीआई ने पॉलिटेक्निक काय का इंजीनियरिंग कर तो असन असन जगह मन ने बोल जाऊ आत
1: जाऊ आत हां। और कोनी कोनी बारी पास कर ला बोले उन पिला बोले हरी करी कॉलेज करू आईना बोलते उन मन बोले हरी ने जाऊ आत ने
0: जाऊ आत। हां
1: हाँ तो दका हो गडरू बाजा असने आम के तो ज्ञान ध्यान चो गोट बोले ने पढ़तो लिखतो बोले हो से काम बुता बोले हो से ने सबले आगे आम के दका कई बोले सीखतोर बनातोर बोले ने ज्ञान सीखतोर आए ने पढ़ाई लिखाई यही तो आया चो मई मुर ज्ञान ने पढ़वा लिखवा नहीं तो कहाँ ले आम ये कई चीज के बोल बना तो बीती का मी झटके समझवा सीखवा ने।
0: हाथे बना तो कला हो ना लकड़ी ले बना तो कला हो ने नाल माटी ले बना तो जिनिस मन
1: हो
0: ये सब का जिकाय ज्ञान बुद्धि कुबे लागे
1: लागे से आओ
0: कसन।
1: देखा ये बे भारतीय समय आए बोलला अरे देखा जसन बीती एबे भारतीय दुनिया ने उसन उसन उन डिजाइन बोल सत नहीं। हाँ डिजाइन जो न लोग मन चो मन हेतु बीती पसंद है तो लाइक चो बीती बनात रहे कला के और सुंदर बनात नहीं तो रहे ने। आदमी के कसन बनात रहे काय करत रहे बोलते उन खिंड का आप लोग बुद्धि अकल लगाए दे ने तबियत फिर उन कहीं बोले कि सुंदर बना आए दे
0: आए का
1: हाँ वे चुकाज बोला हम के बिल्कुल ज्ञान होतो रहा है
0: ज्ञान होतो रहा
1: है। हाँ
0: ज्ञान ना तो कहीं नहीं होए
1: नहीं होए। हाँ तो उसने हम चु दादा दीदी मन पिला जिला मन के अच्छा पढ़ाओ तारसन कहीं बोले सीख तो बीती मन के पिला मन गुट की मन ने सीखोत करो तने। अब देखा बड़ी काम होली नाल कहीं मिस्त्री काम होली नाल तुम चु अभी आम चु आगे पुरबानी लोग बोले छतड़ी बनात रहो टुकना बनात रहो नहीं उसन अब कला मन के बोले बुलका तोरनो आए ने हम चु पुराना बेरा चु ये सब बना तो बीति मनाए मन के बोले सीखो बनाओ तो बुलका तोरनो आए रो ने
0: सत्य गोड़ बोल लस कुदर मामा कसन बोल ने कला मन के बुलकुआ तो उन बीति मन के हम कसन ने पैर जानवा और सीखवा और सिखावा बोले।
1: हाँ
0: कसन।
1: हाँ
0: अले गोट बात मन तो होली।
1: हाँ
0: अलम चु लग नगद गोट मन बोला से मन के बोला हम देते। हाँ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कित्तोड़। बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सित्तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित्तोड़। इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 8% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 8% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेड कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: तो वाले जालाकोट मनसुन लुहो गडरू ने
0: हाँ हाँ।
1: तो देखा आज इच दिन बोले मंगलवार है ने तो देखा मन कर लो गीत मन के आमी भाई बहन मन के सुनात रहूं हम ने
0: हाँ। भाई बहन बोल हम के चिट्ठी लिखून पटावरू
1: पटावरू आ था हाँ। तो सने देखा आज ही हम से लगे काय मजा गीत गोविंद जो दिन आए ने
0: हाँ।
1: तो दादा दीदी मन बोल पक्की सुनो तो ने
0: हाँ।
1: तो ये गीत कुरिया भाई मनात लकेश्वर कोदरा मारो संगवारी मन हाँ। तो अरे ये मंच गीत के मन कर लो भाई मना ते मन चिट्टी पटाला से ग्राम कोमली विकास खंड लोंडीगुड़ा ले मनोज कश्यप करण कश्यप रमेश कश्यप बंधु कश्यप बेलकू कश्यप दुर्बल कश्यप ये सपा कश्यप परिवार से लोग गीत के मन कर रहा है
0: मचलक बलास को कुलदर मामा
1: हाँ।
0: ग्राम मोरटपाल तोकापाल जिला बस्तर ले
1: हाँ।
0: जगत मोरे भगत मोरे पूला हाँ। मोरे संतोषी मोरे सुशीला हाँ। मोरे अंजलि मोरे
1: हाँ, हाँ।
0: जमाई परिवार
1: हाँ। तो और फिर ये भाई मना तो ग्राम दापाल ले ध्रुप साय मोरे कमलेश मोरे गोविंद मोरे टोरकू मोरे राजू मोरे पंचम मोरे कमल नागे सपा लोग गीत के मन कर रहा है
0: मजलग बोल कोटो कास्ता ग्राम बड़ांजी लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले गोविंद भारद्वाज मोक्ष भारद्वाज भारद्वाज मिनकेतन भारद्वाज चेतु मंडावी लोकेश मंडावी रेमंचो जमाई संगवारी मन
1: हाँ हाँ। तो वाले ये गीत के सुनो था और ये हम चो मन कर लो भाई मन बोल सुनो
0: सुनो

0: तो गडरू
1: होय हो
0: आले काय सुंदर गीत रेली ने
1: हा
0: हा गीत के गौरला लके सर कुद्रा मारून छो
1: संगवारी मन
0: ने हा तो आले हम चमोडरा ने फेर गोटो गीत आसे ने
1: हा
0: हा ये गीत कुरिया भाई मनात हड़मारामा मरकाम और उनचो संगवारी मन ने हा तो ये भाई मन छो गीत के मन कर लो भाई मनात ये मन ग्राम बेलर विकास खंड लोंडीगुड़ा ले विश्वनाथ मंडा भी मुन्ना मंडा भी डोगी मंडा भी मासा मंडा भी अढुमरी मंडा भी घर चो सफाई लोग मन करला से
1: मचलग बला स्थान है ग्राम पुरंतरी गीदम जिला दंतेवाड़ा ले शत्रुघ्न कश्यप लक्ष्मण कश्यप पिलसाय कश्यप अर्जुन कश्यप और तमेश कश्यप जमा परिवार चलो
0: हाँ हाँ हाँ तो उसने मतलब गुला से ग्राम सिरज गुड़ाले रवीश नाग पीलाराम नाग शंकर नाग सूर्य नाग रीता नाग पार्वती नाग सांबती नाग गुंजी नाग अजय नाग ये सब लोग मन मन कर ला से
1: मछलक बोला स्थान है गोटो
0: हाँ।
1: ग्राम तारा गांव लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले आंदाराम मंडावी रिंकू मंडावी दिनेश मंडावी अनंत मंडावी जगन्नाथ कवासी बाल सिंह कश्यप और मंच जमाई संगवारी में
0: हाँ तो मछलक बोल फिर आस्था शिबू मंडावी सदवती मंडावी देवा मंडावी मालती मंडावी अजय मंडावी ये मन रला बचली बलडीला बचली ले
1: मछलक बोला स्थान है
0: हाँ
1: सादेव कश्यप मुन्ना कश्यप नेपाल मोरे हेमचंद ठाकुर बुद्राम मंडावी संतोष मंडावी हेमनाथ ग्राम दारा और लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले
0: हाँ हाँ अरे तेतरकुटी पारा जगदलपुर लिया लखमराम मंडावी पांडे मंडावी लवती मंडावी रेमणि मंडावी सुप्रिया मंडावी ये सब लोग मन कर ला से
1: हाँ अली मन जो गीत के बाद हमारा
0: हाँ

0: तो आले गडरू आले हमसे जातो समय बोलोली गीत गोविंद बोलोली नै आले मोडरा गडरा के सकलों के नै जातो पूरे बस्तर के शोर कार्यक्रम संतोष सफाई गांव कारी दादा दीदी भाई बहन मन और संगवारी मन के मैं कुलदर्श
1: और मैं गडरू
0: हम दोनों करो से
1: राम राम, राम, राम।

0: बस्तर के स्वर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। समय है शाम के 7:21 का।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जुआर हो कुलदर मामा जुआर
1: हाँ जुआर हो गडरू बाछा जुआर
0: अमर लास ने हाल आमी तो अमर लू
1: हाँ
0: हाल खेती यार दादा दीदी मन संगल बेडगाट करू ने
1: हाँ हाँ
0: एचो संगे संगे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए खेती यार दादा दीदी मन के मैं गडरू
1: हाँ मैं कुलदर
0: आमी दोनों करूं से
1: जुआर तो वाले गडरू आम छो दादा दीदी मन के भेटघाट होलू ने भेटघाट होलू आरु आमी दादा दीदी मन के कहीं ना कहीं गोड बात मन आमी सुरता करात रहो से आरु इस समय आए देखा कोनी कोनी दादा दीदी मन धान पान बुनला और कोनी कोनी दादा दीदी मन

0: पान भून तो का जे विचार कर सोत ना
1: विचार कर सोत कोनी कोनी पलाहा बल पकाला
0: पकाला हाँ और कोनी कोनी बाड़े तक का पानी बल मार ली ना
1: हाँ
0: और कोनी कोनी की ना जनता
1: ना जन बल हाँ। मन बेड़ा कड़ा
0: जतना सोत हाँ
1: कहाँ पुटान होली से कहाँ बिल होली से
0: हाँ हाँ हाँ और कोनी कोनी खत बल
1: बिकर सोत
0: हाँ तो असने या गटरू भाचा दखा ये समय ने आम के पक्की बेड़ा खड़ा चो बुताबाय ना करतो राय समय हिसाब ने कमात राय ने असन समय फिर निकरून दिली बोले ने पाछे आम के पछताले कहाँ ले आमचो फसल मिरुआय
1: मिरुआय
0: हानी का जाम छे दादा दीदी मने समय आय पक्की बुता करो
1: हाँ।
0: समय ने बुनतो बिता बुनत पला पकात बिता पला पकावत ने
1: हाँ।
0: तो उसने दका हो आमी खेती बाड़ी संग संग आमी और कई बोले पोसु पोसतो वाट पालन करतो वाट आमी करुकलाय सकवा ने
1: सत्य बोलला स्कूल धर्मा हाँ। कसन बोललो ना हम काय खेती बाड़ी करू ने
0: हाँ।
1: और खेती बाड़ी संग संग काय हम काय एकटा और बल बूता मन करू सकू
0: सकवा
1: ताने
0: हाँ।
1: कसन
0: हाँ।
1: नाल पाक पल जो बूटा बल रोपू सकू
0: हाँ।
1: ने और हाँ। पशु पालन होली मछली पालन होली
0: हाँ।
1: कसन काय एकटा काम मन के बोला और करू सकू
0: हाँ।
1: खेती बाड़ी संग संग
0: संगे
1: कसन
0: चेरी पोस्तु वाड़ बल करू सकू
1: हाँ
0: हाँ बरा पोस्तु वाड़ बल करू सकू
1: हाँ
0: ने
1: हाँ
0: हाँ गाय पोसतू वाड़ बल करूक लाइ सकूँ दखा
1: हाँ।
0: गाय पोस लेने आम के दखा हाँ गोरस बल मेरे से हम संगे गाय छो गोबर आम छो बेड़ा खाड़ा ने गंधान पान कमात का जो से ने आरु गाय छो पीला होली बोले ने बाची पीला होली बोले ने आम के फेरोनी आम गोरस काज काम दे से
1: बाचा पीला वाला नांगर
0: हाँ
1: बल
0: नागर
1: काम
0: काज काम दे से हाँ उन संग संगे और आसोत बोले ने आरु भी कुकचा आले नाम के दुई पैसा अगर बोले
1: मेरे से
0: अब दखा नहीं भी अच्छा बाचा बोले लाओ लेन तो 70,000 80,000 वाटम रुंदीला से ने
1: हाँ
0: हाँ गोटक ट्रैक्टर से मोल असन ने
1: मोल असन हाँ हाँ
0: हाँ तो आम चो
1: उसने चाहे
0: खेतियार दादा दीदी मन लगी असन बोले वाट आसे यारू जो चो लगे नगद ठान आसे जालून मन असन वाट बोले करुक लाई सको तो ने
1: हाँ छेरी बोकड़ीन बोलो कुलधर मामा दगा छेरी बोकड़ीन बोलो उसने हुन मंचो बोल मोल ने
0: हाँ
1: काय छेरी बोकड़ी पोसुन बोले हुन चो बोल खत बोलाए हुन चो बोले
0: हाँ हाँ
1: कसन
0: हाँ खत बोले उस नगत आए हो उंच बोले यार
1: हाँ
0: दखा चेरी बोकड़ी बोकड़ी मंच बोले आजकल रेट ने बिया होली जत्रा होली आरु शहर नगर मन उसने तो फिर उन मन बनाती चरसत ने
1: बनाते तो
0: बांच कर तो का जाओ अच्छा बिती बोकड़ी वाले ने होनी 30,000 40,000 वाट बोले हम रुंदे सोत ने
1: हम रुंदे सोत
0: हाँ तो सन अगर ले अगर आम की आमदनी दे तो बिती पशु जनावर मन गोल पोस्त काजू वाट करो तो आम चो खेतियार दादा दीदी मन ने उन संग संग दखा बरहा पालन ने बोल खूबे आजकल नगद कमानी हो से हो हाँ दखा हुंच बोल रेट खूबे बढ़ते बढ़ ली
1: बढ़ते बढ़ ली
0: हाँ
1: हुन बोल उसने देव भूत भी
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: ठिकाने
0: हाँ सब ने काम दे सोत
1: हाँ
0: तो आम चो खेतियार दादा दीदी मन खेती बाड़ी संग असन असन पशु जनावर मन बोल पशु खिलाए सको तारो आप लोग आमदनी के बढ़ोक लाए सको ने
1: हाँ और आप लोग जीव ना अच्छा जीव सको
0: सको ताले ये तुरली गोट बात
1: हाँ
0: आमचे मोटराने नगद गोट मन बोला साले मन की बोली सुनो दादा दीदी मन बोल सुनो
1: सुनो तो
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तक सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई कियान बूता ते वेंड मोला 12% ते कम मास 5

0: योजना।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हिसाब ने ए वार्ड बनली से कि देश चु सप्पाई बेड़ाने कोनी नहाले कोनी हिसाब ले पानी अमरा तोर गोठो। एचुकाजे राज्य और जिला स्तरीय समिति चु दखा रखाने सप्पाई काम होए दे।

0: सिंचाई योजना
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चो बानी
2: सपाय बेड़ा के मेरे दे पानी
0: ये हुआ टाइ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
3: हाँ तो गडरू बाचा आले आम्ही नगद गोट मन के सुनलू ने और आमचो दादा दीदी मन बोल सुनला। हाँ तो आमचो मोडरा ने आस भेट वार्ता ने आई भेट वार्ता भीतर गोट ने गोट बात के सुनू और दादा दीदी मन बोल सुनत ने।
4: ये भेट वार्ता है मंडिया फसल चुने हाँ
3: हाँ
4: और एक खोजाकारी भाई है डिप्रोशन बंजारा
3: हाँ
4: हाँ और भेटघाट कर ला हो चंद्र ऋषि ठाकुर।
3: हाँ ले मंच गोट बात के सुनो।
5: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक अनाज की जो कभी हमारे गांवों और खेतों की पहचान हुआ करता था लेकिन अब फिर से अपनी पौष्टिकता और उपयोगिता के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं रागी यानी मड़िया की। बस्तर अंचल में रागी केवल एक फसल ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति खान पान और किसानों की जीवन शैली का हिस्सा रही है। कम पानी में तैयार होने वाली ये फसल न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। आज के समय में जब मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है तब रागी की खेती और उसके महत्व को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्रोशन बंजारा जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले डिप्रोशन बंजारा जी आपका स्वागत है आकाशवाणी जगदलपुर के इस स्टूडियो में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
5: और जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम मड़िया जिसे हम रागी भी कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मड़िया बहुत ही प्रसिद्ध है। आम जनता अपने दिनचर्या में मड़िया को शामिल करती ही है किसी न किसी रूप में। तो हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर बस्तर में लगाने वाले और मड़िया के अलावा और कौन कौन से ऐसे लघु धान्य फसलें हैं, आप उसके बारे में हमें बताएं।
6: जी जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे लघु धान्य फसलें हैं वो बस्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है और तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा लघु धान्य फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से कोदो है, कुटकी है, रागी है जिसको हम मड़िया के रूप में जानते हैं और सांवा है। तो हम आज मड़िया के बारे में बात करें जिसको हम रागी कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, साथ में हमारा पाइल का प्रकार देखा जाए जो उच्चहन भूमि होती है उसमें ये प्रमुखता से खेती किया जाता है और इसकी खेती के बारे में हम कहते हैं तो ये पारंपरिक है जिसको किसान भाई बिना ज्यादा खर्च के इसको लगाते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त करते हैं। तो हम अगर इसकी खेती के बारे में कहें तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और इसको लगाने के लिए मुख्य रूप से जून जुलाई जो 15 जून से लेके 30 जुलाई तक इसका बुआई करने का उचित समय होता है। अगर हम इस समय उचित बुआई करते हैं तो हमारा फसल अच्छा होता है
5: जी।
6: और इसको लगाने के लिए हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या तो हम सीधी बुआई के रूप में भी उपयोग लगाया जा सकता है या फिर इसको किसान भाई रोपा पद्धति के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। जून में 15 जून को इसका नर्सरी डाल दें और 10 जैसे ही इसका तीन पत्ती दो से तीन पत्ती आती है फिर इसको हम अपने खेतों में रोपाई कर दें। तो इसका ये खेती करने के तरीके हैं। अगर हम इसका बीज दर की बात करें तो इसको लगाने के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम खेतों में लगा सकते हैं।
5: तो जब हम मड़िया की बात करते हैं तो किसी भी फसल को लगाने से पहले भूमि को भी तैयार करना पड़ता है।
6: बिल्कुल।
5: तो मड़िया लगाने के लिए भूमि को किस तरह से तैयार किया जाता है?
6: जी मड़िया लगाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो मड़िया का बीज होता है वो बहुत छोटे आकार में होती है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसके लिए हमको हमारा जमीन जो है एकदम से भूरभूरा होना चाहिए क्योंकि अगर इसका बीज गहराई में चला जाए तो इसका जर्मिनेशन जो है अंकुरण

0: है प्रभावित होता है। तो इसीलिए हमको इसको भूमि की तैयार करने के लिए कम से कम में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल की आवश्यकता होती है, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना पड़ता है जिससे हमारा मिट्टी एकदम भुरभुरा हो जाता है, उसके बाद हम अपने बीजों को बुआई करना चाहिए।
1: जी, और जैसे हम अगर बस्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ
0: जी
1: पर ज़्यादातर धान का उत्पादन किया जाता है,
0: जी
1: और जैसा कि आपने बताया कि मड़िया को भी जून जुलाई में ही बोया जाता है और
0: जी
1: वही समय धान की खेती करने का भी होता है, धान को भी उसी समय में ही बोया जाता है।
0: जी
1: तो धान को अगर खेतों में बोएंगे तो क्या
0: जी
1: साथ साथ मड़िया को भी उसी खेत में लगाया जा सकता है, या फिर हम जैसे भर्री इधर बोला जाता है
0: जी
1: जो खाली भूमि रहती है,
0: जी
1: हम उसमें भी मड़िया को लगा सकते हैं और साथ ही साथ धान को हम अपने खेतों में लगाएं, ऐसा भी क्या किया जा सकता है?
0: जी बहुत अच्छा सवाल है मैडम। किसान भाई जानते हैं कि जो हमारा धान की फसल होती है वो उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धान की फसलों में हम पानी भर के रखा जाता है, और जो हमारा मड़िया की जो फसल है वो उसको पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर धान जो फसल है उसको हम निचली जो भूमि होती है जिसमें पानी इकट्ठा होते हैं वहां पे किया जाता है, और मड़िया की जो खेती है वो उच्चहन भूमि में किया जाता है जहाँ पे पानी ना रुके। अगर पानी जहाँ पे रुकेगा वो हमारा मड़िया की फसल खराब हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पे पानी नहीं रुके ऐसे जमीन को हमको चयन करके मड़िया की खेती करना है।
1: तो
0: जी
1: जैसे बारिश का जब मौसम आता है तो बारिश तो रोजाना ही होती है,
0: जी
1: तो जब रोजाना बारिश हो रही है या फिर जब भारी मानसून आया हो तो
0: जी
1: उस स्थिति में भी क्या मड़िया या फिर रागी का जो पौधा है
0: जी
1: वो सर्वाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है, या फिर उस स्थिति में भी कुछ उसको प्रिकॉशन या फिर उनका बचाव किसी तरीके से करना पड़ता है?
0: जी बिल्कुल। हमारा जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ पे बारिश तो होता ही है, तो हमारा जो रागी का फसल है एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद बरसात होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हमको पानी का जो इकट्ठा होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए। एक बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जो है ढलान के रूप में चला जाना चाहिए। अगर लगातार 3 दिन 4 दिन बारिश होता है तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो जहाँ पे रागी लगाए हैं वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, बस हमको यही ध्यान रखना है, बाकी हमारा फसल में कोई नुकसान नहीं होता है।
1: जी,
0: जी
1: क्योंकि अब जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी मोटे अनाज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही
0: जी
1: है उस बारे में, और
0: जी
1: मोटे अनाज के लिए तो उन्होंने एक वर्ष भी निर्धारित किया था।
0: जी
1: तो क्योंकि इसकी पोषण तत्वों की अगर हम बात करें तो रागी में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो
0: जी
1: इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है,
0: जी
1: तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन उसमें पाए जाते हैं या फिर न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है रागी की, जिसे हम
0: जी
1: फिंगर मिलेट भी कहते हैं,
0: हाँ जी
1: मड़िया भी कहते हैं, तो
0: जी
1: उसके क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू है, आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
0: जी बिल्कुल। हम जब रागी की बात करते हैं तो यह एक हाईली न्यूट्रिशनल क्रॉप है, जिसमें कैल्शियम है, आयरन है और सुपाच्य रेशा है, और साथ में प्रोटीन है और विटामिन्स हैं, और ये मिनरल से भरपूर फसल है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं तो फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे रागी पे उपलब्ध रहते हैं। और उसी प्रकार से ये जो रागी है हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन कहना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम उनके हड्डी के मजबूत करती है और बच्चों को भी बल प्रदान करती है। और उसी प्रकार से हम इसकी जब हम शुगर की बीमारी बोलते हैं जिसको, हम उसके लिए भी इसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टरों के द्वारा कि इसको खाने से वो नियंत्रण में रहता है करके। और साथ में ही जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या माल न्यूट्रिशन जो भी व्यक्ति हैं वो इसको सेवन करने से उनकी जो भी माल न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है।
1: जी,
0: तो इस प्रकार से इसको लेने से हमारा सुपर फूड है, इसको लेना चाहिए अपने डेली यूज में।
1: अच्छा,
0: जी
1: दैनिक आहार में हम इसको शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: और जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि आजकल जैविक खेती का बहुत चलन है,
0: जी
1: तो क्या हम मड़िया को भी जैविक खेती या फिर जैविक तौर तरीकों से इसका उत्पादन किया जा सकता है, जैविक खाद इसमें उपयोग किए जा सकते हैं, या फिर जैविक खेती की जो अन्य तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके भी इसका उत्पादन किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जो हमारा मड़िया की खेती है उसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद की आवश्यकता तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, और हम जैविक खेती में जाते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ होता है, क्योंकि जैविक जो खाद है उसकी मात्रा हमको कम डालनी पड़ती है। इसमें हम मुख्यतः रूप से 5 से 7 टन ही गोबर खाद की आवश्यकता होती है, अगर केचुआ खाद की बात करें तो 2 से 3 टन में ही हो जाता है, और साथ में बायो फर्टिलाइजर भी आज हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बायोफर्टिलाइजर

0: स्फुर घोलक होता है जिसको हम पीएसबी बोलते हैं, जेडएसबी कहा जाता है और केएसबी कहा जाता है। इन सभी चीजों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही एक नील हरित काई का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। नील हरित काई का प्रयोग हम 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मात्र 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसको छिड़काव करते हैं, तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कंसे बहुत अच्छे बनते हैं, उनका जब रागी का जब ग्रेन्स डेवलप होती है तो अच्छे दाने भर के आते हैं।
1: जी,
0: जी
1: जैसे कि हम चना या फिर मूंगफली लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है
0: जी
1: और उससे जो हमारी मृदा है
0: जी
1: वो और ज्यादा पोषक तत्वों से भर जाती है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: क्या इस तरह का कोई लाभ रागी या कहें मड़िया को लगाने से भी कृषकों को हो सकता है, या फिर मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादा बढ़ सकते हैं? ऐसा कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, आपने सही कहा है कि जैसे कि मूंग लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं या अन्य दलहनी फसल लगाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उसके प्लांट में मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन हमारा जो ये लघु धान्य फसलें हैं जिसमें रागी, कोदो, कुटकी हम सामा बोलते हैं, वो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप होने के कारण से इसमें दलहनी फसलों की तरह स्थिरीकरण की मैकेनिज्म नहीं है।
1: लेकिन क्या कोई अन्य लाभ होते हैं इन्हें लगाने से?
0: अन्य लाभ में कहना चाहिए कि ये कम जो रासायनिक है या फिर कम उर्वरा है उसमें हो जाता है, लेकिन इसमें अलग से ऐसा कोई लाभ तो नहीं कह सकते। बस ये है कि हमारा जो फसल है वो कम उर्वरक में हो जाता है।
1: डिप्रोशन बंजारा जी, हम बात
0: जी
1: करेंगे आर्थिक पहलू के बारे में, क्योंकि सरकार भी इसके उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हमारे किसान भाई जब भी किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो उसका आर्थिक पक्ष भी देखते हैं।
0: जी
1: तो आप
0: बिल्कुल
1: बताएं कि अगर कोई किसान रागी की फसल उगाता है तो उसे आर्थिक तौर पर किस तरह से लाभ हो सकता है, और उसका अभी वर्तमान में समर्थन मूल्य क्या चल रहा है?
0: जी बिल्कुल मैम, यहाँ पे हम रागी की खेती की बात करते हैं तो जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें रोग भी कम लगते हैं, कीट भी कम लगते हैं, इसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही कम लागत में हो जाता है। अगर हम वही धान की बात करते हैं तो धान में हमको बहुत ज्यादा ही रोग बीमारी आती है आज के समय में, और उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसको प्रबंधन करने के लिए हमारा खर्च जो है बढ़ जाता है। और हम आज देखते हैं कि हमारा जो धान का MSP है वो लगभग लगभग 3,000 या 3,500 के करीब करीब है, लेकिन जब हम रागी की बात करते हैं तो 2025-26 में जो MSP का जो प्राइस है रागी का वो 8,886 रुपए प्रति क्विंटल है। तो हमारा अगर हम रागी लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो लगभग लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का होता है, तो हमारा जो MSP प्राइस है वो धान से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम किसान भाइयों को बोल सकते हैं कि धान के बदले अगर रागी लगाते हैं तो आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ होगा। और कहना चाहिए कि शासन जो है समय समय पे किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता था कि धान के बदले अगर अन्य फसल हम लगाते हैं, दलहनी है, लघु धान्य फसलें हैं या सब्जी हैं, तो उनको कुछ रुपए दिया जाता था धान के बदले दूसरे फसल लेने से। लघु धान्य जब हम लेते हैं जिसमें रागी, कोदो, कुटकी है, तो उसमें लगभग 10,000 से 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उनको दिया जाता था, बशर्ते किसान को ये करना था कि पिछले साल जो धान का पंजीयन है वो होना चाहिए और अगले साल उसके दूसरे फसल लगाना चाहिए, तब वो राशि उनको मिलता था। तो इस प्रकार से हमारा जो MSP का प्राइस है वो धान से भी ज्यादा है, और गवर्नमेंट भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है कि धान के बदले दूसरा फसल लगाएं, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को आर्थिक मदद मिलती है और अधिक मिलती है।
1: जी,
0: जी
1: क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र भी इसको मान्यता दे चुका है और
0: जी
1: अब देश विदेश में भी रागी मड़िया जिसे हम
0: जी
1: कहते हैं उसकी बातें हो रही हैं।
0: जी
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रागी फसल का क्या महत्व है, और बस्तर किस तरह से अपने आप को रागी या फिर मड़िया के उत्पादन में खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित कर सकता है, कैसे रख सकता है अपने आप को, कैसे देखते हैं आप?
0: उसके लिए जो हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, मैं देखता हूँ कि हमारा जो पूरे बस्तर का परिक्षेत्र है 70% आसपास के फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, और उस फॉरेस्ट एरिया में हम देखते हैं कि जो अपलैंड एरिया है वो बहुत खाली रहता है। वहाँ पे किसान भाई कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं हर साल। तो हम किसान भाइयों से आग्रह कर सकते हैं कि उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो सुपर फूड है रागी, न्यूट्रिशनल इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसको हमको किसानों को बढ़ावा देना चाहिए कि किसान भाई इस जमीन को खाली ना छोड़े, क्योंकि मात्र एक बार बुआई कर देने से और एक बार या दो बार इसमें

0: खरपतवार निकाल देने मात्र से ही हमारा उत्पादन अच्छा आ जाता है, तो हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारा बस्तर की पहचान बढ़े। क्योंकि आज हम किसान भाई के घर देखते हैं कि वो मड़िया का पेज पीते हैं, मड़िया की अन्य चीजें बना के वो डेली यूज में लाते हैं, तो ये निश्चित रूप से होगा कि मरहान जमीन को हम मड़िया लगा के अपना उत्पादन बढ़ाएं और उसका क्षेत्र विस्तार करें, तो हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जरूर बनेगी।
1: जी, आपने तो मड़िया और उसकी खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है डी प्रोशन
0: जी
1: बंजारा जी, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो या फिर आप हमारे श्रोता जो किसान भाई बहन सुन रहे हैं आपको, उनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहें।
0: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम जो हमारा मड़िया है वो सिर्फ मड़िया पेज के रूप में नहीं रह गया है, आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके चीजों को मार्केटिंग डेवलप हो चुका है, जिसमें हम रागी का आटा है, रागी का बिस्किट है, रागी का माल्ट है, रागी का कुकीज है, इवन आजकल तो रागी के ड्रिंक भी अवेलेबल होने लग गए हैं मार्केट में। तो इस प्रकार से अन्य चीजों को भी प्रोसेसिंग की ओर लेके जाएं और इसका आर्थिक मूल्य को बढ़ेगा और किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: जी,
0: जी
1: तो डिप्रेशन बंजारा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोता भाई बहनों को, आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैं एक सारे किसान भाइयों श्रोताओं को मेरा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: कुलदर मामा,
3: हाँ
2: हाले हमें भी सुनते हूँ भेड़ वार्ता ने
3: हाँ
2: ये रली मंडिया फसल चुगुड़
3: हाँ
2: कसन
3: हाँ
2: और खुजा कारी भाई मन रला डी प्रोशन बंजारा
3: हाँ
2: और मन संग बेटगार कर रो चंद्र सिंह ठाकुर
3: हाँ
2: कसन
3: तो हाँ
2: कसन नंगत नंगत गोट मन के नंगत नंगत
3: हाँ
2: डुआट मन के सांगला
3: सांगला तो कनी हम से मंडिया कमा तो आठ मन के बल सांगला ने
2: हाँ
3: तो दादा दीदी मन लगे मरान बाड़ी आ जाले मंडिया कमानी करून बले मन दुई पैसा अगर कमाऊ ले सको
2: सकोर
3: दखानी ये मंडिया पहली बले 150 रुपया हमरो दिली ने
2: हाँ
3: तो
2: और
3: हाँ।
2: मंडिया बोल लेकर आया कि इस का गर्मी खूब बाड़ू रही
3: हाँ।
2: कजन
3: हाँ।
2: और गर्मी बेरा उन जो पेज पीऊ दिले का है मजा सीतर लागत रहे
3: लागते रहे सो हाँ
2: आए गए
3: हो अरे मन से सांग थी साहब ने नहीं मंडिया बोले पेज बनाउन खातर गोटो के दो यो कुछ काम करे ससन लागे से
2: हाँ
3: हाँ तो वाले ये मन से गोट बात के सुन लू ने
2: हाँ
3: तो वाले हम से मोड़ा नहीं नगद गोट मन बोले आशा ले नगद गोट मन बोल सुनो
2: हाँ
4: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
5: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
4: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
6: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया।
4: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
7: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ.
4: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ.

0: महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयरहाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
1: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया, अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
2: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
3: वो कैसे?
2: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
4: ये किसका नंबर है भाई?
2: किसान कॉल सेंटर का, जहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
5: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा।
2: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
4: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
2: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
6: सच
2: 16 आने सच।
7: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
8: तो वाले नगद गुट मन के सुन लू ने?
9: हाँ हाँ।
8: तो दादा दीदी मन बोल सुन ला।
9: हाँ।
8: दका गडरू बाछा ज्ञान दियान छु गोठारू नगत नगत गोट मन गोठियाउन सुन लेन ने।
9: हाँ।
8: गोट बात कर लेन मन के हरिक बल लागू है ने।
9: हाँ,
8: तो उसने हरिक लाग लेन का सुंदर गीत बोल सुनु
9: भाव है। हाँ। और क्या दादा दीदी? हाँ। बोल बेड़ा काड़ा बाट ले आजकल बुता बहना हो तो थकुन फुकुन हो रहा है।
8: हाँ हाँ। तो वाले ये गीत के सुनु ने।
9: हाँ।
8: ये गीत कुरिया मनात लखे सर कुदरा मारून छो संगवारी
9: मन। वाले गीत के बोल सुनो और दादा दीदी मन बोल सुनो।
8: हाँ।

0: कुलदर मामा
1: हाव
0: काय सुंदर गीत रली ने
1: हाव
0: हे गीत के गावर लाला के सर कुदरा मारो म्हणजे संगवारी मन
1: हाव
0: आता का गीत सुन लेना और बोल गीत सुनू होय कसन हा
1: हा हा
0: तो आले हम जे लगोटो गीत और रास्ता हे गीत के गावला सो चंद्रिका पोयम और म्हणजे संगवारी मन
1: हाव
0: आलम बोल सुनू रात दिन सुनत
1: हाव

0: तो गुडरू भाचा
1: होय हो
0: आले आमचो जातो समय आबल होली ने
1: हो
0: दादा दीदी मन संग काय मजा गीत बोल सुन लो दादा दीदी मन बोल सुन ला ने
1: हो
0: आले मोडरा गुडराक सकलो भाई आले जातो बेरा होली अलविदा मांगो ने
1: हो
0: जातो पूरे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सफाई खेतियार दादा दीदी मन के मैं कुलदर
1: और मैं गुडरू
0: आमी दोनों करो से
1: जुआर।

0: किसान वाणी, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है शिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन का महत्व। वार्ताकार हैं हेमलता त्रिपाठी।
1: अध्यापन एक जटिल प्रक्रिया है। अध्यापन की जटिलता कार्य के कारण नहीं होती, वरन कक्षा में उपस्थित विभिन्न व्यक्तित्व के छात्रों के कारण उत्पन्न होती है। कक्षा में उपस्थित प्रत्येक छात्र अनेकों प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनका सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्तर, भौगोलिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर इत्यादि उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में एक उद्देश्य के साथ पाठ योजना लेकर प्रस्तुत होता है और दक्षता से अपना पाठ प्रस्तुत करता है, फिर भी वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। छात्रों की ग्राह्यता भिन्नता के अनुसार अलग अलग होती है, जो कि शिक्षक के कार्य को कठिन कर देती है। भारत वैसे भी जातिगत भिन्नताओं, भिन्न समाजों एवं भिन्न परंपराओं का देश है। इन सब बातों का भी छात्रों पर प्रभाव रहता है। इससे कक्षा के अंदर विषमताओं का मकड़ जाल सा बन जाता है और शिक्षक के सामने चुनौती होती है कि वह कक्षा में उपस्थित प्रत्येक छात्र को शिक्षण उद्देश्य तक ले जाए और प्रत्येक छात्र की शैक्षिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक न केवल विषय वस्तु का ज्ञान रखता हो, बल्कि संपूर्ण अध्यापन प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं से पूर्णतः परिचित हो। परिचित ही नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए। सूक्ष्म अध्यापन शिक्षक के प्रशिक्षण की एक विधा है। यह एक ऐसी प्रशिक्षण तकनीकी है जो कि शिक्षक को सावधानी पूर्वक अध्यापन दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म अध्यापन को ड्वाइट एलन ने 1960 के दशक में विकसित किया था। इसका उद्देश्य था कि शिक्षक के अध्यापन का पुनरावलोकन एवं पुनः अध्यापन कर शिक्षक को अभ्यास कराना पहले से वास्तविक कक्षाओं के समक्ष ही किया जाता था, किंतु आज सूक्ष्म अध्यापन साथी शिक्षकों के साथ किया जाता है। सूक्ष्म अध्यापन के लिए 10 मिनट की छोटी पाठ योजना तैयार की जाती है और अभ्यास के लिए साथी शिक्षकों के साथ पाठ प्रस्तुति की जाती है। साथी शिक्षक जो कि पाठ अध्यापन के दौरान छात्रों की तरह होते हैं और छात्रों के स्थान पर बैठते हैं, पाठ का अवलोकन करते हैं, तत्पश्चात वे अपना फीडबैक देते हैं। इससे शिक्षक को ज्ञात होता है कि छात्र शिक्षकों ने उसके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को किस प्रकार ग्रहण किया, उस अध्यापन के दौरान कौन कौन सी कमियां रहीं और कौन कौन सी खूबियां रहीं। इस प्रकार सूक्ष्म अध्यापन एक शिक्षक को अध्यापन की विभिन्न प्रक्रियाओं की सूक्ष्मतम जानकारी से अवगत कराता है। सूक्ष्म अध्यापन कक्षा में अभ्यास कर वह कुशलता प्राप्त करता है जो कि वास्तविक अध्यापन में अत्यंत उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा यदि शिक्षक कोई नई शिक्षण तकनीक ईजाद करता है या अपनाना चाहता है तो उसका प्रयोग वह सूक्ष्म अध्यापन के समय कर सकता है और इस पद्धति के प्रयोगात्मक पहलुओं की समीक्षा कर सकता है। इसी तरह यदि पाठ प्रस्तुति का नया तरीका शिक्षक ने तैयार किया है, उसे सूक्ष्म अध्यापन कर फीडबैक प्राप्त कर सकता है एवं ये जान सकता है कि उसका वास्तविक कक्षा में प्रस्तुतिकरण कितना प्रभावी होगा, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है या वह अनुपयोगी रहेगा। अधिकांशतः सूक्ष्म अध्यापन की कक्षा वास्तविक अध्यापन कक्षा से पूर्व संयोजित की जाती है ताकि शिक्षक अध्यापन की प्रक्रिया का पुनरावलोकन कर सके एवं बार बार अभ्यास कर एक उत्कृष्ट पाठ की प्रस्तुति कर सके। सूक्ष्म अध्यापन ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही मनोरंजक माहौल में शिक्षक अध्यापन का अभ्यास करता है। आइए अब सूक्ष्म अध्यापन की प्रक्रिया की चर्चा करें। इस प्रक्रिया का मूल बिंदु यही है कि 10 मिनट की छोटी पाठ योजना तैयार की जाए और उसका अध्यापन उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। सभी साथी शिक्षक एक कक्षा बनाएं, जबकि एक पढ़ा रहा हो तो अन्य छात्र बनकर कक्षा में बैठें एवं पाठ को ग्रहण करते हुए अवलोकन भी करें। वे छात्र और प्रेक्षक दोनों की भूमिका निभाएं और सूक्ष्मता से अध्यापन का प्रेक्षण करें। इस प्रकार सभी साथी शिक्षक आपस में स्थान ग्रहण करते हुए अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अध्यापन में समय सीमा का पालन कड़ाई से करना चाहिए। इसके लिए टाइमर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे सभी शिक्षकों को उचित समय मिल सकेगा और स्वयं अध्यापक को भी समय अनुशासन का अभ्यास होगा, जो कि वास्तविक परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। इसमें शिक्षक को कभी यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि वह समूचा ज्ञान 10 मिनट में प्रस्तुत कर दे, बल्कि उसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि पाठ प्रस्तुति का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत हो, ताकि यह एक नमूना हो और अध्यापन से पहले शिक्षक अपनी प्रस्तुति पर फीडबैक प्राप्त कर सके, जिससे वास्तविक प्रस्तुति के लिए आवश्यक फेरबदल किया जा सके एवं अभ्यास भी हो सके, ताकि एक उत्कृष्ट सुनियोजित पाठ प्रस्तुति शिक्षण उद्देश्य प्राप्त कर सके। जबकि सूक्ष्म अध्यापन के लिए छोटा पाठ तैयार करना है तो पाठ का कोई हिस्सा चुनना चाहिए। ऐसे टॉपिक का चुनाव करना चाहिए जिसमें आप चाहे गए उद्देश्य का अभ्यास कर सकें। किसी विषय वस्तु अथवा पद्धति का अभ्यास करें। पाठ्य उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए कि इस पाठ प्रस्तुति से आप क्या चाहते हैं, क्या छात्र क्या सीखेगा। तथ्य सीखेगा, सिद्धांत, अवधारणाएं, जीवन मूल्य, जो भी आपका शिक्षण उद्देश्य हो, शिक्षण पद्धति ऐसी हो जो आपके उद्देश्यों को पूरा करे। इसके बाद वे बिंदु स्पष्ट होने चाहिए जिन पर फीडबैक प्राप्त करना चाहेंगे। आप सामान्य फीडबैक चाहते हैं या किसी विशेष शिक्षण पद्धति तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं और उस पर फीडबैक करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर समय नियंत्रण, अध्यापन पद्धतियों तकनीकों का अभ्यास, कक्षा नियंत्रण, प्रश्न करने की दक्षता, पुनर्बलन वगैरह। कक्षा में बैठे साथी शिक्षक अध्यापन के दौरान प्रश्न पूछना, टिप्पणी करना इत्यादि गतिविधि कर सकते हैं, क्योंकि यह तो शिक्षकों के मध्य एक अभ्यास है। इसमें प्रेक्षक छात्र स्वयं सीखते भी हैं। पाठ प्रस्तुत करने वाले शिक्षक के नए प्रयोगों, नए प्रयासों की सम्मानपूर्वक समीक्षा करना चाहिए। इससे वे एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीख सकेंगे। इस प्रकार सूक्ष्म अध्यापन शिक्षक को पूर्ण रूप से पारंगत करता है, जिससे वह अनेकों अभ्यास जटिलताओं को आसानी से सुलझा सकता है। एक शिक्षक जिसके लिए अध्यापन कठिनाइयों भरा है, वह सूक्ष्म अध्यापन शिक्षण तकनीकी से कुशलता प्राप्त कर लेता है। वह किसी भी प्रकार के छात्रों, किसी भी स्तर की कक्षा का अध्यापन कर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है। वह कक्षा में जाने से पूर्व सुनियोजित होता है, फिर भी कक्षा में उत्पन्न होने वाली तात्कालिक परिस्थितियों को नियंत्रण करने में दक्ष हो जाता है, जिससे अध्यापन उद्देश्यों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। सूक्ष्म अध्यापन का महत्व इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि यह बेहद वास्तविक, सुनियोजित, पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित प्रशिक्षण तकनीकी है। इसका प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के अलावा पाठ्यक्रम निर्माण एवं अनुसंधानों के लिए भी किया जाता है। यह रोजाना ली जाने वाली कक्षाओं की जटिलताओं को सरल बना देता है। कक्षा में सामान्य गतिविधियां जैसे व्याख्यान देना, छात्रों को चर्चा हेतु प्रेरित करना, आवश्यकतानुसार पाठ योजना में तात्कालिक बदलाव संबंधी निर्णय लेना, सतर्कता और पाठ सामग्री का बेहतर प्रयोग आदि अनेकों दक्षताएं सूक्ष्म अध्यापन से ही आती हैं। जिस प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं आता बल्कि अभ्यास काम आता है, एक शिक्षक के लिए सूक्ष्म अध्यापन प्रायोगिक कक्षा की तरह उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है।
0: शिक्षकों के लिए इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन का महत्व, इस विषय पर वार्ता। अपने विचार साझा कर रही थी हेमलता त्रिपाठी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र पीलामन काजेगोट। अब लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम। आज हम इसमें आपको सुनवा रहे हैं तात्या टोपे के बारे में। प्रस्तुति है राम सिंह कश्यप की।

पिलामन काजे गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय नानी बड़े पिलामन के मच्छो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़। कोनी कोनी पिलामन पड़ला सास होती और कोनी कोनी पिलामन पड़सास बल के आमचो भारत देश के अंग्रेज ले आजाद करतो काजे कितलो महापुरुष मन लड़ला और आमचो देश के अंग्रेज ले आजाद कराला। पिलामन उसने एकलो स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे रहो ये मन आपलो जीवना भर ने केवल अंग्रेज मन संगे हार नहीं मानला। ये मन एकलाय ब्रिटिश सरकार चो सपाय सेना मन के डराउन रहो कसन बल्लो ने तात्या टोपे युद्ध नीति बल्लो ने लड़तो बेरा चो असन असन नीति नियम उवाट के जानते रहोत जोन एचो असन दूसर और कोनी लड़तो नीति नियम उवाट के नी जानते रहोत मने उनका जे बल्ला सोत तात्या टोपे आपलो जीवना ने के भय अंग्रेज मन संगे नी हारला सोत। पिलामन आजी चो कार्यक्रम ने तात्या टोपे चो जीवना चो गोट के खंडिक सांगे से एके सुना। तात्या टोपे चो जन्म पिलामन तात्या टोपे चो जन्म सन 1814 ईस्वी ने महाराष्ट्र चो पटोदा जिला ने येवला नाव चो गांव ने होन रेली। एमन चो बाबा चो नाव पांडुरंग त्रियंबक और माय चो नाव रुक्मणी बाई आए। पिलामन तात्या टोपे चो बाबा पांडुरंग त्रियंबक उदलदाय राजा पेशावा बाजीराव द्वितीय काजे बुता करते रहोत। राजा पेशावा बाजीराव पांडुरंग त्रियंबक के खूबे मानते रहोत और भरसा करते रहोत। उनका जे एमन सपाय राजा चो दरबार ने रहते रहोत। पिलामन एंदाय जानू तात्या टोपे चो पढ़ाई लिखाई कसन होली। तात्या टोपे चो जन्म देशस्थ कुलकर्णी परिवार ने होन रली। उनका जे एचो नगद पढ़ाई लिखाई और युद्ध विद्या बल्लो ने लड़तो बीती नीति नियम उवाट चो पढ़ाई लिखाई खूबे नगद सिकुक मिरली। पिला बेरा ले युद्ध विद्या बल्लो ने लड़तो बीती पढ़ाई उवाट के सिखा तो बेरा खूबे अरिक होते रहोत मन खूबे लागते रहे। उनका जे तात्या टोपे गोरिला युद्ध प्रणाली ये बले लड़तो बीती उवाट आए ये उवाट के सिकुन रहोत। तात्या टोपे गोरिला युद्ध प्रणाली उवाट ले ब्रिटिश सरकार चो सपाय सेना मन के डराउन रला। पिलामन एंदा जानू तात्या टोपे चो जो उपाधि आए कसन मिरली और ये उपाधि के कौन दिला। तात्या टोपे चो सत्य नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर आए। जसन तात्या टोपे बड़े होला उसने नौकरी खोजू के मूर करला। सबले पहल तात्या टोपे ईस्ट इंडिया कंपनी जेला। तात्या टोपे पढ़ाई लिखाई ने खूबे नगत रहोत उनका जे ये नौकरी बले झटके मिरली। मानतर तात्या टोपे के ये नौकरी में बले मन नहीं लागते रहे उनका जे तात्या टोपे ये नौकरी बल छाणला। पिला मने ये नौकरी के छाण लो पाचे आप लो दरबार ने मुंशीचो काम करते रहोत। मुंशीचो नौकरी के खूबे नगत करते रहोत। मुंशीचो नौकरी करतो समय ने एकलो चोर के धर रला। ये चोर खूबे बरगले दरबार चो खजाना के छोड़ते रहे मने। उनका जे अरी कौन बाती राजा पेशावा बाजीराव तात्या टोपे के हीरा ले बनलो टोपी के मान हिसाब ने भेंट करला बोलो ने मान हिसाब ने उन मन के दिला। तेबे ले ये मन चो नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर ले तात्या टोपे पड़ली। पिला मन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई एमन बले पिला बेरा ले जानते रहोत तो एमन चो गोट के बल कंडिक आले सुना। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ए दोनों पिला बेरा ले जानते रहोत।

दोनों पढ़ाई लिखाई संगे करला। रानी लक्ष्मीबाई के तलवारबाजी सीख तो खूबे मन रहे, मानतर सीखा तो लोग नहीं रहो। फिर एक दिन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई चो भेट गाटोली। उदलदाय लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के बल्ला कि मके बले युद्ध विद्या और तलवारबाजी सीखा तो नीति नियम बलन उवाट के मके बले नगद सिखावा। फिर तात्या टोपे लड़तो बीती सपाय नीति नियम उवाट और तलवारबाजी के सिखाला। उन्हीं का जे पिलामन बलुआत की तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई चो गुरु बले आए। तात्या टोपे युद्ध प्रणाली ले सबले नगद पिलामन तात्या टोपे पिला बेरा ले युद्ध शिक्षा विद्या बलो ने लड़तो बीती नीति नियम उवाट चो पढ़ाई करून रला सबले नगद गुरीला युद्ध प्रणाली ने रहोत। ये उवाट ले ब्रिटिश सरकार चो सेना मन के खूबे डराउन रहोत। जब तक दूसर के ये उवाट के समझुक सकोत उनचो पहल तात्या टोपे आगर ले आगर सेना मन के मारून सारते रहोत। तात्या टोपे के ब्रिटिश सरकार चो सपाई सेना मन डरते रहोत। उनका जे बलुआत तात्या टोपे युद्ध प्रणाली ले सबले नगत आत। पिला मन एदा जानू कि तात्या टोपे कसन सेनापति बनला। बल्लो ने आमचो लड़तो चो जो मुखिया रहे से उन कसन बनला ये गोट के पले जानू। असन बनला सोत की राजा पेशवा के रोजे बरक 8 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार बांटले मिरते रहे। मानतर जेबे महाराजा के काई बीमारी धरली और राजा ये बीमारी ले लड़ुक नी सकला और मरुन गेला। ये गोट ब्रिटिश सरकार लगे अमरली। ब्रिटिश सरकार पैसा दे तो काजे मना करला और राजा पेशावा जोन के गोद धरला नी ये मना तो नाना साहेब। नाना साहेब के बल्लो ने जसन पेशावा राजा मरुन गेला उन्हीं का जे उताचो जोन उत्तरदायी बोलने उताचो जोन राजा होए मानते रहो तुन बोलो नाना साहेब के। मानतर ब्रिटिश सरकार नाना साहब के राजा मान तो काजे मना करला और रोजे बरक जसन पैसा मिलते रहे उन पैसा बोल दे तो काजे मना करला। उन्हीं काजे नाना साहेब रीस होन बाती ब्रिटिश सरकार संगे लड़ तो काजे तात्या टोपे संगे उवाट बनाओ मुरियाला। पिला मन 1857 ने सपाय देश ने क्रांति चो लहर चलते रहे। उदलदाय नाना साहब ने तात्या टोपे के सेनापति बनाला। उन्हीं समय ने अंग्रेज मन कानपुर ने बले हमला करला। ये लड़ाई ने बले तात्या टोपे खूबे मशागत करून लड़ू रला। मानतर अंग्रेज मन के कानपुर कब्जा कर तो काजे नी रुकूक सकला। तात्या टोपे चो गिरफ्तारी। पिला मन तात्या टोपे के शिवपुरी चो पड़ोना जंगल बलोन रान ने बिसाते रहोत। उदलदाय तात्या टोपे चो जोन संग बीता रहे उन मन नरवर चो राजा मानसिंह तात्या टोपे संगे ठगा करला। मल्लो ने उमन के ठगला और बिसा तो खबर के नहीं अंग्रेज मन लगे अमराला। जसन अंग्रेज मन लगे एक खबर अमरली उसने तात्या टोपे के धरतो काजे अंग्रेज मन रान ने अमरला और जसन तात्या टोपे बिसाते रहोत उसने अंग्रेज मन उनके गिरफ्तार करला। तात्या टोपे चो मृत्यु बल्लो ने मरलो चो गोट। पिला मन तात्या टोपे चो मरलो मल्लो ने शहीद होलो गोट के कोनी नगत नी सांगला सोत। गोटक बाटे बलसोत की तात्या टोपे जंगल रान ने बिसातो बेरा गिरफ्तार करला। उदलदाय उनमन चो जोन आरोप रहे उनके सत्य होली तेबे तात्या टोपे के फांसी चो सजा सुनाला। फिर अंग्रेज सरकार 18 अप्रैल 1859 के तात्या टोपे के फांसी दिला। फिर दूसर बाटे बल्ला सोत कि तात्या टोपे के जंगल ने बिसा तो बेरा गिरफ्तार तो करून रला। मानतर अंग्रेज सरकार के ठगुन बाती तात्या टोपे उताले पराला। फिर के बे अंग्रेज मन के धरा नी दिला और एकलो टोपे चो जोन कुटुम्ब बोलो ने उचाचो एकलो वंशज बले सांगला सोत कि 1 जनवरी 1859 ने अंग्रेज मन संगे लड़तो बेरा तात्या टोपे शहीद होला। उनका जे बलुआत की तात्या टोपे चो जोन मरलो गोट के आज तक बले पता नहीं चल रही। पिला मन तात्या टोपे चो गोट के तो सुन लास उसने तुम्ही बले नगद पढ़ाई लिखाई करून जोन काम ने मन लागे से उन काम के आम के जीवना ने आनुन खूबे मेहनत मशागत करतो राय तेबे काय तुम्ही तुमचो और परिवार संगे संगे देश पाराचो नाम के आगे बढ़ाओ सका से। पिला मन ये नगद गोट तो होली मानतर तुमचे लगे गोट गीत धरुनी ले से हाले गीत के आमी सुनू।

पीला मन काजे गोठ। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तात्या टोपे के बारे में। प्रस्तुति थी राम सिंह कश्यप की। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या

0: प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा

0: बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
7: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the Global South. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
6: Well, thanks Ankit for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advance contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.

हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है राजकमल ने। फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सीता और गीता कार्यक्रम।

0: अगला गीत सुनिए इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी के, सुरों में ढाला है आर डी बर्मन ने।
1: अरे

पुरानी फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म शागिर्द से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा।
1: पुरानी फिल्मों से अभी आप आनंद ले रहे थे इस कार्यक्रम का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं भतरी बोली में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने ग्राम कोरीरास जिला दंतेवाड़ा से मासा कुंजाम मंगल कुंजाम अजय कुंजाम अनीता कुंजाम कमलेश्वर कुंजाम सुचित्रा कुंजाम आरती कुंजाम और संतु कुंजाम ने। ग्राम मुरनार विकासखंड ओरछा जिला नारायणपुर से आप हैं सुकमा वेड़े चुन्नीलाल वेड़े गोविंद पंडी गिंजरू वेड़े सुखलाल वेड़े रमेश वेड़े और परतोष वेड़े। ग्राम बनियागांव विकासखंड जिला कोंडागांव से आप हैं गोकुल भारती मंचाराम भारती सुकमती भारती चंदू भारती हितेंद्र भारती खेमेश्वर भारती राजू भारती और संदीप भारती। ग्राम पखनार विकासखंड दरभा जिला बस्तर से आप हैं लक्ष्मण मंडावी सुनीता मंडावी दुर्जन मंडावी संबली मंडावी अर्जुन मंडावी कारी मंडावी। ग्राम बिरंगपाल विकासखंड जगदलपुर जिला बस्तर से घासीराम कश्यप लक्ष्मी कश्यप प्रियंका कश्यप खामेश कश्यप और अंबिका कश्यप। लीजिए सुनिए अमलसाय बघेल और साथियों का गाया ये भतरी लोकगीत।

मोचो मंचो गीत पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनना चाहा है आप सभी ने, ग्राम डिलमिली विकास खंड दरभा जिला बस्तर से राजू सोड़ी, नरेंद्र कर्मा, हितेंद्र कर्मा, परसु सोड़ी, मनीराम मंडावी और संतू पोयाम ने। ग्राम बास्तानार जिला बस्तर से आप हैं वरुण, राजेंद्र, विनोद, महेश पोयाम, चंद्र बघेल, सुखमन सेठिया और खुदरू मंडावी। ग्राम गड़िया लोहंडीगुड़ा बस्तर से आप हैं बेंजाराम मौर्य, सुद्रू सेठिया, लखमू कश्यप, कोपाराम मंडावी, तुलसी सेठिया और हेमराज सेठिया। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। स्वर है नवीन मरकाम और साथियों का।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गोंडी बोली में, कोसी और साथियों के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम डोडरेपाल छोटे गुडरा, विकासखंड दरभा, जिला बस्तर से बलदेव मंडावी, विनीता मंडावी, दिलीप मंडावी, वेदांत मंडावी, पदिता मंडावी, छवि मंडावी और अवंतिका कश्यप। ग्राम पखनार, विकासखंड दरभा, जिला बस्तर से लक्ष्मण मंडावी, सुनीता मंडावी, दुर्जन मंडावी, समली मंडावी, अर्जुन मंडावी, कारी मंडावी। ग्राम बिरंगपाल, विकासखंड जगदलपुर से, जिला बस्तर जगदलपुर से आप हैं, घासीराम कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, प्रियंका कश्यप, खामेश कश्यप। ग्राम दापाल से आप हैं दुरूप साय मौर्य, कमलेश मौर्य, गोविंद मौर्य, होरकू मौर्य, राजू मौर्य, पंचम मौर्य और कमलनाग। तेतरखुटी पारा जगदलपुर से आप हैं लखमू राम मंडावी, पांडे मंडावी, लयबती मंडावी, रेमनी मंडावी और सुप्रिया मंडावी। वचैली से आप हैं सीबू मंडावी, सतबती मंडावी, देवा मंडावी, मालती मंडावी और अजय मंडावी। ग्राम बेलर से आप हैं वीरनाथ मंडावी, मुन्ना मंडावी, डोनी मंडावी, मासा मंडावी और डुमरी मंडावी। लीजिए सुनिए ये गोंडी लोकगीत।

इस गीत के साथ ही पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का ये कार्यक्रम मोचो मंचो गीत अब यहीं संपन्न होता है।

मोचो मंचो गीत पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकवाद धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़। आज हम आपको सुनवा रहे हैं विवाह पाड़ और माता पाड़। वादक कलाकार हैं मंगलू और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: पहाड़ लोकवाद्य धुनों पर आधारित इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विवाह पहाड़ और माता पहाड़। वादक कलाकार थे मंगलू और साथी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधै कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maak Inaam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishar multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishar project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kurseong under Darjeeling district to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development act initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:51 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।